印度的李光不电台，这是普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。

निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री राम ने उन्हें अपने घर लौट जाने को सहमत किया और आप लक्ष्मण तथा सीता समेत गहन वन की ओर चले। राह में उन्हें अनेक वनवासी मिलते हैं जिन्हें दोनों भाइयों के रूप स्वरूप में राज चिन्ह देखकर बड़ा सोच होता है। ऐसे राजसी लक्षणों वाले कुमार तापस वेश में वन में पैदल चले जा रहे हैं, ये देख वनवासियों को ज्योतिष शास्त्र भी असत्य प्रतीत होता है। वनवासी उन्हें रास्ता दिखाने बताने को अनायास ही प्रेरित हो जाते हैं। आज्ञा चाहते हैं कि जहां तक उन्हें जाना है वहां तक पहुंचाकर उन्हें प्रणाम कर वे वापस लौट आएंगे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता की आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं। कृपा सिंधु उनसे विनय भरे वचन बोलकर उन्हें लौटा देते हैं, किंतु वन में यहां वहां बसे गांव और पूर्वों के बालक, वृद्ध, नर नारी, किशोर किशोरियां बार बार उनके दर्शनों को दौड़ते आते हैं और नाना प्रकार से उनकी सहायता कर अपना प्रेम दर्शाते थकते नहीं।

निरूपा सभागतोंगा सजारा डालम कमित्रान स्ट्रेटेजिक स्तर सबूत कडुआ प्रधाना मंत्री मनगास खान के मालिक कमिटमेंट मरेका उन्तुक मन उन्तुक समाकिन मम परकुआत कर्जा समा अंतरा इंडिया बेल्गिया डान उनी यूरोपा डी बिडांग पडांगान टेक्नोलॉजी का अमानान इकोनॉमी डान रांतै पासोक यंग तांगू कडुआ बला पिहाक जुगा मंडुकुंग अगेंडा स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रेहेंसिव बरसामा इंडिया एयू उन्तुक

0: Di sini siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व्स पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कर

0: कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
4: India believes that endless war.
5: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIR News Hindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
7: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
8: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
9: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
10: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का ये बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
0: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
11: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन US उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, ये दिन सिर्फ सराहना करने के एक दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय साह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा, अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने असाज़ा से जोर देकर कहा है कि वो यौम असाज़ा के मौके पर टेक्नोलॉजी को अपनाएं और तदरीसी के इख्तराई तौर पर इख्तियार करें। वो आज सुबह नई दिल्ली में स्कूल के 48 असाज़ा को कौमी अवार्ड अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सदसाला तकरीबात से खिताब करेंगे। हुकूमत ने ISO टैंक कंटेनर्स पेट्रोलियम की दरामद और ट्रांसपोर्ट के लिए 3 साल इजाजत हासिल करने और सख्त तर हिफाजती जाब्तों की तजवीज़ रखी है। वजीर खारजा SJ ने कहा है कि भारत तनाज़े को ख़त्म करने में मदद देने के लिए लगातार यूक्रेन और रूस के रबते में है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक ऐसा नया आलमी नक्शा इख्तियार करने के हक में वोट दिया है जिससे अफ्रीका के सही रकबे का पता चलता है। तीरंदाजी की आलमी पैरा सीरीज का तीसरा मरहला गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रहा है और ख्वातीन क्रिकेट में T20 एशियन कप के ग्रुप ए का फाइनल मुकाबला भारत और उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान के दरमियान होगा। ये मैच आज रात दुबई में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने असातिज़ा और मुअल्लिमीन से कहा है कि वो अपनी मालूमात में लगातार इजाफा करते रहें, टेक्नोलॉजी से वाकफियत हासिल करते रहें और तदरीस के इख्तराई तरीके इख्तियार करते रहें। सदर जमहूरिया ने आज असातिज़ा के दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि असातिज़ा और मुअल्लिमीन अपनी रहनुमाई व सरपरस्ती से सलाहियतों की आबियारी और किरदार को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा करते रहें। उन्होंने कहा कि खुद को वक्फ कर देने और तलबा का ध्यान रखने वाले असातिज़ा उनकी मुनफरिद सलाहियतों को पहचान कर उन्हें तहरीक दे सकते हैं और महारत हासिल करने में उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: यौम असातिज़ा हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है, जो एक मारूफ माहिर तालीम, मुसन्निफ, फलसफी और सदर जमहूरिया थे। इस मौके पर मुल्क की तामीर में असातिज़ा और मुअल्लिमीन के रोल की अहमियत को उजागर किया जाता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में स्कूलों के 48 असातिज़ा को कौमी अवार्ड से नवाजेंगी। इस असातिज़ा को 27 रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 7 इलाकों और मरकजी हुकूमत की 6 तंजीमों से मुंतखब किया गया है। सदर जमहूरिया आला तालीमी इदारों और पॉलीटेक्निक इदारों के 21 असातिज़ा और फैकल्टी अरकान को भी कौमी अवार्ड्स अता करेंगी। न्यूज़ डेस्क से खबरनामे के लिए मैं इरम नाज।
1: मरकजी वज़ीर तालीम प्रहलाद जोशी ने कल शाम असातिज़ा के कौमी अवार्ड याफ्तगान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि असातिज़ा 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए बच्चों को तैयार करें। उन्होंने कहा कि तलबा मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया है और उन्हें हमा जह सलाहियत वाले अफराद के तौर पर परवान चढ़ाया जाना चाहिए। जनाब जोशी ने अवार्ड याफ्तगान के एजाज में एक इशाइये की मेज़बानी की। इस मौके पर तालीम के वज़राए ममलकत जैन सिंह और डॉक्टर सुकांत मजुमदार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सदसाला तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुल्क का आला तालीम का एक मायानाज इदारा है। 1926 में मारूफ सनतकार और समाजी कारकुन सर श्रीराम के जरिए कायम करदा इस कॉलेज ने गुज़िश्ता एक सदी के दौरान स्कॉलर्स, पेशावर अफराद, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सनतकारों, पॉलिसी साजों और मुल्क के मेमारों की एक नस्ल को परवान चढ़ाया है। ये सदसाला तकरीबात यौम असातिज़ा के मौके पर मुनक़िद की जा रही हैं, इसलिए ये मौका ख़ास तौर पर नस्लों की परवरिश और माशरे की बुनियाद को मजबूत करने में असातिज़ा और दरसो तदरीस से वाबस्ता अफराद के बेशबहा तआवुन का एतराफ़ करने के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने ISO टैंक कंटेनर्स में पेट्रोलियम की दरामद और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 साल तक की इजाज़त देने और इस पर अमल करने के लिए कामकाज के 7 दिन वाले एक निज़ाम की तजवीज़ रखी है। ये तजवीज़ पेट्रोलियम से मुतालिक 2002 के जाब्तों में मुजवजा तरामीम का हिस्सा है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने जुमे को इस नोटिफिकेशन का मुसवदा जारी किया है, जिसमें पेट्रोलियम से मुतालिक जाब्तों में 2026 की तरमीम की तजवीज़ पेश की गई है।

0: वजारत ने इस मसौदे पर एतराजात और तजावीज तलब की हैं, जिन पर गेजेट कॉपीज आवाम को दस्तियाब कराने की तारीख के 30 दिन पूरे हो जाने पर गौरवखोज किया जाएगा। मुजवजा तब्दीलियों के तहत किसी को भी ये इजाज़त नहीं होगी कि वो पेट्रोलियम से भरे हुए या भरे जाने वाले किसी ISO टैंक कंटेनर को चीफ कंट्रोलर या कंट्रोलर की इजाज़त के बगैर दरामद करे। ये दरख्वास्तें पेट्रोलियम और धमाका खेज मादनों से हिफाजत की तंजीम PESO के ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल के जरिए खुसूसी टेक्निकल और हिफाजती दस्तावेजात के साथ जमा करनी होंगी। इस सिलसिले में अगर कोई एतराजात या तजावीज हैं तो वो पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी MNVOR के नाम भेजी जा सकती हैं या इस ईमेल पते पर भी इरसाल की जा सकती हैं js.mkt.png@gov.in। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने इस माह की 9 और 10 तारीख को अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के UGC नेट जून 2026 के इम्तिहानात के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। तलबा UGCnet.ta.nic.in पर लॉग इन करके अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। NTA ने सवालिया पर्चों में मुख्तलिफ गलतियों की शिकायत के बाद अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के UGC नेट इम्तिहानात दोबारा मुनक़िद कराने का ऐलान किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर AJ शंकर ने कहा है कि भारत लगातार यूक्रेन और रूस दोनों के रबते में है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे नजरियात और तजावीज की तलाश में है जिनसे तनाजे से निपटा जा सकता है या इसे खत्म किया जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने यह रायजनी कल वारसोवा में पोलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा रेड सोलो सिक्रोसिकी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए की। वजीर खारजा ने एक बार फिर कहा कि भारत इस बात में यकीन रखता है कि इस न खत्म होने वाली जंग को खत्म करने का एक तरीका फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जंगों में कोई फातह नहीं होता और इनसे मजीद हलाकतें, तबाही और आलमी सतह पर नुकसान वाक़ होते हैं। बाद में डॉक्टर जयशंकर ने पोलैंड के सदर कारोल नारोकोसी से भी मुलाकात की और दो तरफा दिफाई शराकतदारी पर बातचीत की। उन्होंने यूक्रेन तनाजे और मगरबी एशिया की सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया। कीफ में डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि भारत यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने सदर वोलादिमिर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के अपने हम मनसब एंद्री सियाभा से भी कीफ में जुमेरात को मुलाकात की। उमूर खारजा की वजारत ने कहा है कि एक 5 साल बच्चे समेत मजीद 3 भारतीय शहरियों को नेपाल के सैलाब से मुतासर त्रिशूली बाजार इलाके से बहफाजत निकाल लिया गया है। इसके साथ ही नेपाल से निकाले गए भारतीयों की मजमूई तादाद 169 हो गई है। नई दिल्ली में कल मीडिया से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने भारतीय शहरियों की सलामती से मुतालिक ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय शहरी चीन से बहफाजत नेपाल पहुंच चुके हैं। जनाब जायसवाल ने बताया कि काठमांडू में भारतीय सफारतखाना बहफाजत निकाले गए भारतीय शहरियों की वतन वापसी के लिए परवाजों का इंतजाम कर रहा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को नेपाल में तबाहकुन सैलाब के बाद से अब तक 95 टन इमदादी सामान नेपाल को भेज चुका है। इस दौरान हिमालयी मुल्क में सैलाब से मुतासर इलाकों से मजीद लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर 1295 हो गई है। तकरीबन 5000 अफराद अब भी लापता हैं जिनकी तलाश और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने रिवायती आलमी नक्शे की जगह एक ऐसा नक्शा इख्तियार करने के हक में वोट दिया है जिससे अफ्रीका के रकबे का ज्यादा सही अंदाजा होता है। टोगो के तआवुन और अफ्रीकी यूनियन की हिमायत से एक करारदाद मंजूर की गई जिसका उनवान था नक्शे को ठीक करो। इस करारदाद के हक में 164 मुल्कों ने वोट दिया जिसमें फ्रांस और बरतानिया भी शामिल हैं। अमेरिका ऐसा वाहिद मुल्क था जिसने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया और 6 ममालिक गैर हाजिर रहे। अक्वामे मुत्तहिदा की इस वोट की अगरचे पाबंदी लाजमी नहीं है लेकिन इससे हुकूमतों और इदारों की हौसला अफजाई होगी कि वो रिवायती नक्शे को इस्तेमाल करना बंद कर दें। चाहे उकुआ जाहिर करने वाला ये नक्शा 16वीं सदी से आम इस्तेमाल में है लेकिन इस पर यह एतराज़ किया गया है कि इसमें अफ्रीका को ग्रीनलैंड के बराबर दिखाया गया है जबकि ये ग्रीनलैंड से 14 गुना ज़्यादा है। बिहार के 14 ज़िलों में जिनमें रियासत की राजधानी पटना भी शामिल है सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर तश्वीशनाक बनी हुई है। कई दरियाओं में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है जबकि नशीबे इलाके अब भी जेर आब हैं। सैलाब ने कई इलाकों में मामूलाती जिंदगी को मुतासिर किया है। इन मुतासर अजला में इमदादी और बचाव की कार्रवाइयाँ तेजी से जारी है। हुकाम सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं और मुतासर इलाकों के लोगों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: बिहार में सैलाब की सूरत हाल में अब तक कोई नुमाया बेहतरी नहीं है। राजधानी पटना के अलावा औरंगाबाद, भागलपुर, जहानाबाद, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, लखीसराय, मुंगेर, बीगूसराय, खगड़िया और वैशाली में भी सैलाब की सूरत हाल अब भी बरकरार है। कुदरती आफात से निमटने के महकमे के मुताबिक 8,50,000 से ज़्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मवेशी परवरी के महकमे के मुताबिक 70,000 जानवर भी इससे मुतासिर हुए हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में लोगों की सहूलत के लिए 700 कश्तियां चलाई जा रही हैं। सैलाब जदगान के लिए इमदादी कैंपों और इज्तिमाही तौर पर बावरची खाने भी कायम किए गए हैं। गुज़श्ता रात पुनपुन घाट पर रेलवे पुल नंबर 21 के नीचे ट्रैक में पानी दाखिल होने के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त को अगले अहकाम तक के लिए मअत्तल कर दिया गया है। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: महाराष्ट्र में दहीहांडी का त्यौहार आज बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार जन्माष्टमी के मौके पर मनाया जाता है। इस त्यौहार पर नौजवान, जिन्हें गोविंदा कहा जाता है, एक के ऊपर एक खड़े होकर ऊंचाई पर लटकी हुई मिट्टी की हांडी को तोड़ते हैं, जो दूध, दही और मक्खन से भरी हुई होती है, और भगवान श्री कृष्ण के बचपन की याद ताज़ा करते हैं। मुंबई में इस त्यौहार की तकरीबात जारी हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक रोज़ा दौरे पर होंगे। वो इंडिया वोल्व्स 2026 में शिरकत करेंगे। ये अमराज कल्ब के सुराखों और बनावट से मुतालिक जदीद इलाज पर मरकूज एक कौमी एकेडमिक मीटिंग होगी। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने मशरकी राजस्थान और मगरबी मध्य प्रदेश में आज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही शुमाल मशरकी रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान है। आलमी तीर अंदाजी के पैरा सीरीज 2026 आज गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है। इन मुकाबलों में 19 मुल्कों के 105 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। ऐसा पहली बार है कि भारत तीरंदाजी की इस आलमी पैरा सीरीज की मेजबानी कर रहा है। सीरीज का ये तीसरा मरहला अहमदाबाद में साबरमती दरिया के किनारे मुनाकिद किया जा रहा है, जो इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। जनाब शाह ने कहा कि भारत खेलकूद की तरबियत और इससे मुतालिक सहूलियात और आलात की पैदावार का भी एक मरकज बनेगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत का मकसद न सिर्फ मजीद तमगे हासिल करना है, बल्कि ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, दौलत मुश्तरका खेलों और पुलिस खेल मुकाबलों को मुस्तहकम बनाना भी है। जनाब शाह ने कहा कि भूटान, बरतानिया, चीन, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया और अमेरिका समेत 19 मुल्कों के एथलीट्स इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2030 के दौलत मुश्तरका खेल मुकाबले इन खेलों का सदसाला एडिशन होंगे। खवातीन के क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी मैच में आज भारत का मुकाबला उसके रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं मोहम्मद शहजाद।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के GSLV-F17 के जरिए EOS-5 की कामयाब लॉन्चिंग को शानदार कामयाबी करार देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफे अव्वल पर शाये किया है कि इसरो और भारतीय सनत के दरमियान तालमेल से वसत और भारत के कुर्रे अर्ज के मुशाहदे की सलाहियतों में अहम इजाफा हुआ है। इसी अखबार की एक और खबर है कि वज़ीर आज़म योम असातिज़ा के मौके पर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 7 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे और तलबा से तबादले ख्याल करेंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ज़रूरत के मुताबिक नेपाल को इमदाद फराहम करना जारी रखेगा।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने असाज़ा से जोर देकर कहा है कि वो योम असाज़ा के मौके पर टेक्नोलॉजी को अपनाएं और तदरीस के इख्तराई तौर तरीके इख्तियार करें। वो आज सुबह नई दिल्ली में स्कूल के 48 असाज़ा को कौमी अवार्ड अदा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 7 साला तकरीबात से खिताब करेंगे। हुकूमत ने ISO टैंक कंटेनर्स में पेट्रोलियम की दरामद और ट्रांसपोर्ट के लिए 3 साला इजाजत हासिल करने और सख्त और हिफाजती जाब्तों की तजवीज रखी है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत तनाजे को खत्म करने में मदद देने के लिए लगातार यूक्रेन और रूस के रबते में है। अक्वामे मुत्तहिदा ने एक ऐसा नया आलमी नक्शा इख्तियार करने के हक में वोट दिया है, जिससे अफ्रीका के सही रकबे का पता चलता है। और खवातीन क्रिकेट में टी20 एशिया कप के ग्रुप ए के फाइनल मुकाबला भारत और उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान

0: पाकिस्तान के दरमियान होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। समय है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत का, लीजिए सुनते हैं।
2: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। दोस्तों, हर साल 5 सितंबर को विश्व रीढ़ की हड्डी की चोट जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पहल का उद्देश्य रीढ़ की हड्डी की चोट से पीड़ित मरीजों के जीवन को सुगम बनाना और उन्हें इसके बारे में जागरूक करना है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से रीढ़ की हड्डी की चोट की रोकथाम करना भी इसका उद्देश्य है। इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता। विषय है रीढ़ की हड्डी की बीमारियों के उपचार के लिए नवीनतम तकनीक। हमारे विशेषज्ञ हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर HS छाबरा। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। डॉक्टर छाबरा, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
3: नमस्कार, आपका धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
2: डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी, इसमें जो भी चोट लगती है या इसमें कोई समस्या आती है, कौन कौन सी ऐसी तकलीफें हैं जो किसी को हो सकती हैं रीढ़ की हड्डी से जो संबंधित हो?
3: एक तो पहले बताना चाहूंगा, ये बहुत कॉमन है प्रॉब्लम। जुकाम के बाद सबसे कॉमन एलिमेंट कमर का दर्द होता है। तो बट कमर का दर्द या गर्दन का दर्द खाली एक सिम्टम है, अंदर बीमारियां अलग हो सकती हैं। सबसे आम कारण है मैकेनिकल कॉजेस ना, अगर जैसे कि अगर मांसपेशी कमजोर हो जाते हैं या डिस्क की प्रॉब्लम हो, पर कई बार अंदर इन्फेक्शन भी हो सकती है, डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, कई बार ट्यूमर भी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। तो ऐसे कई कारण हैं जिससे रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
2: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो जितनी भी आपने तकलीफें बताई, क्या ये सारी क्योरेबल हैं आज की डेट में?
3: जनरली हम सारी मैनेज कर सकते हैं ना, कोई ऐसा इलाज नहीं होता कि ये किया आप जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। जैसे जुकाम कभी भी हो सकता है, वैसे कमर का दर्द भी हो सकता है। हमें सिम्टम का इलाज करना और दोबारा बार बार तंग ना करे उसके लिए एक अच्छी जीवन शैली रखनी है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि अगर चोट लग जाए स्पाइनल कॉर्ड को, तो स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स रीजनरेट नहीं करते।
2: तो डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि इसकी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या रहती है?
3: मतलब पहले तो जैसे दर्द का उपचार तो ऑलमोस्ट कॉमन है, बट कारण क्या है उसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। पर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका उपचार एंटीबायोटिक से करना है, ज्यादा दबाव है तो कई बार ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। उसी तरह अगर ट्यूमर है तो उसको देखना है, ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका इलाज उसी हिसाब से करना है। और अक्सर 95-97% में सारे इलाज कंजर्वेटिव मीन से ही किए जा सकते हैं, बट 3-5% में कई बार ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो कई बार ऑपरेट करके स्पाइन स्टेबलाइज करके दबाव हटाने की भी जरूरत पड़ सकती है।
2: जी डॉक्टर साहब, ये भी बहुत आम धारणा है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन एक बहुत ही मेजर ऑपरेशन है, बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है, और लोग कहते हैं कि नहीं कराया जाए। मतलब एक आम धारणा की मैं बात कर रही हूँ, ये ऐसी धारणा क्यों है?
3: देखिए, टाइम के साथ सारे उपचार डेवलप होते हैं। एक टाइम था जब टीबी का इलाज नहीं होता था, लोग टीबी के कारण मरते थे, है ना। तो अब साइंस मेडिसिन काफ़ी डेवलप कर चुकी है, स्पाइन अपने आप में ही एक स्पेशलिटी बन गई है। पहले वो एक सुपर स्पेशलिटी थी ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरोसर्जरी की, बट अब स्पाइन एक अलग से स्पेशलिटी है। रीढ़ की हड्डी का इलाज ठीक से किया जा सकता है अच्छे आउटकम्स के साथ, ये मैं बताना चाहूँगा। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं 3-4% में, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है 1-8% में, पर जब ऑपरेशन की जरूरत हो तो ना करने के दुष्परिणाम कहीं ज्यादा हो सकते हैं ना कि करने के। किया तब जाता है जब ऐसे इलाज ना आ रहा हो, दिक्कत बढ़ती जा रही हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखनी है और ये भी देखना है कि उसके कारण पैरों में कमजोरी तो नहीं पड़ रही, पेशाब और स्टूल का कंट्रोल तो नहीं जा रहा। तो ये एक मिथ है आज की डेट में, स्पाइन सर्जरी बिल्कुल काफी सेफ है और दोराहे पे है, या ना कराएं या कराएं, जब जरूरत है तो ना कराने के कहीं ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स और दुष्परिणाम हो सकते
2: हैं। डेली कई ऑपरेशंस आप करते हैं, तो ये भी बताइए कि किस तरह के एडवांसमेंट्स हुए हैं।

0: स्पेशली अगर हम स्पाइनल ट्रीटमेंट की बात करते हैं।
1: हाँ, एडवांसमेंट्स बहुत हैं। सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यहाँ पे बिल्कुल खरा उतरता है। तो
0: जी जी
1: वेलनेस पे जोर डालना, ना कि इलाज पे जोर डालना, ये एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है और इसके बारे अवेयरनेस फैलाई जा रही है। दूसरा, तकलीफ हो तो डायग्नोस्टिक्स बहुत एडवांस हो गई है, चाहे वो इमेजिंग मोडालिटीज हो, तरह तरह के एमआरआई हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को भी असेस किया जा सकता है। उसी तरह जैसे अगर बोन्स वीक हैं तो डेक्सा स्कैन है, पेट स्कैन है, होल बॉडी सीटी स्कैन होता है, तो एक डायग्नोस्टिक्स में भी बहुत एडवांसमेंट हो गई है। फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, नई दवाइयाँ, नए तरह के उपचार, रिहैबिलिटेशन के टेक्निक्स, वो भी बहुत एडवांस कर गए। जैसे बताया, 3 से 5% में अगर सर्जरी की जरूरत पड़े तो वो भी, उसमें भी बहुत एडवांसमेंट्स हैं। न्यूरो मॉनिटरिंग में हम सर्जरी कर सकते हैं जिसमें जब ऑपरेशन होता है तो उस समय हर उसके पूरे दौरान हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो उसी समय उसको मैनेज किया जा सके। एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक्स आ गई हैं, आपकी नेविगेशन टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें आप जब ऑपरेट करते हैं तो ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, आप उसको प्लान कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान ही आप एक सीटी स्कैन कर सकते हैं वहां से, आप रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बिल्कुल प्रिसिजन से डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी एडवांस टेक्निक्स हैं। हाँ, जैसे कि बताया था, अगर चोट लगने से पैरालाइज हो जाते हैं स्पाइनल इंजरी से, तो उसमें भी प्री हॉस्पिटल केयर से लेके साइट पे एक्सीडेंट के क्या मैनेज करना है, एक्यूट मैनेजमेंट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन, फिजिकल, साइकोसोशल, सेक्सुअल, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन क्या है, एडवांस टेक्निक्स हैं जैसे कि फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ब्रेन मशीन इंटरफेस, एपिड्यूरल स्टिमुलेशन, ऐसी कई एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। रोबोटिक्स रिहैबिलिटेशन में भी यूज होती हैं, और कम्युनिटी में वापस लाने के लिए एडवांस्ड व्हील चेयर्स, मतलब कई डिवाइसेस जिससे पैरालाइज लोग भी साधारण जिंदगी में वापस आ सके। तो अब कहते हैं कि चाहे वो स्पाइनल इंजरी भी हो, तो लाइफ आफ्टर अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कैन बी हैप्पी, मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग। तो ये एडवांसमेंट्स हम इस स्टेज पे ला सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, ये और साथ में बताइए कि जब इस तरह की सर्जरीज होती हैं तो उसके बाद कितना समय लगता है मरीज को रिकूप होने में?
1: अब तो जैसे हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी करते हैं तो शाम को ही खड़ा करके चला के डे केयर की तरह सर्जरी कर सकते हैं, उसी दिन घर भी भेज सकते हैं,
0: अच्छा
1: है ना। अगर हमें ज्यादा बड़ी सर्जरी करनी पड़े ट्रेडिशनल टेक्निक से, तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिनों में उनको घर भी भेज देते हैं, ठीक है। बट अगर जैसे स्पाइनल इंजरी हो, तो ना खाली सर्जरी जरूरी होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन भी बहुत जरूरी होता है। और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस, अगर इंडिविजुअल पैरालाइज है तो किस लेवल की इंजरी है उसके हिसाब से 6 हफ्तों से लेके 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं वो रिहैबिलिटेशन में,
0: जी
1: ताकि हम उनको, चाहे उनमें पैरालिसिस भी हो, तो उनको हम एक सक्षम जिंदगी में, साकार जिंदगी में वापस ला सकें।
0: थैंक यू सर।
1: धन्यवाद।
0: रीढ़ की हड्डी की बीमारियों के उपचार के लिए नवीनतम तकनीकें, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर HS छाबड़ा से। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। दोस्तों, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का एक समूह हमारे दैनिक जीवन और हमारी आदतों के कारण उत्पन्न होता है। मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा और उच्च रक्तचाप इनमें से कुछ बीमारियां हैं। गतिहीन जीवन शैली, खराब खानपान, धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के मुख्य कारण हैं। योग सहित स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इन विकारों से बचा जा सकता है और उन्हें नियंत्रित करने का ये एक कारगर तरीका भी है। आइए जानते हैं जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को कैसे योग से दूर किया जा सकता है। हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रीमा दादा। आप प्रोफेसर हैं एनाटॉमी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में। आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के स्तर पर योग के फायदे पर व्यापक शोध किया है। भेंट करता है रेणु श्रीवास्तव जोहरी।
2: डॉक्टर रीमा, बहुत बहुत स्वागत।

0: है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: हमारे स्वास्थ्य में लाइफस्टाइल की क्या भूमिका है और खराब लाइफस्टाइल के कारण हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है?
1: लाइफस्टाइल का हमारे हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और आजकल देखा गया है कि लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ गई हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि ये हमारे गलत जीवन शैली, गलत रहन सहन के कारण ही बढ़ी हैं। तो ये देखा गया है कि अगर हम बहुत हाईली प्रोसेस्ड फूड खाएं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाएं, जो एक कैलोरी डेंस डाइट होती है,
0: जंक फूड जिसे कहते हैं,
1: जंक फूड, फास्ट फूड खाएं, ये न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड होता है। न्यूट्रिशन कम होती है बट कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, जिससे मोटापा होता है। तो मोटापे के कारण, अनहेल्दी डाइट के कारण हम लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं। सिडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसको आजकल कहते हैं, ये एक नया स्मोकिंग है। मानसिक तनाव, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है। हमारा सोने का पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है। स्लीप हाइजीन बहुत पुअर है। रात को लेट सोते हैं, सुबह सूर्य चढ़ने के बाद उठते हैं और देखते हैं कि रात को बार बार उठ के फोन चेक करते हैं। इन सब के कारण देखा गया है, ये गलत जीवन शैली के कारण लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ गई हैं। तो चाहे ये डायबिटीज हो, चाहे ये हार्ट डिजीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज हो, चाहे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हो, जैसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, ये सभी, या अल्जाइमर्स डिजीज हो, जैसे डिमेंशिया की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है,
0: की समस्या होती है,
1: ये सब डिसऑर्डर्स का लिंक हमारे जीवन शैली से है। और ये गलत जीवन शैली के कारण देखा गया है कि हम एज भी फास्टर कर रहे हैं और ये डिजीजेस जो करीब 65-70 पे आती थी, अब जल्दी आनी शुरू हो गई हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया। लेकिन इसके शुरुआती लक्षण जो कुछ दिखाई देते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज जो एकदम शुरू हो जाती है, तो वो क्या लक्षण है जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए?
1: इनमें देखो, इट डिपेंड्स कि कौन सी लाइफस्टाइल डिजीज आपको हुई है। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस में दोनों का रोल है, जीन्स का भी है और एनवायरमेंट का भी है। और जितने भी हमारे जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, ये हमारे रिस्क ऑफ डिजीज को बढ़ा आते हैं पर कॉज नहीं करते, अनलेस कि वो म्यूटेशंस बहुत पेनिट्रेंट हों। तो जब हमें कोई हमारा गलत रहन सहन होता है, तो ये प्रेसिपिटेट होती हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। फॉर एग्जांपल, अगर हमें हाइपरटेंशन है तो सिर दर्द होना, चक्कर आना, ऐसा होगा। अगर हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उसमें हम देखेंगे कि हमारा पीरियड्स इरेगुलर होंगे, हम मोटापे के शिकार होंगे, मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं जिनके कारण चेहरे पे अनचाहे बाल होते हैं। तो अलग अलग डिसऑर्डर्स के अलग अलग सिम्टम्स होंगे जो वार्निंग साइंस होंगे।
0: जी बिल्कुल। तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में आप बात कर रही हैं, तो क्या ये जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी या समस्या है क्या?
1: ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, आजकल इसे पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें देखा गया है मल्टीपल एंडोक्राइन सिस्टम्स इन्वॉल्व्ड हैं और इसमें बोथ जेनेटिक फैक्टर्स एंड लाइफस्टाइल इन्वॉल्व्ड है। तो इसमें देखा गया है कि जब हम गलत जीवन शैली, जैसे मोटापा, हाईली प्रोसेस्ड डाइट खा रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये यूजली 70-80% इन गर्ल्स को ये होता है, वो मोटापे के शिकार होते हैं, ओबेसिटी होती है, और ये 1 in 8 गर्ल्स पाया गया है। तो डेफिनेटली इसका डायरेक्ट लिंक है हमारे लाइफस्टाइल के साथ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, सोशल हैबिट्स के साथ। तो इसमें देखा जाता है कि इनमें नॉट ओनली एक मेल हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं जिनके कारण बाल पतले हो जाते हैं, फेस पे एक्ने आ जाते हैं, चेहरे पे अनचाहे बाल आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलैरिटीज होती हैं, ओवरीज में सिस्ट होती है, एंड इन एडिशन टू दैट हम ये देखते हैं इनको इनफर्टिलिटी, और दूसरा इनमें इंसुलिन के लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, यही मैं अभी आपसे दूसरा सवाल यही पूछने वाली थी कि पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी और स्पर्म डीएनए डैमेज की समस्या होती है, ये किस तरह से होती है और इसका समाधान क्या आप सुझाती हैं?
1: देखिए, अभी तक तो यही माना जाता था कि इनफर्टिलिटी एक फीमेल प्रॉब्लम है, केवल फीमेल्स में होती है, परंतु हमारे शोध ने दिखाया है और अब बहुत जगह से ये स्टडीज आ रही हैं कि आधे कारण इनफर्टिलिटी के आदमियों के कारण है, मेन के कारण है। और इनफर्टिलिटी जो आदमियों में होती है, उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि टेस्टिस अनडिसेंडेड हो या वेरिकोसील हो, बहुत कारण है, परंतु एक कॉज है अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। ये वो मेन है जिनमें स्पर्म काउंट नॉर्मल है, सारे स्पर्म पैरामीटर्स नॉर्मल है, एंडोक्राइन पैरामीटर, हार्मोनल पैरामीटर नॉर्मल है, परंतु इन आदमियों में देखा गया है कि इनके स्पर्म में ऑक्सीडेटिव तनाव ज्यादा होता है और ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज ज्यादा होता है जिसके कारण इनका डीएनए नष्ट होता है और इस कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आदमी लोग इसके अवेयर हों कि इसका डायरेक्ट लिंक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से है. फॉर एग्जांपल हाईली प्रोसेस्ड डाइट, अगेन मोटापा, मानसिक तनाव, स्मोकिंग, एल्कोहल कंजम्पशन, सेल फोन.

0: ज़्यादा यूज़ करना। और अब बहुत एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम लोग शादी लेट कर रहे हैं और बच्चे और भी लेट पैदा करते हैं, जिसके कारण ऑक्सीडेटिव तनाव और ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज ज़्यादा बढ़ जाता है। और स्पर्म केवल एकमात्र ऐसा सेल है हमारे शरीर में जो
1: जी
0: अपने डीएनए को ठीक नहीं कर पाता। दूसरे सेल्स में जब ऑक्सीडेटिव तनाव होता है तो वो अपने एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ा लेते हैं, परंतु जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो अपने को बचा नहीं पाता, तो वो डीएनए डैमेज बढ़ता रहता है। और वो डीएनए डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और न्यूक्लियर डीएनए में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण जो एनर्जी बनती है वो कम होती है, ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल ज्यादा बनते हैं और डीएनए डैमेज होता है। और क्यों इंपॉर्टेंट है स्पर्म में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के समय जब बच्चा बनता है तो ये डीएनए फादर से मदर के अंडे में जाता है और वो फ्यूज होता है। तो अगर डीएनए की क्वालिटी पुअर हो तो उससे नॉट ओनली बांझपन का वो शिकार होते हैं, परंतु अगर वो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जा रहे होंगे तो उसका सक्सेस रेट पुअर होगा। बार बार बच्चे गिरते हैं, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है, बच्चे में कॉन्जेनाइटल मैल फॉर्मेशन होते हैं। और अब देखा गया है जैसे कई बच्चों में कैंसर्स पाए जाते हैं जो फादर के डीएनए के डैमेज के कारण होते हैं। और ये भी देखा गया है कई जेनेटिक एपिजेनेटिक डिजीजेज इसके कारण हैं। और दूसरा ये मल्टीपल जैसे न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर जो बच्चों में है, वो फादर के डीएनए डैमेज से अब देखा गया है, स्टडीज ने दिखाया है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर अधिकतर फादर के स्पर्म डीएनए डैमेज से कोरिलेटेड होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली ये आपके बच्चे को इफेक्ट कर रहा है, परंतु ये पीढ़ी दर पीढ़ी काफी जेनरेशन तक इसका असर रहता है।
1: जी बिल्कुल, तो ये जो जेनेटिक्स की वजह से भी जो बीमारियां बच्चों में लगती हैं वो तो आपने बताई ही, लेकिन बच्चों की लाइफ स्टाइल भी काफी आजकल बदल चुकी है। बच्चों का बाहर आउटडोर गेम्स खेलना काफी हद तक कम हो गया है। तो आप हमें ये बताइए कि बच्चों में जो खराब लाइफ स्टाइल के कारण जो बीमारियां आती हैं या परेशानियां आती हैं वो क्या हैं और उसका क्या समाधान आप सुझाएंगी?
0: मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखा गया है जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जो होती थी 60-70 साल पे, अब वो बच्चों में देखी जा रही हैं। जैसे टाइप 2 डायबिटीज ही 30 साल पे होती थी, अब वो उससे भी कम उम्र में 10 साल से छोटे बच्चों में अब देखा गया है कि उनको ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं, डायबिटीज जल्दी हो रहा है, मिडिल एज में देख रहे हैं हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों को, स्ट्रोक हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पेरेंट्स को भी अवेयर करें कि बच्चों का रहन सहन पे ध्यान दें। बच्चों को हर रोज खेलने जाना चाहिए। खेलने से नॉट ओनली उनकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, थोड़े एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, मानसिक तनाव कम होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को अवेयर किया जाए। और कभी कभी चलो गाइडलाइंस आती हैं कि कोई जैसे कोविड में था बाहर नहीं जा सकते थे, या कभी कभी कहते हैं प्रदूषण बहुत है सुबह शाम ना निकलो, या बहुत सुबह जैसे ठंड होती है। तो मैं तो कहती हूँ परिवार के साथ घर के अंदर योग कराएं, इससे नॉट ओनली बच्चे का फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगा परंतु उससे बच्चे की पूरे मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि योग एक जीवन शैली है। ये वो ही नहीं है जो केवल एक आसना आप एक मैट पे करते हो, परंतु आप क्या खाते हो, आप बच्चों को क्या खिला रहे हो, क्या एक हेल्दी डाइट है, होल प्लांट बेस्ड डाइट, मिनिमली प्रोसेस हो, जो सीजन है उसके अनुसार हो, कितना खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, पेरेंट्स को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। पर आजकल हम देखते हैं पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बच्चों को हम केवल ब्रेड जैम दे देते हैं, जूसेस दे देते हैं जो इतनी ज्यादा कैलोरीज होती हैं, शुगर होता है। तो अगर पेरेंट्स को भी ये सेंसिटिव होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि क्या एक हेल्दी डाइट है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे का घर का बना खाना खाएं। पहले तो हम खाना बाहर खाने जाते थे, अब घर पे खाना बाहर से आ जाता है, टेस्ट अच्छा होता है परंतु कितना पौष्टिक है, और इससे कारण बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं। और अब स्टडीज ने दिखाया है कि बच्चे जो स्कूल में परफॉर्म करते हैं, अगर एक बहुत कैलोरी डेंस डाइट खाते हैं, वेरी हाई फैट डाइट खाते हैं, तो स्कूल के स्कोर्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। और हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि अगर ये बच्चों को स्कूल में योग कराया जाए, बच्चे घर पे योग करें, तो नॉट ओनली उनकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। आजकल हम देखते हैं बच्चों में ही डिप्रेशन होना शुरू हो गया है। बच्चों को ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु और भी अच्छा तो ये भी है कि क्यों हम वेट करें कि कुछ हो
1: जी।
0: अगर बच्चे ये करना शुरू करते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनकी अटेंशन, उनकी लर्निंग, उनकी मेमोरी बढ़ती है, उनका एक इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है, इमोशनल रिजिलियंस बढ़ता है। तो जैसे आजकल स्ट्रेसफुल टाइम्स हैं, चैलेंजिंग टाइम्स हैं, तो अगर बच्चे भी योग करना शुरू करें तो

0: बच्चों में रिजिलियंस बढ़ेगी, कोपिंग मैकेनिज्म बढ़ेगा।
1: जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं, योग करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और करना चाहिए हर किसी को, हर किसी उम्र के व्यक्ति को। लेकिन आप इस बारे में क्या बताएंगी, जो लोग रेडियो, टीवी या इंटरनेट को देख करके योग करना शुरू कर देते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए या विशेषज्ञ की सलाह लेना और उनकी निगरानी में ही योग की शुरुआत करना आवश्यक है?
0: ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप योग करना शुरू करें तो जरूर एक योग थेरेपिस्ट से पहले कंसल्टेशन ले लें। पहले एक दो हफ्ते उनसे सीखें, फिर अपने आप करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, अगर आपको काला मोतिया है, वो आपको गाइड करेंगे कौन से आसन नहीं करने चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली चाहे जब भी आप शुरू करें, आप एक योग थेरेपिस्ट को अपना बताएं क्या हेल्थ इश्यूज हैं और फिर उनकी कंसल्टेशन के बाद उनसे सीख के सही तरह करें। कई बार हम डायरेक्टली देख के करते हैं तो कई उसके जो स्मॉल पॉइंट्स होते हैं, कैसे उसको इफेक्टिवली करना है, कैसे डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करनी है, हम वो कैच नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट अगर एक योग थेरेपिस्ट के साथ करेंगे तो हमें, या योग इंस्ट्रक्टर के साथ करेंगे, वो हमें गाइड करेंगे कैसे सही करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि डेफिनेटली गाइडेंस लेके करें।
1: जी बिल्कुल, योग करना भी जरूरी है और सही तरीके से भी योग करना जरूरी है। अच्छा, योग में आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये तीनों की भूमिका है, तो ये तीनों में कोई अंतर है क्या, या और ये लाइफ स्टाइल डिजीजेस में ये किस तरह से लाभदायक होते हैं?
0: सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि योग एक जीवन शैली है। जैसे मैंने कहा, ये केवल वो नहीं है जो हम आसनास कर लेते हैं, नहीं तो वो एक्सरसाइज होगी। जब भी हम योग, तीन चीजें आसना, प्राणायाम और ध्यान है, और जैसे हम कहते हैं 8 limbs होते हैं, योगा एक पूरी लाइफस्टाइल है कि कैसे हम अपने को कंडक्ट करते हैं, कैसे हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम अपने सेंसेस को विड्रॉ करते हैं सो दैट हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा पाएं। तो ये सस्टेनेबल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये समझने को है कि योग में आसना, प्राणायाम और ध्यान तीनों इसके कॉम्पोनेंट्स हैं। आसना ये नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड आसना करने की जरूरत है। जैसे कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, जितना कर सको उतना करो। और आसन करने के बाद आसनास के साथ साथ रिलैक्सेशन पोजेज भी करने जरूरी हैं, क्योंकि इससे फिर वी अटेन डीप रिलैक्सेशन। पर उसके बाद प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। तो आसनास हमारी बॉडी को एक परफेक्ट ज्योमेट्री में लाते हैं, जिसके कारण हम इफेक्टिवली प्राणायाम कर सकते हैं। और प्राणायाम अगर हम ठीक तरह करें तो उससे क्या होता है कि हम ऑटोमेटिकली एक स्टेट ऑफ ध्यान में पहुंचते हैं, विच इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ हाइटेंड अवेयरनेस, कि जो भी हम कर रहे हैं हम उसके बारे में अवेयर हैं और हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में माइंडफुली प्रेजेंट हैं। तो ये तीन बहुत अभिन्न अंग हैं योग के। परंतु आजकल लोग केवल सोचते हैं कि योग एक आसनास है या पोस्चर्स है। नहीं, योग अगर आपने करना है तो आसना, प्राणायाम और ध्यान तीनों जरूरी हैं। इसके साथ सही अपना आहार होना चाहिए और पॉजिटिव थॉट्स, ये सारे योग ही हैं।
1: जी बिल्कुल, योग ही हैं, और योग को अच्छी तरह से जान समझ के अगर शुरू किया जाता है तो ये आपके जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर रीमा, एक सवाल बार बार मन में ये आता है कि योग और मेडिटेशन क्या उपचार के लिए पूरी तरह से कारगर हैं, और क्या जो है इससे हमारी बायोलॉजिकल एज जो है वो एक्चुअल एज से कम ये हो सकती है क्या, इस योग के माध्यम से या प्राणायाम, ध्यान और आसन के माध्यम से?
0: ये दो क्वेश्चंस हैं। पहले आपने बोला कि क्या इससे बिल्कुल हम ठीक हो सकते हैं, तो देखिए अगर हम इनको बचपन से ही करते हैं तो डिजीजेस होंगे ही नहीं। कई जेनेटिक डिजीजेस हैं तो वो तो होंगी, पर हमने देखा है कि कई डिसऑर्डर्स जिनका जेनेटिक बेसिस था उनमें भी देखा गया कि उसमें भी कोपिंग बेटर होती है। परंतु अगर हम योग करें पहले से, पूरी अपनी रहन सहन को ठीक रखें, योग करें, तो डिजीजेस होंगे नहीं। तो योग से डिजीज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन होती है। और अगर हम इसको, अगर एक डिजीज हो गई है और इसको फिर इनकॉर्पोरेट करें, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम किस स्टेज पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, अगर एक लड़की हमारे पास आती है 18-20 साल पे, हम उसको योग पे डाल सकते हैं और योग डालने से उसका धीरे धीरे ठीक होगा, बट इट टेक्स टाइम। परंतु अगर कोई हमारे पास आया 30-35 साल की उम्र पे, तो हम योग को एज एन एडजंक्ट थेरेपी देते हैं विद द मॉडर्न मेडिसिन। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कब इंसान आता है, क्या सिवेरिटी है ऑफ डिजीज है, उसको असेस करके हम कर सकते हैं। रिगार्डिंग एजिंग, जो आपने बोला है, ये हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि योग करने से है हमारी बायोलॉजिकल एज हमारे एक्चुअल एज से काफी कम हो सकती है।
1: अच्छा,
0: तो आपने देखा है कि लोग करोड़ों रुपए आजकल रिसर्च पे खर्च हो रहा है कि कई नई चीजें आए जिससे, और कितना हम खर्चते हैं यंग लगने के लिए, कितना चेहरे पे चीजें लगाते हैं। परंतु योग करने से आपकी उम्र चाहे 70 हो, पर अगर आपने योग किया है तो एक्चुअल

0: उम्र 45 या 50 इयर्स होगी। और ये देखा गया है कि जो फंक्शनल डिक्लाइन होता है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के डैमेज के कारण होता है, जो एनर्जी कम बनती है जिसके कारण हर ऑर्गन सिस्टम फंक्शन कम हो जाता है, वो मेंटेन हो सकता है। दूसरा, ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है। तीसरा, देखा गया है कि एजिंग के साथ भूलने की प्रॉब्लम, जो डिमेंशिया होता है, बढ़ रहा है, वो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि योग से। हमने देखा है कई ऐसे फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को नरिश करते हैं। तो जैसे कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स, ये ब्रेन में एनाटॉमिकल चेंजेस लाता है, जो कई की सेंटर्स हैं जो मेमोरी हमारे लर्निंग के साथ एसोसिएटेड हैं, वो बढ़ते हैं और उनका साइज बढ़ता है। और जो स्ट्रेस का सेंटर है जैसे एमिगडाला, उसका साइज कम होता है। तो योग से डेफिनेटली हम अपना रेट ऑफ एजिंग कम कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर रीमा, आपने आणविक जीव विज्ञान यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स विषय पर शोध किया है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। और इस विषय पर शोध करने का विचार आपके मन में क्यों आया और किन उद्देश्यों को लेकर आपने इसे शुरू किया था, और क्या ये शोध उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सका?
0: हमने ये सोचा कि आजकल हम देखते हैं हम कितनी दवाइयां लेते हैं, परंतु वो दवाइयां जीवन भर लेनी पड़ती हैं और फिर भी बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने ये देखा कि चाहे हम लंबा जी रहे हैं, परंतु पिछले आखिरी हमारे जो 70-80 साल के बाद हमारे को इतनी बीमारियां हो जाती हैं, हम बेड रिडन होते हैं, डिमेंशिया हो जाता है। तो क्यों ना कुछ ऐसे अपनाया जाए या उस चीज़ पे रिसर्च की जाए जो हमें नॉट ओनली हमारी लाइफ स्पैन बढ़ाती है पर हमारा हेल्थ स्पैन भी बढ़ाए। इस कारण हमने ये स्टडीज योग पे शुरू करी थी। और जेनेटिक्स, क्योंकि मैंने स्पेशलाइज किया है, तो हमने देखा कि नॉट ओनली, जैसे पहले ये होता था कि हाँ योग से मानसिक तनाव कम होता है, स्ट्रेस एंजाइटी कम होता है, हाइपर ब्लड प्रेशर में सुधार होता है, परंतु अब हम ये मैकेनिस्टिक स्टडीज कर पाए हैं कि ये क्यों हो रहा है। हमने देखा है कि जीन्स के एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आते हैं, और योग से हमने देखा है कि हमारे जो एपिजीनोम है उस पे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और वो जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ता है जो हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे डीएनए रिपेयर, जो जीन्स डीएनए रिपेयर करा रही हैं, जो जीन्स इन्फ्लेमेशन कम करा रही हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव कम कर रही हैं, उनका एक्सप्रेशन कम हो रहा है। जो रिपेयर करती हैं, जैसे डीएनए रिपेयर, उनकी एक्सप्रेशन लेवल्स बढ़ रहा है।
1: जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा आपने शोध भी किया और इतना आप योग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, पेरेंट्स, सभी लोगों को योग करना चाहिए। अगर वो दिन में 30 से 40 मिनट निकाल लेते हैं आसना प्राणायाम ध्यान करने में, फैमिली टुगेदर करें, ये बेस्ट क्वालिटी टाइम होगा। और इससे करने से आप नॉट ओनली कभी कोई डिजीज से जूझेंगे नहीं, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, मानसिक सेहत अच्छी इंप्रूव होगी। सो योग से फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, आप एक हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे डीएनए तक पे एक्ट करता है और हमारे नॉट ओनली जीनोम पे इसकी अच्छा असर होता है पर एपिजीनोम पे। सो जो भी असर तुम्हारे पे हो रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका अच्छा असर रहेगा।
1: जी बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो यानी कि योग हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत अहम है हमारी जिंदगी के लिए। डॉक्टर रीमा, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: जीवन शैली जनित रोग और योग, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एनाटॉमी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा से। आपसे बात कर रही थी रेनू श्रीवास्तव जोहरी। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
1: अभी आपने सुना स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत, और अब जो अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे ठीक 9:15 पर, वो होगा धरती आकाश। 9:15 के बाद 9:30 पर सुनेगा मिट्टी दी महक, और 10:10 पर होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, फिल्म संगीत आपकी पसंद। जुड़िएगा हमसे और कीजिएगा बातें और सुनिएगा बहुत ही अच्छे अच्छे गीत। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जो है धरती आकाश। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात

0: 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़।
1: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
2: मैं रूपाली गायकवाड़ आज आपके साथ स्थिरता और हरित क्रांति के बारे में जानकारी दूंगी। पहली औद्योगिक क्रांति के बाद से ही एनर्जी यानी ऊर्जा ने दुनिया भर में लगातार विकास को आगे बढ़ाया है। 19वीं सदी के मध्य से हाइड्रोकार्बन ईंधन ने औद्योगिक क्रांति की रफ्तार को तेज किया है। हालांकि इनके साथ पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां भी आई। कोयला और गैस एनर्जी के सबसे सस्ते पारंपरिक स्रोत है, लेकिन ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और जहरीले वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ये ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाते हैं और हमारे वायुमंडल की रक्षा करने वाली ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आर्थिक विकास सीधे तौर पर ऊर्जा के स्रोतों से जुड़ा है। अगर इन पर सही समय ध्यान न दिया जाए तो ये पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके अस्तित्व के लिए खतरा बनते हैं। हाइड्रोकार्बन ईंधन की जगह लेने के लिए ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा सबसे सस्ता विकल्प है। नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने से न केवल आयात पर निर्भरता कम होती है बल्कि ऊर्जा की लागत और अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता आती है। आज हरित उद्योग टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है। हालांकि इसके लिए हरित उद्योग के प्रति हमारे नजरिए में व्यापक बदलाव की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि ग्रीन इकोनॉमी पर्यावरण पर कम से कम बुरा असर डालते हुए इंसानों की भलाई को बेहतर बनाती है। इंसानी तरक्की को औद्योगिक क्रांति से पहले के दौर में वापस तो नहीं ले जा सकते। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लगातार विकास के लिए साफ सुथरे ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दिया जाए। इसलिए हमारा मुख्य मकसद कई तरह के साफ सुथरे ऊर्जा स्रोतों के साथ देश में टिकाऊ विकास करना है। इसे हासिल करने के लिए हमें प्रदूषण के अलग अलग स्रोतों को बेकाबू होने से पहले ही रोकना होगा। हरित उद्योग को ऐसे आर्थिक विकास की तलाश करनी चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। इसका समाधान है सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा के असीमित स्रोतों का इस्तेमाल करना, साथ ही मौजूदा संसाधनों को ज्यादा कुशल बनाना और पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग करके सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना। ऐसी उत्पादन प्रक्रियाएं विकसित करना जिनसे कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन पदचिन्ह कम हो, ऊर्जा की बचत हो और कचरा कम निकले। इसके अलावा समाधान प्राकृतिक सामग्रियों को अपनाने और पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग के लिए क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन बनाने में भी है। औद्योगिक क्षेत्र में टिकाऊपन की ओर बदलाव भारत में साफ तौर पर देखा जा सकता है। फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करने वाला ग्रीन सीमेंट क्लिंकर यानी धातुमल उत्सर्जन को कम कर रहा है। सरकार तेजी से नीतियां लागू कर रही है और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है और उसे अनिवार्य बना रही है। तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र भी ग्रीन हाइड्रोजन और बायोब्लेंडेड फॉसिल फ्यूल के जरिए नेट जीरो का लक्ष्य बना रहा है। सरकार ने ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए रीस्किलिंग प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। रीस्किलिंग प्रोग्राम अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स को नई स्किल सिखाने में कर्मचारियों को एनर्जी मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी के तरीकों और डिजिटल तरीके से वेस्ट कम करने का प्रशिक्षण देना शामिल है। इन प्रोग्राम्स का मकसद टेक्निकल और सिस्टम्स की समझ से जुड़ी स्किल्स को बेहतर बनाना है ताकि कर्मचारी कम कार्बन उत्सर्जन वाली मशीनें चला सके, सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल कर सके और पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन कर सके। समस्या और संभावित समाधानों को देखने के बाद आइए अब कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और जीरो कार्बन लक्ष्य या नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचने की योजनाओं पर नजर डालें। आसान शब्दों में इसका मतलब है ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन और उन्हें कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बीच सही संतुलन बनाए रखना। रणनीतिक स्तर पर यूएन 2035 तक उत्सर्जन में 55% की कटौती करने और 2050 तक वैश्विक स्तर पर नेट जीरो लक्ष्य तक पहुंचने का समर्थन करता है। पेरिस समझौते का नेट जीरो लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय उष्मीकरण को प्री इंडस्ट्रियल स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक सीमित करना है। 130 से ज्यादा देशों ने नेट जीरो लक्ष्य अपनाए हैं जिन्हें फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को धीरे धीरे खत्म करके उसकी जगह सोलर और विंड जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके और साथ ही पेड़ पौधे लगाकर और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाकर हासिल किया जाना है। इस रणनीति की सहायता करने के लिए नई नेट जीरो टेक्नोलॉजी विकसित करने की जरूरत है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तेजी से आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण को भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का प्रकल्प किया है। तब तक भारत में ज्यादातर आधुनिकीकरण काम पूरा हो चुका होगा। एक अहम पड़ाव के तौर पर

0: भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट की फॉसिल फ्यूल मुक्त ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जिससे अपनी ऊर्जा जरूरत का 50% हिस्सा रिन्यूएबल स्रोतों से पूरा किया जा सके। इसके लिए जिन क्षेत्रों पर काम करने की योजना है उनमें कुशल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विस्तार करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, पेड़ पौधे लगाना, कार्बन हटाने वाली टेक्नोलॉजी और तरीकों का इस्तेमाल करना और भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए जोर शोर से प्रयास करना शामिल है। बेहतर और बड़े नतीजे पाने के लिए कई स्तरों पर और अलग अलग तरीकों से काम करना जरूरी है। इन कदमों में रणनीतिक स्तर पर नेट जीरो सरकारी नीतियां बनाना शामिल है। जमीनी स्तर पर शुरुआती शिक्षा के दौरान पर्यावरण के अनुकूल आदतें विकसित करने और उन्हें जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाने की जरूरत है। हमें फ्लेक्सी फ्यूल को अपनाना होगा और उसके हिसाब से ढलना होगा। फ्लेक्सी फ्यूल पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने की दिशा में एक कदम है। फ्लेक्सी फ्यूल को अपनाने के कई तरीके हैं। सबसे आम और तेजी से लोकप्रिय हो रहा तरीका है फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, इसमें इथेनॉल या मिथेनॉल जैसे बायोफ्यूल मिलाना। हालांकि फ्लेक्सी फ्यूल का एक और विकल्प है हाइड्रोजन मिला हुआ ईंधन, चाहे वो पेट्रोल डीजल या CNG हो। मिश्रित ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने के कई बड़े फायदे हैं। ये न सिर्फ ईंधन की खपत कम करता है बल्कि धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी घटाता है, कम ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है और प्रदूषण को भी धीरे धीरे कम करता है। बायोफ्यूल को बढ़ावा देने से न सिर्फ कृषि क्षेत्र को मदद मिलेगी बल्कि आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम होगी। जाहिर है टिकाऊ नतीजे पाने और पीढ़ीगत बदलाव लाने के लिए नियमों को लागू करने और प्रोत्साहन देने के बीच सही संतुलन बनाना होगा। नेट जीरो हासिल करने के लिए दो सबसे अहम बातें हैं, उत्सर्जन को पहले कम करना और फिर पूरी तरह से खत्म करना। इन दोनों बुनियादी बातों पर हमेशा और हर बार सक्रिय रूप से ध्यान देने की जरूरत है ताकि ये पक्का किया जा सके कि नीतियां लचीली हो और ऊर्जा के रिन्यूएबल स्रोतों की और बढ़ने के अंतिम लक्ष्य के प्रति हमेशा सक्रिय रहे। हमें ये भी मानना होगा कि जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है प्रदूषण या कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने का कोई एक या स्थायी समाधान नहीं है। साथ ही हमें सावधान रहने की भी जरूरत है कि हम ईमानदारी से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाएं, न कि आज की समस्या को सिर्फ कल के लिए टाल दें। इसी के साथ मैं आप सभी से गुजारिश करती हूं कि हरित उद्योग को एक सफल कहानी बनाने में मदद करें और लगातार कोशिशों के जरिए नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए हाथ मिलाएं, क्योंकि ये एक हमेशा जारी रहने वाली यानी वर्क इन प्रोग्रेस प्रक्रिया है।
1: मैं प्रदीप कुमार मुखर्जी दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी में सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ। भारत में विंध्या सतपुड़ा से लेकर पश्चिमी और पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, लेकिन सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है अरावली की पहाड़ियां। अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। लगभग 2 से 2.5 अरब वर्ष पुरानी इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग यानी प्रोटेरोजोइक काल में प्राचीन विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण हुआ था। यह समय की बात है जब पृथ्वी पर महाद्वीप आकार ले रहे थे। अरावली पर्वत श्रृंखला हिमालय से भी कई अरब वर्ष पुरानी है। गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान हरियाणा से गुजरती हुई यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। असल में अरावली की पहाड़ियां गुजरात राजस्थान हरियाणा और दिल्ली के 4 राज्यों के कुल 37 जिलों में फैली है। इन पहाड़ियों का सबसे अधिक लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में है। इन 37 जिलों में 11 जिले राजस्थान, 7 जिले हरियाणा, 5 जिले गुजरात और 4 जिले दिल्ली में हैं। दिल्ली में 4 जिले रिज क्षेत्र में आते हैं जो दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के सिरोहा जिले में माउंट आबू में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। अरावली असल में संस्कृत के आरा और वली शब्दों से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है चोटियों की श्रृंखला। राजस्थान की स्थानीय भाषा में अरावली को आड़ा वाली भी कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुमूल्य खनिजों का भंडार है, साथ ही ये पर्वत श्रृंखला जैव विविधता और पारिस्थितिकी का अद्भुत संगम है। लेकिन पिछले काफी समय से ही अवैध खनन और निर्माण एवं शहरीकरण संबंधी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इसके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे। वैसे तो विगत काल में भी अरावली को लेकर कई कानूनी विवाद रहे हैं, लेकिन बीते वर्ष में 20 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर अरावली की इस परिभाषा को स्वीकार करते हुए अपना फैसला सुनाया कि जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे हिस्से को ही अरावली पहाड़ियों की श्रेणी में शामिल किया जाए।

0: सुनवाई के लिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया। उस दिन न्यायालय ने 29 दिसंबर 2025 के अपने अंतरिम आदेश को आगे करते हुए दोहराया कि अवैध खनन से अरावली की अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। उल्लेखनीय है कि ग्रेट ग्रीन वॉल के नाम से जाने जाने वाली अरावली जीवन रक्षक पर्वत श्रृंखला है, जो थार मरुस्थल की रेत को उत्तर भारत में फैलने से रोकने वाली प्राकृतिक हरित दीवार की तरह काम करती है। बिना अरावली के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली ज्यादा शुष्क होते हैं। ये मानसूनी हवाओं को प्रभावित कर वर्षा बढ़ाती है। इसके अलावा ये पर्वत श्रृंखला भौमजल पुनर्भरण, जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय जलवायु संरक्षण में महती भूमिका निभाती है, जिसका प्रभाव केवल पहाड़ियों तक ही सीमित न रहकर समस्त उत्तर भारत की जलवायु, जल सुरक्षा और जीवन गुणवत्ता पर भी गुणात्मक रूप से पड़ता है। अरावली की पहाड़ियाँ अनेक मुख्य नदियों जैसे लूणी, बनास, साहिबी और साबरमती का उद्गम स्थल है। ये नदियाँ कृषि और पेयजल के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक रूप से अरावली जल चक्र में मदद करती है। वर्षा का जल इसकी चट्टानों से रिसता है और भौम जल में परिवर्तित होता है। एक तरह से अरावली प्राकृतिक स्पॉन्ज जैसी है, जो वर्षा जल को जमीन के नीचे भेजती है। अरावली का आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि खनिजों से भरपूर है। यहाँ जस्ता, सीसा, तांबा, चांदी जैसी धातुएं, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट आदि प्रचुर परिमाण में पाए जाते हैं। अरावली में जैव विविधता और पारिस्थितिकी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की नाना प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार अरावली एक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट के रूप में भी काम करती है। यहाँ पेड़ पौधों की 300 से अधिक प्रजातियां, 200 से अधिक देसी और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां तथा 100 से अधिक तितलियों की प्रजातियां उपलब्ध है। पेड़ों में धौ या धौक, जिसका वैज्ञानिक नाम एनोजीसस पेंडुला है, नीम, बबूल, ढाक यानी पलाश, बेर एवं गुगुल आंवला जैसे औषधीय पौधे तथा जंतु जानवरों में तेंदुआ, लकड़बग्घा, नीलगाय, जंगली बिल्ली और चौसिंगा, मृग, सियार, लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा मॉनिटर लिजार्ड, नेवला, मकड़ी, मेंढक, सांप बिच्छू आदि जीवों के समूह भी देखने को मिलते हैं। अरावली में अनेक अभयारण्य भी हैं, जो जैव विविधता संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरावली की पहाड़ियों को सन 1975 के बाद से बेतहाशा भूमि अधिग्रहण, अवैध खनन और गैर वाणिज्यिक कार्यों के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा है। वर्ष 1975 और 2019 के बीच अरावली पहाड़ियों का लगभग 8% यानी 5,773 वर्ग किलोमीटर हिस्सा या तो लुप्त हो गया है या अपना पहाड़ी स्वरूप खोकर समतल हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली में खनन तेजी से हो रहे विकास के कारण इन पहाड़ियों में अब तक 12 दरारें खुल चुकी हैं, जो राजस्थान में अजमेर की मगरा पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू के खेतड़ी और माधोगढ़ होते हुए हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक फैल गई है। इन दरारों की वजह से थार रेगिस्तान की धूल और रेत अब दिल्ली तक पहुंच रही है। इसके अलावा अधिक भौमजल के दोहन से हरियाणा और राजस्थान में जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। विभिन्न गतिविधियों के कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद की अरावली पहाड़ी, जिसके वन क्षेत्र में 10,000 एकड़ की क्षति हुई है, के जंगलों में पानी की कम उपलब्धता के कारण अब जंगली जानवर कम देखे जा रहे हैं। नतीजतन मृदा क्षरण के साथ जैव विविधता तथा वनस्पति आवरण में कमी आई है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा वन विभाग की ओर से वर्तमान वर्ष के आरंभ में नेशनल ग्रीड ट्रिब्यूनल यानी NGT में रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार फरीदाबाद, गुरुग्राम और नू जिलों के अरावली के जंगलों में अवैध खनन और अतिक्रमण के कारण जल निकायों, प्राकृतिक झरनों और तालाबों को बहुत क्षति पहुंची है। अरावली की पहाड़ियों पर अगर इसी तरह खतरा बना रहेगा तो इसका मरुस्थलीकरण प्रभाव भी तेज होगा तथा भूमिगत जल के पुनर्भरण होने की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। परिणाम स्वरूप जल संकट, प्रदूषण और तापमान तीनों में बढ़ोतरी होगी। इसका असर खेती, पानी, जलवायु, वन्य जीव और मानवों पर भी नकारात्मक रूप से पड़ेगा। अतः अरावली पर्वत श्रृंखला की उपयोगिता और महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण तथा इसकी संपदा को उजड़ने और नष्ट होने से बचाने के प्रयास सक्रिय और बड़े पैमाने पर किए जाने चाहिए।
1: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।

0: सुरक्षा और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया, जिसके लिए डॉक्टर कविता नरसिंह राव गित्ते को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के रंगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक ने सीमित संसाधनों वाले आदिवासी विद्यालय को डिजिटल एवं अनुभवात्मक शिक्षा के केंद्र में बदल दिया। उन्होंने 7D VR AR लैब और आर न्यूज जैसी सुविधाएं विकसित की। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एवं इसरो प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त की। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: लद्दाख के कारगिल स्थित शासकीय मॉडल मिडिल स्कूल में मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया। 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर संदर्भ आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा कमाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरलम के श्री सुनील कुमार केपी ने नवाचारी एवं आईसीटी सक्षम भाषा शिक्षण के माध्यम से मलयालम भाषा में पठन, संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। विद्यार्थी मार्गदर्शन एवं समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सुनील कुमार केपी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री याकू तामे ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जी

0: सिस्टम में विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा और एक जर्जर विद्यालय को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज से सुसज्जित संस्थान में बदला। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किए, जिसके लिए सुश्री याकू तामे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: आंध्र प्रदेश के श्री राजेश कोलुरी ने एआई सक्षम एफएलएन डिजिटल शिक्षा एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया। राज क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को व्यापक बनाया तथा शिक्षकों की डिजिटल क्षमता वृद्धि में योगदान दिया। श्री राजेश कोलुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री गबर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के मेहरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्या खांद में 35 वर्षों तक ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दूरदर्शन उत्तराखंड के शैक्षिक मॉड्यूल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूर दराज के विद्यार्थियों तक पहुँचाई। उनके नवाचार, ICT आधारित शिक्षण एवं समर्पित योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: असम के रंगिया स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय NFR में डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल ने समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम किया है। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने असम के हजारों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, जिसके लिए डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के वार्ड नंबर 30 स्थित श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल में श्री पलाश चौधरी ने सुबह की भूख के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सो का लोर पुष्टि पहल शुरू की, जिससे बच्चों की उपस्थिति और विद्यालय में नामांकन 3 गुना हुआ। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा, जिसके लिए श्री पलाश चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। बिहार के कुचाईकोटे स्थित मिडिल स्कूल कुचाईकोटे कन्या में सुश्री पुष्पा प्रसाद ने कम लागत वाली सामग्री, डिजिटल टूल्स और ग्रुप वर्क के जरिए विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर दिए। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी बढ़ाई। उन्होंने प्लांटेशन, वाटर सेग्रीगेशन और प्लास्टिक फ्री स्कूल जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। सुश्री पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। 18 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल ने दादरा एवं नगर हवेली के दलवाड़ा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में विज्ञान परियोजनाओं तथा शिक्षक प्रशिक्षण में योगदान देकर उन्होंने समावेशी शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सशक्त किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जगदीशपुर स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में श्री इफ्तिखार खान ने निःशुल्क रविवार कला कक्षाओं के माध्यम से रचनात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया। उन्होंने कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। कला शिक्षा, प्रतिभा संवर्धन एवं सामाजिक जागरूकता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री इफ्तिखार खान को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के होनेबेल स्थित गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल समतगरु में सुश्री रत्ना कुमारी एस ने टॉय बेस्ड पेडागॉजी, अबैकस मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के जरिए सीखने को आनंददायक और समावेशी बनाया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण विद्यार्थियों ने प्रतिभा करंजी जैसे स्टेट कल्चरल प्लेटफॉर्म्स और इंस्पायर जैसे नेशनल साइंस प्लेटफॉर्म्स पर सफलता हासिल की, जिसके लिए सुश्री रत्ना कुमारी एस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: जम्मू कश्मीर में डलहौरी के HSS डलहौरी में मोहम्मद अयाज रैना ने कंप्यूटर लैब से लेकर स्मार्ट बोर्ड और इंटरैक्टिव ई कंटेंट को शिक्षण का हिस्सा बनाया। शिक्षक विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन बॉटनी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद अयाज रैना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: रोहतक हरियाणा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांघी में श्री अनिल कौशिक ने

0: को रोचक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 40 से अधिक शिक्षण मॉडलों से सुसज्जित मैथ्स लैब, इंटरैक्टिव हरबंस पजल और वर्चुअल मैथ्स लैब विकसित की, जिसके लिए श्री अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। त्रिपुरा के साबरूम स्थित पीएम श्री साबरूम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री रंजन देवनाथ ने स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स और इको क्लब एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण आदिवासी छात्राओं ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान और चीफ मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड हासिल किए, जिसके लिए श्री रंजन देवनाथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के कोयलहा स्थित कंपोजिट स्कूल रसूलाबाद में सुश्री शालिनी कुशवाहा ने कला आधारित गतिविधियों, डिजिटल संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के जरिए पढ़ाई को सहज और आनंदमय बनाया, जिससे विद्यालय को निपुण विद्यालय की पहचान मिली, जिसके लिए सुश्री शालिनी कुशवाहा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के पुलियमपट्टी स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में श्री थंगाराज एम ने बच्चों के लिए शिक्षा को समावेशी, आनंददायक और उनके जीवन से जुड़ा बनाया है। उन्होंने ग्रामीण स्कूलों में टॉयलेट, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरैक्टिव बोर्ड, टॉय लाइब्रेरीज और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में योगदान दिया, जिसके लिए श्री थंगाराज एम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जयपुर चाकसू स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय तुमली का बास में डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने मूंगफली से बीज गणित और पतंगों से ज्यामिति समझाने के साथ प्रश्नों से विज्ञान पहल के जरिए रटने की जगह विद्यार्थियों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित की। डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री आर रोनल्ड मेरो ने नागालैंड के सिक्चू स्थित जीएचएसएस सिक्चू सुक्सा में समुदाय संपर्क, व्यक्तिगत मार्गदर्शन के जरिए बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखा और ड्रॉप आउट कम, आईसीटी आधारित शिक्षण के साथ शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों से उन्होंने सीखने को जीवन से जोड़ा। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए श्री आर रोनल्ड मेरो को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कंजवार स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जन भागीदारी एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय को सामुदायिक विकास का केंद्र बनाया। उनके प्रयासों से नामांकन 69 से बढ़कर 202, उपस्थिति 44% से बढ़कर 96% हुई और ड्रॉप आउट समाप्त हुए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में खिलौनों, कला और वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण गणितीय सामग्री देश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाई, जिसके लिए श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: असम के जनजातीय क्षेत्र में श्री राजेश बर्दोलोई ने प्रथम पीढ़ी के मिशिंग जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित आईसीटी सक्षम एवं बहुभाषी शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों एवं दीक्षा ई कंटेंट के विकास में योगदान दिया। जनजातीय शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सामाजिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री राधा राजेश ने माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में नवाचारों एवं एआई सक्षम शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने फील्ड आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक गतिविधियों और जैव नैतिक चर्चाओं के माध्यम से जीव विज्ञान को अनुभवात्मक एवं जीवन केंद्रित बनाया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा इसरो यूआरएससी नेशनल साइंस डे में 4 बार विजेता रहे। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र विनती करते हैं कि
3: प्लेनरी हॉल में पुरस्कार प्राप्त करने वाले

0: शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु वृत्त चित्र दिखाया गया। इन फिल्मों के माध्यम से हम जान पाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं सीखने की, कहीं खेल गतिविधियों
1: राष्ट्रपति महाराष्ट्र The first awardee in this session is Kavita Narasingh Rao Gitte from Maharashtra. And what a proud moment it is indeed for this
2: teacher. Nitin Kumar Mahendra Kumar Pathak, Gujarat.
1: From Gujarat, Nitin Kumar Mahendra Kumar Pathak, and he is known for his innovations, 7DBR Labs, ICT and Children's Science Congress, and
2: Mohammad
1: also his
2: Mustafa
1: student
2: Kamal
1: participated
2: Haddock.
1: In ISRO competition.
0: Dusre charan mein, ab Maraniya Rashtrapati. बाकी 24 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।
1: मोहम्मद मुस्तफा कमाल ऑफ लद्दाख, हु इज अ सोशल साइंस टीचर एंड ही हैज ट्रेन्ड 1000 टीचर्स, ही इज आल्सो अ मास्टर ट्रेनर। एंड नाउ फ्रॉम केरलम सुनील कुमार केपी, हु इज यूज्ड मलयालम आईसीटी एंड डिजिटल टूल्स। एंड द नेक्स्ट विनर इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, याकुन तामे, who
2: Rajesh
1: has worked
2: Kaluri,
1: for bettering the infrastructure of the school. From Andhra Pradesh, Rajesh Koluri, who has used Raj classrooms and digital ICT tools
2: Gabar
1: for
2: Singh
1: education.
2: Bisht, Uttarakhand.
1: From Uttarakhand, Gabar Singh Bisht, who uses education and also is known for his Doordarshan education
2: Manisha
1: modules.
2: Manisha Khetrapal, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
1: From Kendriya Vidyalaya Sangathan, Manisha Khetrapal, who is also a master trainer of teachers.
2: Palash Chaudhary, West Bengal.
1: From West Bengal, Palash Chaudhary, and he has worked on education and strengthening society, especially for his
2: Pushpa
1: food
2: Prasad,
1: for education.
2: Pushpa Prasad, Bihar.
0: Aur ab Bihar se Pushpa Prasad apna puraskar prapt kar le, Maraniya Rashtrapati ke samaksh pure utsah.
2: पटेल पूर्णिमा मोहन लाल दमन एंड डीयू दादर एंड नगर हवेली
1: दमन डीयू दादरा एंड नगर हवेली पूर्णिमा पटेल रिसीव्स द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
2: डॉक्टर इफ्तिखार खान उत्तर प्रदेश
0: उत्तर प्रदेश से डॉक्टर इफ्तिखार खान अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी
2: रत्न कुमारी एस कर्नाटक
1: फ्रॉम कर्नाटक Ratna Kumari S. and she has used toy-based pedagogy for education
2: Mohammed
1: among
2: Ayaz
1: children.
2: Mohammad Ayaz Raina, Jammu and Kashmir.
0: और अब जम्मू और कश्मीर से मोहम्मद अयाज रैना अपना पुरस्कार प्राप्त करने माननीय राष्ट्रपति के समक्ष
2: अनिल कौशिक हरियाणा
1: अनिल कौशिक ऑफ हरियाणा ही हैज 40 मॉडल्स इन हिज मैथमेटिक्स लैब एंड इज नाउ रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति
2: देवनाथ त्रिपुरा
0: और अब त्रिपुरा से श्री रंजन देवनाथ अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं तालियों के बीच सभी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं
2: शालिनी कुशवाहा उत्तर प्रदेश
0: उत्तर प्रदेश से शालिनी कुशवाहा को ये पुरस्कार दिया गया है उनके शिक्षा के क्षेत्र में अदम्य और अद्भुत कार्य के लिए
2: थंगराज एम तमिलनाडु
1: फ्रॉम तमिलनाडु Thangaraj M. is receiving the award from the Honorable Rashtrapati Ji and he has worked extensively on enjoyable and relatable education
2: Vartika
1: for
2: Gulati,
1: children.
2: Rajasthan.
0: Rajasthan se Vartika Gulati, Maraniya Rashtrapati se, unhone namaskar kiya chukkar, Maraniya Rashtrapati ne abhivadan swikar kiya aur ab Maraniya Rashtrapati se wo puraskar grahan kar rahi hai. शिक्षा के क्षेत्र में
2: आर रोनाल्ड मेरू नागालैंड
1: फ्रॉम नागालैंड आर रोनाल्ड मेरू विल बी रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन इंटरएक्टिव एजुकेशन हियर इज रिसीविंग
2: शैलेंद्र प्रताप सिंह मध्य प्रदेश
1: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम मध्य प्रदेश शैलेंद्र प्रताप सिंह will receive the award and he has worked to say that there is no dropouts from his school
2: Vaibhav Basant Rao Kulkarni Navodaya Vidyalaya Samiti
1: enrollment has been there in his school from Maharashtra Vaibhav Basant Rao Kulkarni who has worked extensively on lively education receives his award from the honorable Rashtrapati
2: Rajesh Badloi Assam
0: Assam se Rajesh Badloi apna puraskar grahan kar rahe hain in sabhi shikshakon ne apne

0: क्षेत्र में
1: राधा राधे इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,
0: सेकेंडरी एजुकेशन कर्नाटका से इस वक्त उसका प्राप्त कर रहे हैं राधा राकेश।
1: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति
2: महोदय, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, दी Minister for Education Shri Prahlad Joshi, the Minister of State for Education Shri Jayant Chaudhary, and the Minister of State for Education Dr. Sukanto Mujumdar, and the Minister Secretary Department of School Education and Literacy Shri T.K. Anil Kumar, the Secretary Department of Higher Education Shrimati Deepthi Gaur Mukherjee, and the Secretary Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Dr. Devashish Mukherjee have now taken their seats on the dais. And the Honorable President will also confer awards to teachers and to the institutes who have worked in higher education. And now, telephone.
3: आर्किटेक्चर शिक्षा को सस्टेनेबल डिजाइन और रियल वर्ल्ड लर्निंग से जोड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़कर वे विद्यार्थियों को आवास, स्कूल अवसंरचना की वास्तविक चुनौतियों को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। वास्तुकला शिक्षण के लिए प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू ने शोध, शिक्षण और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान और शोध को भविष्य की मौसम संबंधी चुनौतियों से जोड़ने और विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: राजस्थान के पिलानी स्थित बिट्स पिलानी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डॉक्टर विनय चमोला ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम और हैंड्स ऑन आईओटी टिंकरिंग लैब्स के जरिए मेट सुपरविजन और एआईओटी ब्लॉक्स जैसे वेंचर्स के जरिए विद्यार्थियों को अपने विचारों को समाधान में बदलने के लिए प्रेरित किया। तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर विनय चमोला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित आईआईटी भुवनेश्वर में डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुरी मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेज की शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए वे विद्यार्थियों की तकनीकी समझ को मजबूत करते हैं। शिक्षा कौशल और सामाजिक जरूरतों से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित आईआईटी गांधीनगर में विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और नए समाधानों की क्षमता विकसित करने वाले शिक्षक हैं डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण। वे इंजीनियरिंग, साइंसेज और फाइनेंस जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अवधारणाओं को जोड़कर विद्यार्थियों को नए और अनजाने सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक सोच और समस्या समाधान का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित IISER भोपाल में प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने प्लांट बायोलॉजी के शिक्षण, शोध और आउटरीच के जरिए विद्यार्थियों को नई सोच और शोध की दिशा दी है। वो एम्पैथेटिक मेंटोरशिप और इंक्लूसिव लर्निंग इकोसिस्टम के जरिए विद्यार्थियों को सशक्त करते हैं। शिक्षण, शोध और समाज के प्रति अपने योगदान के लिए प्रोफेसर सौरभ दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में प्रोफेसर विक्रम विशाल ने भू विज्ञान और जलवायु से जुड़े जटिल विषयों को शोध, प्रयोग और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के जरिए समझने का नया तरीका विकसित किया। भारत की पहली कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी स्थापित की। भू विज्ञान और जलवायु समाधान में शिक्षा, शोध और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया ने शिक्षा, शोध और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु तैयार किया है। उन्होंने फोरेंसिक फार्मेसी, फूड फोरेंसिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा, शोध और इनोवेशन को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के

0: आईआईटी कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ ने रसायन विज्ञान में शोध, शिक्षण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके स्वयं NPTEL पाठ्यक्रम ने उच्च शिक्षा में उनकी विशेषज्ञता को व्यापक बनाया। विद्यार्थियों की प्रतिभा और करियर को संवारने के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनीषा निगम ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई को प्रयोग, समस्या समाधान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अधिक प्रभावी बनाया। शिक्षा, शोध और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने के लिए डॉक्टर मनीषा निगम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज DMIHER में डॉक्टर अमर मोहन राव तकसांडे ने बाल चिकित्सा शिक्षा, शोध और मरीजों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन और पीडियाट्रिक एकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से चिकित्सा प्रशिक्षण को मजबूत किया। डॉक्टर अमर तकसांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स मंगलगिरी में डॉक्टर अरुण बाबू ने पीडियाट्रिक्स के शिक्षण, शोध और चिकित्सा शिक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाया है। 400 से अधिक साइंटिफिक पब्लिकेशंस और अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर अरुण बाबू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के इम्फाल स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक में डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी ने 15 वर्षों से अधिक समय में नृत्य, संगीत और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी के यंग टैलेंट अवार्ड और प्रसार भारती के मणिपुरी डांस में टॉप ग्रेड से सम्मानित डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर आशुतोष मोहन ने 25 वर्षों से अधिक समय में मैनेजमेंट शिक्षा, शोध और अकादमिक नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में विशेषज्ञता के साथ उन्होंने 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। प्रोफेसर आशुतोष मोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के गुवाहाटी स्थित गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रोफेसर अंकुरन दत्ता ने 2 दशकों से अधिक समय में शिक्षा, मीडिया और सामुदायिक संवाद से इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट भारत के पहले कम्युनिटी और वेब रेडियो स्टेशन की स्थापना कर सामुदायिक संचार, स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक जुड़ाव को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर अंकुरन दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शिवानी वी ने संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन को आधुनिक तकनीक और शोध से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संस्कृत को आधुनिक, सुलभ और नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए प्रोफेसर शिवानी वी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विद्यार्थी कल्याण को नई दिशा दी है। डिजिटल पेडागोजी और अवेयर इंक्लूजन अफेक्शन AIA मॉडल के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों में केवल याद करने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स को विकसित किया। शिक्षा, शोध और विद्यार्थी कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित MEI पॉलिटेक्निक में डॉक्टर विश्वनाथ एजेस पिछले 32 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज, डिजिटल लर्निंग और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग को बढ़ावा दिया। तकनीक आधारित और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ एजेस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।

तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित पीएसजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर शशि कलायस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और आउटकम बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ा रही हैं। 110 से अधिक इंडस्ट्री अलाइंड एक्सपेरिमेंट्स और 11 इंडस्ट्री एमओयूज के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल लर्निंग के अवसर दिए। विद्यार्थियों के कौशल और अवसरों को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शशि कलायस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से

0: सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस की शिक्षा को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मजबूत किया है। उनकी टीचिंग लर्निंग अप्रोच से 5000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षण, शोध और संस्थागत विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: केरल के आईटीआई अरीकोड में श्री हरीश ए ने इलेक्ट्रिकल स्किल्स ट्रेनिंग को नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। उनकी सबसे खास पहल कैंडेला एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसे उन्होंने आईटीआई विद्यार्थियों के साथ स्थापित कर स्किल लर्निंग को वास्तविक उत्पादन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री हरीश ए को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री जगमोहन ने कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्ता, उद्योग की जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। कोविड-19 के दौरान मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने ट्रेनीज को ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन का प्रशिक्षण देकर कौशल को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा से भी जोड़ा। श्री जगमोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: महाराष्ट्र के धाराशिव स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में
5: श्री किरण प्रकाश झरकर ने
4: कौशल प्रशिक्षण को पुस्तकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यावहारिक संसाधनों के एक जुड़े हुए लर्निंग इकोसिस्टम में बदला है। उनकी पेटेंट प्राप्त स्किल बुक कनेक्टिंग ट्रेनीज टू स्किल्स और स्किल बुक मोबाइल एप्लीकेशन ने प्रैक्टिकल लर्निंग और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रिसोर्सेज से जोड़ा, जिसके लिए श्री किरण प्रकाश झरकर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
6: पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में वेल्डर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री संदीप बनर्जी ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक सीखने से जोड़ा है। 300 से अधिक ट्रेनीज को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के साथ उन्होंने नए वेल्डर इंस्ट्रक्टर्स के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी योगदान दिया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री संदीप बनर्जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
7: गुजरात के बिलीमोरा स्थित इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटोमोबाइल ग्रुप के सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर श्री राजेश कुमार एम पटेल ने वाहन तकनीक के प्रशिक्षण को नवाचार और रोजगार से जोड़ा है। ट्राइसिकल ईवी विद स्टीयरिंग जनरेशन ने क्षेत्रीय स्किल कंपटीशन में तीसरा स्थान हासिल किया। ऑटोमोबाइल स्किल्स और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री राजेश कुमार एम पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
8: राजस्थान के चौमू में स्थित गवर्नमेंट आईटीआई में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री हीरालाल शर्मा ने उनके विकसित किए गए स्प्लिट एसी और डीप फ्रीजर फॉल्ट सिमुलेटर्स के जरिए विद्यार्थी तकनीकी खराबियों की पहचान और ट्रबल शूटिंग का व्यावहारिक अभ्यास करते हैं, जिसके लिए श्री हीरालाल शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
9: महाराष्ट्र के नासिक स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिंबकेश्वर आदिवासी में फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्रीमती अर्चना राकेश जाधव ने आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को फैशन और अपैरल स्किल्स के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रीमती अर्चना राकेश जाधव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई में COPA HIVI की ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती रीना गुप्ता ने प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से वे विद्यार्थियों को कंप्यूटर ऑपरेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे कौशलों में प्रशिक्षित करती हैं। दिव्यांग युवाओं को डिजिटल कौशल और आत्मनिर्भरता से सशक्त बनाने के लिए श्रीमती रीना गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में श्री सौमेन पंडित ने नई तकनीकों के कौशल प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने 160 से अधिक लर्नर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया। नई तकनीकों और भविष्य के रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए श्री सौमेन पंडित को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2000

0: 26 से सम्मानित किया जाता है। असम के नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर असम स्किल डेवलपमेंट मिशन में श्रीमती तुलिका कलिता ने अपने 20 वर्षों के अनुभव से युवाओं को वैश्विक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया है। उन्होंने 1400 से अधिक लर्नर्स को वर्क प्लेस रेडिनेस, कम्युनिकेशन एटिकेट और प्रोफेशनल सर्विस स्किल्स से प्रशिक्षित किया, जिसके लिए श्रीमती तुलिका कलिता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के लुधियाना स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मशीनिस्ट ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री संजय कुमार ने प्रिसिशन मशीनिंग और एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स के माध्यम से युवाओं को उच्च स्तरीय करियर के लिए तैयार किया है। उनके विद्यार्थी DRDO, इसरो, BARC और इंडियन रेलवेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचे हैं। श्री संजय कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती ज्योति बाला राठौर ने उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं और स्किल कॉम्पिटिशन्स में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कौशल और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीमती ज्योति बाला राठौर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में इंजीनियर ट्रेनिंग श्री प्रणब कुमार चौधरी ने कौशल विकास को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, गुणवत्ता और इंडस्ट्री रेडी लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप व्यापक स्तर तक पहुंचाया। कौशल, गुणवत्ता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए श्री प्रणब कुमार चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और शिक्षा माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों या संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। माननीय राष्ट्रपति अब अपने स्थान से खड़े होकर पुरस्कार देने के लिए आगे आते हुए आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें जन भागीदारी के तहत इसमें
3: प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल आईआईटी रुड़की की
2: प्रोफेसर अग्रवाल अपना पुरस्कार ग्रहण करने माननीय राष्ट्रपति के सामने आ रही हैं। इन्होंने सतत वस्तुकला और निर्मित पर्यावरण के क्षेत्र में
4: फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू and he works on chemical engineering and has trained many students.
3: Dr. Vinay Chamola
2: aur Professor Vinay Chamola jinhone electrical aur electronics engineering ke kshetra mein kaam kiya hai BSc Pilani se
3: Dr. Srikant Golapudi IIT Bhubaneswar
4: from IIT Bhubaneswar Dr. Srikant Golapudi who works in metallurgical engineering
3: Dr. Mithun Radhakrishna
2: जो कि केमिकल इंजीनियर है, इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जा रहा है IIT
3: प्रोफेसर सौरभ दत्ता IISER भोपाल
4: फ्रॉम IISER भोपाल प्रोफेसर सौरभ दत्ता रिसीव्स द अवार्ड फ्रॉम ऑनरेबल राष्ट्रपति
3: प्रोफेसर विक्रम विशाल IIT बॉम्बे
2: पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को पुरस्कार दिया जा रहा है, बॉम्बे महाराष्ट्र से है।
3: डॉक्टर जयराज सिंह सरवैया NFSU गांधीनगर
4: For his work in forensic sciences, Dr. Jairaj Sarvaiya of the National Forensic Science Laboratory,
3: Professor
4: University, Gujarat.
3: Professor Shankar Prasad Rath, IIT, Kanpur.
2: Rasayanik Vigyan Kshetr ke liye Professor Shankar Prasad Rath ko puraskar diya ja raha hai, jo IIT Kanpur, Uttar Pradesh se hai.
3: Dr. Manisha Nigam, Himvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Uttarakhand.
4: Himvati Nandan Bahuguna University, Uttarakhand receives her award in the field of biochemistry from the
3: Dr. Amar Mohan Rao,
2: Agla Purushkar, Dr. Amar Mohan Rao को दिया जा रहा है, मेडिसिन के क्षेत्र में बाल रोग के लिए उन्होंने कार्य किया है, वर्धा महाराष्ट्र से।
3: डॉक्टर अरुण बाबू एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश
4: फ्रॉम आंध्र प्रदेश इज मंगलागिरी एम्स डॉक्टर अरुण बाबू ही हैज वर्कड स्पेशली ऑन पेडियाट्रिक ट्रीटमेंट एंड इनोवेशन एंड हैज
3: मणिपुर यूनिवर्सिटी
4: 400 साइंटिफिक पब्लिकेशंस डॉक्टर पी लीलावती देवी रिसीव्स हर अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल

0: तालियों के साथ माननीय राष्ट्रपति
1: एंड स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल एड्रेस द गैदरिंग.
2: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी एवं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, मंचासीन सभी सचिवगण, सभी शिक्षकगण, देवियों और स्वजन सभी को नमस्कार. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ. देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं. जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है. शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है. मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है. उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ. साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था. मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है. उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ. मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ. इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है. देवियों और स्वजन, सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है. बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यार्थियों की स्थापना की थी, विद्यालय की स्थापना की थी. आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ. 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी. उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उद्दत्त विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है. देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ. इस सभागार में लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक तथा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे देश में शिक्षण के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित करने वाले शिक्षक उपस्थित हैं. यह प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है. मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियां और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी. पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं. आज पुरस्कृत सभी शिक्षकों के समान रूप से प्रभावशाली और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं. लेकिन समय के सीमा के कारण मैं केवल

एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगी। हम सबने देखा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक गांव के स्कूलों में अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे अत्यंत आधुनिक माध्यमों की सहायता से जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सोच के बल पर छोटे से छोटे स्थान पर प्रबुद्ध शिक्षक और जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च स्तरीय पाठन पठन का आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि ये सभागार में उपस्थित शिक्षकों ने ऐसे प्रेरक प्रयासों से शिक्षण कार्यों को नए आयाम दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक्स में अध्यापन करने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चुने गए सुयोग्य प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत आचार्यगण उपस्थित है। उनके लिए तथा पूरे देश के आचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में भारत का गौरवशाली इतिहास लक्ष्य भी प्रस्तुत करना है और कसौटी भी। हुएंगसान ने लिखा है कि नालंदा विक्रमशिला में पढ़ाने वाले आचार्यों का यश दूर दूर के देशों तक फैल चुका था। उनका चरित्र पूर्णतः निर्मल और अनिंदनीय था। आचार्यगण जानते थे कि समुद्रों और पर्वतों के को पार करके अनेक कष्ट सहन करके विदेशों के छात्र अनेक उनके पास आते थे और ज्ञान पिपासा लेकर वो अपने आप को संतुष्ट लाभ करते थे। भारत के विश्वविख्यात आचार्यों की परंपरा को नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य सी वी रमन जैसे शिक्षकों ने आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। वे अपने विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिलकर मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जो विद्यार्थी उनसे कोई अच्छा प्रश्न करते थे तो वे पुस्तकों से हटकर अपने विलक्षण अध्यापन से ऐसे जिज्ञासा जागृत करते थे कि उनके विद्यार्थी उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व के महान वैज्ञानिकों के मूल ग्रंथों में अवगहन करने जानते थे। देवी और स्वजन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोड़ से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं। अनेक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिसरों से आते हैं। कुछ अनेक परिवार में पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है तथा कुछ विद्यार्थियों को चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना

0: शिक्षकों का विशेष दायित्व तो होना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अपने संबोधन में शिक्षा और शिक्षक की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया माननीय राष्ट्रपति।
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।
1: और अब राष्ट्रगान के लिए
3: निवेदन है, राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: the Honorable President of India doing namaskar to all the awardees and other dignitaries who are present at the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And the Honorable President of India is now departing from the plenary hall of Vigyan Bhavan, and the Minister for Education, the Ministers of State for Education, and the Departmental Secretaries of the Department of School Education and Literacy, the Department of Higher Education, and the Department of Skill and Entrepreneurship, now escorting the Honorable Rashtrapati ji towards from the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And as the Honorable Rashtrapati ji in her address said, that the society which respects teachers is indeed a progressive one, and she congratulated all the winners of the awards. She said that teachers from Ladakh to the Andaman and Nicobar Islands and from Arunachal Pradesh to Gujarat are all playing a pivotal role in furthering education and nurturing our students. She hailed the efforts of the Department of School Education, Higher Education and Skills and Entrepreneurship. She expressed the confidence that India will emerge as a knowledge economy and also the skill capital of the world. She mentioned about the reputation of the teachers of India's ancient Nalanda University, which spread far and wide and attracted students from all over the world. And she said that in the last 12 years, the primary school dropout rate has come down to almost nil.
1: आज के इस समारोह में हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, राष्ट्र निर्माण केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण कक्षा में होता है। श्रोताओं, अब समारोह अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। आज का ये आयोजन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि शिक्षक केवल भविष्य देश के नागरिक नहीं बनाते, वे भविष्य भारत का निर्माण भी करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा है। उनके विद्यालयों को बधाई, उनके विद्यार्थियों को बधाई, उनके परिवारों को बधाई, और भारत के प्रत्येक शिक्षक को हमारा सादर नमन। इसी भावना के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का ये विशेष प्रसारण संपन्न होता है। इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अशोक कुमार मिश्रा और बाबूलाल मीणा ने। हमारे ओबी इंचार्ज थे वीके तोमर और प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार। मैं शोएसआर खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। नमस्कार।
2: अभी आपने दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे शोएसआर खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में।

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. President Draupadi Murmu today said that a Viksit Bharat will only be possible with quality education. Addressing the National Teachers Award 2026 in New Delhi, the president said that a society that respects their teachers is a progressive society in right terms.
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
0: President Draupadi Murmu today presented the National Teachers Awards in New Delhi. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The president also presented national awards to teachers for 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with National Teachers Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
2: मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
0: Highlighting key health and social issues, Mr. Modi expressed concern over excessive screen time among children and suggested encouraging sports, outdoor activities and creative pursuits as effective ways to reduce screen addiction.
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम। अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी के

0: अब हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished center of learning in commerce, economics and management. The External Affairs Ministry has said three more Indian nationals, including a five-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing broader updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randeep Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. He noted that 1,907 Indians have safely crossed over to Nepal from China. Mr. Jaiswal said that the Indian Embassy in Kathmandu is facilitating the return of Indian evacuees on flights back home. Meanwhile, the death toll from the floods in the Himalayan nation rose to 1,344 after rescue workers recovered more bodies from affected areas. The rising water levels of major rivers in Bihar, including Ganga, Gandak and Kosi, continue unabated. Flooding has affected 16 districts, while the situation remains serious in 14 districts, including Patna. According to the Water Resources Department, the Ganga River in Patna is flowing nearly 2 meters above the danger mark. In women's cricket, India will take on arch-rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at Dubai International Stadium at 8 p.m. Indian Standard Time tonight. In badminton, Indian men's doubles pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Malaysian duo of Noor Mohammad Azreen Ayub and Tan Wee Kyong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी सुनिधि। और आज का हमारा सफ़र है हिंदी सिनेमा के उस दौर की ओर, जब फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं होती थी बल्कि अपने साथ भावनाओं, रिश्तों, इंसानियत और संगीत की एक पूरी दुनिया लेकर आती थी। स्वागत है आपका कार्यक्रम एक ही फिल्म से। मैं तो आज हम बात करेंगे वर्ष 1980 की एक ऐसी फिल्म की जिसमें एक तरफ थे हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर और दूसरी तरफ संजय खान, जीना तमान, संजीव कुमार, परवीन बॉबी और डैनी डेंजोगप्पा जैसे सितारे। तो फिल्म का नाम है अब्दुल्ला। एक ऐसी कहानी जिसमें रेगिस्तान की गर्म रेत, रिश्तों की गर्माहट, संघर्ष है, इंसानियत है और सबसे बढ़कर है एक आम इंसान का अपने आसपास की दुनिया के लिए खड़े होने का जज्बा। और जब ऐसी कहानी को संगीत मिले राहुल देव वर्मन यानी पंचम दा का और शब्द मिले आनंद बख्शी के, तो फिर संगीत की महफिल अपने आप खास हो जाती है। तो आइए आज सुनते हैं फिल्म अब्दुल्ला की कहानी, उसके सितारों की बातें और उसके सदाबहार गीत। फिल्म के संगीत की शुरुआत ही हमें एक अलग भावलोक में ले जाती है। तो दोस्तों, ये गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मैंने पूछा चांद से। इस गीत की खासियत है इसकी सरलता, चांद से सवाल करने का अंदाज़ और जवाब की तलाश। इसे रफ़ी साहब ने जिस खूबसूरती से आवाज़ दी है वह आज भी सुनने वाले को रोक नहीं पाती। संगीत दिया है आर.डी. बर्मन ने, गीत है आनंद बख्शी का और आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। तो लीजिए सुनते हैं फिल्म अब्दुल्ला का बेहद लोकप्रिय गीत, मैंने पूछा चांद से।

क्या बात है, रवि साहब की आवाज़ में एक ऐसी मासूमियत थी कि साधारण से शब्द भी दिल की बात बन जाते थे। और इस गीत से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि बताया जाता है कि ये गीत मूल रूप से SD बर्मन ने रफ़ी साहब के साथ काफ़ी पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन उस समय इसका इस्तेमाल नहीं हो सका। बाद में संजय खान ने इसे RD बर्मन के यहाँ सुना और

0: फिल्म में इस्तेमाल करने की इच्छा जताई। पंचमदा ने इसमें बदलाव किए और फिर ये गीत अब्दुल्ला का हिस्सा बन गया। यानी इस गीत की कहानी भी अपने आप में एक फिल्म की कहानी है। श्रोताओं, अब्दुल्ला का निर्देशन किया था संजय खान ने। संजय खान सिर्फ इस फिल्म के निर्देशक ही नहीं थे, बल्कि फिल्म में मुख्य भूमिका में भी नजर आए। उनके साथ थी खूबसूरत और प्रतिभाशाली जीनत अमान, और फिर फिल्म में मौजूद थे राज कपूर। राज कपूर का नाम आते ही हिंदी सिनेमा का एक पूरा युग आंखों के सामने आ जाता है। आवारा, श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है, इन फिल्मों के जरिए राज कपूर ने भारतीय सिनेमा में अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अब्दुल्ला में भी राज कपूर का व्यक्तित्व फिल्म की महत्वपूर्ण ताकतों में से एक था। फिल्म की स्टारकास्ट काफ़ी बड़ी थी। संजीव कुमार, परवीन बॉबी, डैनी डेंजोअप्पा, महमूद, कादर खान, नासिर हुसैन, हेलेन, ओम प्रकाश और कई अन्य कलाकार इसमें दिखाई दिए। यानी उस दौर के कई बड़े नाम एक ही फिल्म में थे। आपसे बात करते रहेंगे फिलहाल इस अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म अब्दुल्ला की, तो अब बारी है उस गीत की जिसमें उत्सव का माहौल है, महफिल है और है जिंदा दिली। आशा भोसले की आवाज़ में जश्न बहारा महफिल यारा। आशा जी की आवाज़ में चंचलता और नज़ाकत का जो मेल मिलता है वो इस गीत को खास बनाता है। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार RD बर्मन ने मिलकर इस गीत को फिल्म के रंगीन हिस्सों में एक अलग चमक दी है, और इस गीत में हेलेन की मौजूदगी भी इसे और यादगार बनाती है। तो आइए महफिल सजाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: की रात सबको याद रहे।
1: दोस्तों, अब्दुल्ला के संगीत की चर्चा हो और आरडी बर्मन का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। पंचमदा की सबसे बड़ी खूबियों में से एक थी कि वे कहानी और परिस्थिति के हिसाब से संगीत को अलग अलग रंग दे सकते थे। एक तरफ रफ़ी साहब की रोमांटिक आवाज़, दूसरी तरफ किशोर कुमार की दर्द भरी पुकार और तीसरी तरफ आशा भोंसले की चंचलता और फिर मन्ना डे तथा लता मंगेशकर जैसी आवाज़ें। फिल्म के गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे और यही वजह है कि अब्दुल्ला का संगीत एक ही रंग का नहीं है। इसमें प्रेम है, दर्द है, दुआ है, उत्सव है और भक्ति भी है। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें दर्द भी है और एक गहरी आध्यात्मिक भावना भी। किशोर कुमार की आवाज़ में ए खुदा हर फैसला तेरा।

दोस्तों, किशोरदा की आवाज़ में वो ठहराव, दर्द सचमुच दिल को छू जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म अब्दुल्ला की। तो फिल्म की शूटिंग मुंबई के नटराज स्टूडियो, आरके स्टूडियो, मोहन स्टूडियो और एसएल स्टूडियो में हुई थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि संजय खान ने इस फिल्म के लिए दाढ़ी बढ़ाई थी और बताया जाता है कि उन्होंने इस लुक को लगभग 10 साल तक बरकरार रखा। फिल्म 26 सितंबर 1980 को रिलीज हुई थी और सबसे दिलचस्प बातों में से एक ये है कि फिल्म की विदेशों में भी लोकप्रियता हुई। राज कपूर की सोवियत संघ में ज़बरदस्त लोकप्रियता थी और अब्दुल्ला को भी वहाँ शानदार दर्शक मिले। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1983 में सोवियत संघ में इसे लगभग 3.19 करोड़ दर्शकों ने देखा। यानी हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर भी राज कपूर का जादू कायम था। चलिए अब सुनते हैं फिल्म का एक ऐसा गीत जो अपने नाम से ही भावनाओं की एक पूरी दुनिया सामने रखता है। मन्ना डे की आवाज़ में लल्ला अल्लाह तेरा निगेबान। मन्ना डे की आवाज़ में प्रार्थना और दर्द का जो सम्मिश्रण है वो इस गीत को खास बना देता है और फिल्म में राज कपूर की उपस्थिति इस गीत को और भी भावनात्मक बना देती है। तो चलिए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज़ में ये गीत।

दोस्तों, एक बार फिर महसूस हुआ कि मन्ना डे साहब को सिर्फ एक गायक कहना उनके साथ न्याय नहीं होगा। वो अपनी आवाज़ से पूरा दृश्य रच देते थे। तो दोस्तों, अब माहौल थोड़ा बदलते हैं। रोमांस, आकर्षण और चंचलता से भरा गीत सुनते हैं। भीगा बदन जलने लगा, आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत में पंचम दा का संगीत और आशा जी की आवाज़ मिलकर एक बिल्कुल अलग मूड तैयार करते हैं। गीतकार आनंद बख्शी के शब्दों में प्रेम की बेचैनी और मौसम का असर दोनों महसूस होता है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

वासी में। तो अब समय है आपसे विदा लेने का। मैं सुनिधि गुप्ता आपसे विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल और ये कार्यक्रम।

0: Ahora voy a estar haciendo disculpa para la de la próxima vez. Como vemos en el tour de la concha, Shanghai, observa la fecha de la carta de la salud de la carrera de la época de la época de la dona Rusia Pinta.
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे भी कृपया ये पुरस्कार अपने कार्यक्रम में द्वारा प्रदान करने की कृपा करें। दिनेश कुमार पंजाब।
0: राष्ट्रपति डॉक्टर अरविंद विद्यापति देश के मंत्री देश पर विद्यापति को नमन करते हैं। राष्ट्रपति ने चाहे तो शिक्षा संसद कामरूप द्वारा प्रदान करने तक समझ रही सभा का बड़ी जिम्मेवारी जो व्यक्ति के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति डॉक्टर

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विकसित भारत सिर्फ मेयारी तालीम से ही मुमकिन हो सकता है। सदर जमहूरिया ने 48 स्कूली असातिज़ा को कौमी अवार्ड्स अता किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असातिज़ा पर जोर दिया है कि वो तलबा की जिंदगी को संवारने के लिए सिर्फ निसाबी किताबों तक महदूद न रहें। वज़ीर आज़म ने बच्चों में ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल के इस्तेमाल को कम करने के लिए खेलों और मैदानी सरगर्मियों को फ़रोग देने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म आज शाम नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सद साला तकरीबात से खिताब करेंगे। बिहार के 14 ज़िलों में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है, राहत और बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारत ने सैलाब से मुतासर नेपाल को 95 टन इमदादी सामान भेजा है, मजीद इमदादी सामान और बेले ब्रिज भेजे जाएंगे। बैडमिंटन में शेंजेन में चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में आज शाम सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की जोड़ी का सामना मलेशिया की जोड़ी से होगा। और खवातीन क्रिकेट में आज रात दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विकसित भारत मेयारी तालीम के जरिए ही मुमकिन हो सकेगा। आज नई दिल्ली में असातिज़ा के कौमी इनामात 2026 की तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि अपने असातिज़ा का एहतराम करने वाला माशरा ही सही मानों में तरक्की पसंद माशरा होता है।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
0: सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि तालीमी महारत, हुनरमंदी का फरोग और एंटरप्रेन्योरशिप मुल्क की तरक्की में अहम रोल निभाते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत को दुनिया में हुनरमंदी की राजधानी के तौर पर कायम करना और साथ ही इल्म का मरकज बनाना मुल्क की तरजीह है। इल्म को ताकत का सरचश्मा करार देते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि तालीम अफराद को आज़ादाना तौर पर सोचने की ताकत देती है, आगाही पर मबनी फैसले लेने के काबिल बनाती है और मुल्क की तरक्की में गिराकदर ताउन करती है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि फर्ज शिनास असातिज़ा मुल्क की तामीर के सफ़े अव्वल के मेमार हैं।
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
0: सदर जमहूरिया ने खवातीन के हकूक और तालीम को फरोग देने में सावित्रीबाई फुले के अहम रोल को

0: तक शिक्षण पहुंचाता।
1: बिहार में गंगा, गंडक और कोसी समेत बड़े दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और रियासत में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। वजारत खारजा ने कहा कि एक पाँच साल के बच्चे समेत मजीद 3 भारतीय शहरियों को नेपाल के सैलाब से मुतासरा त्रिशूली बाजार इलाके से बहिफाजत निकाल लिया गया है। इसके साथ ही वहां से निकाले गए भारतीय शहरियों की मजमू तादाद 169 हो गई है। तर्जुमान ने बताया कि पिछले महीने की 26 तारीख को आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद भारत ने नेपाल को तकरीबन 95 टन इमदादी सामान भेजा है। बैडमिंटन में आज शेंजन में चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। खवातीन क्रिकेट के T20 एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में आज रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विकसित भारत सिर्फ म्यारी तालीम से ही मुमकिन हो सकता है। सदर जमहूरिया ने 48 स्कूली असातिज़ा को कौमी अवार्ड्स अता किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असातिज़ा पर जोर दिया है कि वो तलबा की जिंदगी को संवारने के लिए सिर्फ निसाबी किताबों तक महदूद न रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों में जरूरत से ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल को कम करने के लिए खेलों और बैरूनी सरगर्मियों को फरोग देने पर जोर दिया। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 7 साल तकरीबात से खिताब करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu says Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports and outdoor activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts. Relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in China Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today said that a Viksit Bharat will only be possible with quality education, addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers' Day. The President said that a society that respects teachers is a progressive society in right terms.
3: आम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
2: President Murmu added that academic excellence, skill development and entrepreneurship plays a crucial role in the development of the nation. The President noted that establishing India as the skill capital of the world alongside becoming a knowledge power is the priority of the country. Highlighting the importance of knowledge as the greatest source of power, she said that education empowers individuals to think independently, make informed decisions and contribute meaningfully to the progress of the nation. The President said that dedicated teachers are the frontline nation builders.
3: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
2: The President also recalled Savitribai Phule's pivotal role in advancing women's rights and education. President Murmu today conferred the National Teachers Awards. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories,

0: commitment to a cleaner and healthier India. He urged citizens to come forward, participate wholeheartedly in the campaign and make Swachhata Hi Seva a true Jan Andolan. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from 17th of this month to the 2nd of October. The India Meteorological Department has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh for today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says, Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts. Relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in Chinese Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch-rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
2: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है और समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट

0: में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
1: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
1: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
2: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख

0: तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
2: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर तीन बंदर हो गए हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
3: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बिलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के कलाकार से अच्छा कौन है। जी हाँ, ये तो आपको पता चल ही जाएगा थोड़ी ही देर में कि आज के हमारे कलाकार कौन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

1965 में आई फिल्म जानवर से आप ये गीत सुन रहे हैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, और शम्मी कपूर स्टारर इस म्यूजिकल हिट फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, और इस फिल्म के निर्देशक थे आज के हमारे कलाकार भप्पी सोनी।

जो फिल्में निर्देशित की गईं या निर्मित की गईं, उन फिल्मों के गाने आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना जैसे दिग्गज सितारों के साथ बनाई गई उनकी फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी आवाज़ दी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा नगमा सुनवाते हैं आपको कि मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में ए कविता।

दोस्तों, बप्पी सोनी हिंदी सिनेमा के एक बेहद लोकप्रिय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने गाने तो स्वयं कंपोज नहीं किए, लेकिन उनके द्वारा

1969 में आई फिल्म प्यार ही प्यार, और इस फिल्म में कलाकार थे धर्मेंद्र और वैजयंती माला, और इस फिल्म के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे, जो अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और फिल्म प्यार ही प्यार के निर्देशक थे हमारे आज के कलाकार भप्पी सोनी।

आरपी सोनी का जन्म 31 जुलाई 1928 को हुआ था और वो एक जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक थी और उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया, जैसे कि 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी, 1965 में आई जानवर, एक फूल चार कांटे 1960 में आई थी और प्यार ही प्यार 1969 में इसी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं।

दोस्तों, ब्रह्मचारी ये एक फिल्म 1968 में आई थी। शम्मी कपूर और मुमताज अभिनीत यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्मों में से एक है और इस फिल्म के गाने आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनवाते हैं ब्रह्मचारी फिल्म से ही ये गीत, और इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का संदेश आया है और इन्होंने लिखा है कि आदरणीय अरुणेश जी नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और हम आपके इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं जिसमें आप निर्माता निर्देशक भप्पी सोनी के बारे में बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं और उनकी फिल्मों के गाने सुनवा रहे हैं और ये हमें बेहद पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।

एक और संदेश आया है हमारी ये नियमित श्रोता हैं बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी वीना और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, किशोरीधान खुराना, डब्बू सम्राट, और इन्होंने लिखा है कि हम आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपके जो गाने आप प्रस्तुत कर रहे हैं ये बेहद पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का संदेश आया है। सोनीपत शांतिनगर के रहने वाले हैं ये, सोनीपत ज़िले से, और इन्होंने लिखा है कि हम आपके कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और जो गाने आप 60s और 70s एरा के सुना रहे हैं वो हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार। आज मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी। और आज के हमारे कलाकार हैं जो कि जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक रहे हैं अपने समय के, और उनका नाम है भप्पी सोनी। और अगर उनकी पहली फिल्म के बारे में बात करें तो 1960 में आई एक फूल चार कांटे, इसी फिल्म के जरिए उन्होंने बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की। और इसके बाद तुम हसीन मैं जवान 1970 में आई थी, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी के साथ उन्होंने एक बेहद ही मनोरंजक और रोमांटिक फिल्म बनाई थी। वहीं 1973 में धर्मेंद्र और मुमताज अभिनीत एक और भावुक कर देने वाली फिल्म आई थी झील के उस पार। निर्देशन के अलावा उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत कई फिल्मों का निर्माण भी किया, जिसमें कि बड़े दिलवाला और निश्चय जैसी फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और गाना आपको मैं सुनवाता हूँ लता जी की आवाज़ में।

किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे हैं 1983 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म बड़े दिलवाला, और इस फिल्म के निर्देशक थे हमारे आज के कलाकार भप्पी सोनी साहब।

और इसी बीच एक और संदेश ले लेते हैं जो कि जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से आया है। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि और दीपाली का। इन्होंने लिखा है कि एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे हैं और जो गाने और जानकारी आप दे रहे हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम को सुनते रहिए।

1983 में आई फिल्म बड़े वाला बड़े दिल वाला से आप ये गाना सुन रहे थे। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर, टीना मुनीम, प्राण और सारिका। संगीतकार थे आर डी बर्मन, जिन्हें हम प्यार से पंचम दा के नाम से भी जानते हैं, और गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और निर्देशक भप्पी सोनी, जो कि हमारे आज के कलाकार हैं। और इसी बीच कुछ और संदेश ले लेते हैं। ये मेरठ कैंट से कविता गौड़ और दिग्दर्शन जी का मैसेज आया है, और उन्होंने लिखा है कि भप्पी सोनी जी पर केंद्रित ये कार्यक्रम सुनकर बेहद अच्छा लग रहा है। बेहतरीन जानकारी, दिलचस्प किस्से और दिल को छू जाने वाले गाने बेहद ही सुकून दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम सुनते रहिए। इससे आपको जानकारी भी मिलेगी, समाचार भी सुनने को मिलेंगे, और साथ ही में आपका मनोरंजन भी होगा और आपके दिल को सुकून भी मिलेगा। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी के साथ, और हमारे आज के कलाकार हैं भप्पी सोनी, जिनकी फिल्मों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और साथ ही में आपको उनकी फिल्मों के गाने भी सुनवा रहे हैं। तो दोस्तों, एक फिल्म आई थी 1965 में जानवर, जो कि शम्मी कपूर और राजश्री के साथ बनाई गई एक बेहतरीन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी। और इस फिल्म के अलावा भी

बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने एक निर्देशक के तौर पर काम किया है, जैसे कि झील के उस पार। और उनकी फिल्म, उनकी अगर करियर पर नज़र डालें तो सबसे सुपर डुपर हिट उनकी जो फिल्मों में से कई फिल्में हैं, जैसे कि ब्रह्मचारी, जानवर, एक फूल चार कांटे, प्यार ही प्यार, तुम हसीन मैं जवान और झील के उस पार। तो आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा।

गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी का मैसेज आया है और इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम बहुत बढ़िया लग रहा है और जो गीत सुना रहे हैं वो भी पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

फिल्म ब्रह्मचारी से आप ये गाना सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे आज के कलाकार पप्पी सोनी जी।

नमस्कार जी, एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे हैं, बेहद पसंद आ रहा है, आप हमारी बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए। ये लिखा है पीटीआई संसद मार्ग नई दिल्ली से अनिल मोहन जी ने, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।

हमारे आज के कलाकार हैं भप्पी सोनी जी, और आज हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका निधन 5 सितंबर 2001 को हो गया था।

दोस्तों, जाना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि समय के साथ ही सबको चलना होता है। और अब इसी गीत के साथ अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत। फिर किसी न किसी मोड़ पर होगी आपसे मुलाकात। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो आज विश्व विख्यात जन्माष्टमी महोत्सव नंदगांव में मनायो जा रहे हो है। बाकी हमारे सब श्रोता भैया बहनान को बहुत बहुत बधाई और आपके काजे भी शुभकामना।
1: चंपा जी आपको बहुत बहुत झूरी भर भर के बधाई, श्रोतान के ताई बहुत बहुत बधाई, और नंद घर जो आनंद है रहे हो है वो भारत के हरेक घर में आनंद है रहे हो है, हमारे हरेक श्रोता के घर में आनंद है रहे हो है।
0: और नृत्य गोपाल जी देखो कितनी अचरज की बात है कि हमारे श्रोता भैया बहन आप सुन रहे होंगे कि सब जगह जन्माष्टमी कल रह गई है और ये कौन सी जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं कि देखो नंदगांव में ना आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और जो हमारे ब्रज के लोक जीवन का पौराणिक उल्लेख है, द्वापर कालीन जो हमारी परंपराएं याकू कह में खुर गिनती परंपरा।
1: जी हाँ चंपा जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है, और अपने श्रोतान के ताई बता दें कि ये जो खुर गिनती शब्द जो आयो और खुर गिनती ते जो मनावे की परंपरा है ये लोक की परंपरा है। जब पूर्णमासी के बाद में यानी रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी की तिथि में कोई परिवर्तन है जाए, कहूँ वृद्धि है जाए या कोई घट जाए, जो
0: हाँ
1: कि पंचांग की दृष्टि से
0: दिन गिनती जाती
1: हाँ,
0: की
1: तो अगर कोई तिथि को घटाव बढ़ाव है जाए तो नंदगांव में बहुत सीधो सो हिसाब है। ये ब्रज लोक की अपनी परंपरा है कि जा दिन ते परवाते गिनेंगे और जा दिन 8 दिन होंगे,
0: जी
1: वह 8वें दिन ही अष्टमी मनाई जाएगी। और या प्रकार सो आज नंदगांव में या खुर गिनती परंपरा के अनुसार आज जन्माष्टमी नंदगांव में मनाई जा रही है।
0: और नृत्य गोपाल जी बड़ी विलक्षण परंपरा है, चाहे नंदगांव में कन्हैया को जन्म हो रो है या बरसाने में राधा रानी को। पर कुछ पदन को गायन ऐसा है कि वे कन्हैया के जन्मोत्सव पे भी उनको सस्वर वाचन होएगो, बरसाने में जब राधा रानी को जन्मोत्सव है यानी कि राधाष्टमी जो आई वे बारी है, तो कुछ पद ऐसे हैं धरती पे माई द्वे बड़े या तरीका के जन्म चाहे राधा को है चाहे कृष्ण को है, लेकिन वे पद यानी कि जो उनकी संयुक्त समाज बैठेगी उनको वाचन जरूर होएगो। और वही परंपरा को निर्वाह करते हुए ना आज बामे नंदगाम और बरसाने दो जगह इनके जो सेवायत हैं गोस्वामी जन हैं वो गायन वादन उन पदन को ना जो जन्मोत्सव के पद हैं उनको कर रहे हैं।
1: तो चंपा जी आपको बता में कि हमारे वाणी कारण ने राग भोग और श्रृंगार
0: जी
1: यानी जो हम देख रहे हैं वाही को राग बद्ध कर रहे हैं, और जो राग बद्ध है रहे हो है वाही के अनुसार श्रृंगार है रहे हो और वाही के अनुसार भोग रखे जाएंगे,
0: हाँ नृत्य गोपाल जी
1: और
0: जो
1: याही को हम समाज गायन के रूप में हो देखे हैं।
0: और नृत्य गोपाल जी जो आज जन्मोत्सव को पद है ना बाको कितना बढ़िया जो वाचन है वो हो रहे हो है। देखो ना वृंद वृंद जुबती चली यों कह देत असीस, मोहन जो अरु लाडली जीवो माई कोट वरीस।
1: बड़ी

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये कृष्ण जन्मोत्सव को मंगल गीत सुन रहे हते, तो नृत्य गोपाल जी
1: जी चंपा जी,
0: देखो आज परंपरागत खुरगिनती परंपरा के अनुसार ना नंदगांव में जन्माष्टमी हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। यानी कि जो ब्रज के लोक जीवन में जन्माष्टमी को पर्व है ना, कल भी मनो और आज भी मन रहे हो, तो फिर कहूँ ऐसी व्यापक और विशद चर्चा की ओर अपने भैया बहनान को ले चले।
1: चंपा जी ले तो चलेंगे, पर अपने श्रोतान को यू बता दो कि आपने व्रत कल करो कि आज कर रही हो।
0: नृत्य गोपाल जी, हम तो दोनों दिन उपास ही हैं, भोजन तो हम रोज ही करें, पर या व्रत में देखो तरह तरह के पकवान हैं, मेवा हैं, मिंगी पाग है, मेवान के पाग हैं, तरह तरह के फल हैं, पर उनकी प्रसादी मिलेगी तो फिर व्रत ये दो दिन करवे में बुरा ही कहा है।
1: हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है।
0: हाँ
1: जी हाँ, श्रोता हो, जो चंपा जी कह रही है कि ब्रज के लोक जीवन में जन्माष्टमी को कहा स्वरूप है कि ऊपर कछु सुनवाई भी की आप बात कर रहे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, जरूर आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने भैया बहनान को सुनवाए रहे हैं ये परिचर्चा, जाको विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी परंपरागत और आधुनिक स्वरूप। या में प्रतिभागता कर रहे हैं डॉक्टर शिवम शर्मा, कृष्ण गोपाल शरण, नरेंद्र शर्मा, और यह परिचर्चा को संचालन कर रहे हैं नृत्य गोपाल जी।
1: श्रोताओ, आज हमारे संग स्टूडियो में विशेषज्ञ पधारे हैं और प्रतिभागी के रूप में जो आमंत्रित विद्वान हैं, आदरणीय डॉक्टर शिवम शर्मा जी, कृष्ण गोपाल शरण जी और नरेंद्र शर्मा जी, आप तीनों को स्वागत है, अभिनंदन है।
2: राधे राधे
3: राधे राधे।
1: डॉक्टर शिवम शर्मा जी, ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है और याको ब्रज में जो मनावे को तौर तरीका है, ऐसा मानो जाए कि वो पूरे भारत में या पूरे विश्व में मनावे वाली जो एक परंपरागत रीति रिवाज है, उनमें ब्रज में कछु विशेषता है, खासियत है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये ब्रज में परंपरागत रूप में हम कृष्ण जन्माष्टमी को कैसे मनाएं।
2: जी, तो जैसे आपने कही कि जन्माष्टमी हम पूरे विश्व में मने, पूरे भारत में मने, लेकिन ब्रज में जो आनंद है जन्माष्टमी को वो अलग ही है, क्योंकि या के संग जो भाव जुड़ा है प्रत्येक जनमानस को, प्रत्येक ब्रजवासी को, वो अलग ही देखने को मिले। पहले रक्षाबंधन जैसे ही जाए, रक्षाबंधन के बाद तो ही जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो जाए, लोग अपने घरे ठीक करबो, साफ सफाई करबो शुरू कर दें कि त्योहार आए वारो है, मेरा नंद को लाला आए वारो है, भाव है कृष्ण के संग, क्योंकि ब्रज में कृष्ण आराध्य तो होते ही है जैसे सब जगह है
1: जी।
2: लेकिन वन के संग जो आत्मीयता जुड़ी है, जो भाव जुड़ो है कि जी मेरा लाला है, ये ब्रज में एक अलग ही देखने को मिले। प्रत्येक ब्रजवासी को कछु ना कछु रिश्तों में बना ही लेते हैं कृष्ण के संग।
1: जी हाँ डॉक्टर शिवम, ये बहुत अच्छी बात यही है, क्योंकि विशेषता यही है कि एक भाव ऐसे जुड़ो भी हो कि अब हमारो लाला आ रो है, अब हमारो कन्हैया आ रो है। और आपने बहुत बढ़िया संकेत करो कि उत्सव तो हमारे यहाँ रक्षाबंधन हुए, लेकिन रक्षाबंधन के तुरंत पश्चात भाद्रपद लगते ही कि अब हमारो उत्सव आ रहे हो है। कृष्ण गोपाल शरण जी, ये जो भाव है कि हमारो सब आ रहे हो है, या के काजे विधिवत रूप में हम कहा का तैयारी करे हैं,
3: जाके लिया अपने पूजा घरन ने साफ करे हैं, बहुत अच्छे ढंग से जा काजे तैयार करें के लाला आवे तो आए बहुत सुखद महसूस होए, बाके लिया मिश्री को उबटन तैयार करो जाए है,
1: अपने कन्हैया के ताई एक ऐसा वातावरण बना देनो कि जो कन्हैया आ रहे हो तो वो आते ही बहुत आनंदित महसूस करे, हम सबको भाव रहे। नरेंद्र शर्मा जी, आप प्राय मैंने जैसा देखो है और आपते कई बार यह विषय पे चर्चा भई, जन्म उत्सव तो मने पूरे ब्रिज में पूरे भारत में, पर बरसानो जो कि किशोरी जी को स्थान है और जहाँ आप प्राय जानो कि आप तो किशोरी जी के परम भक्त हैं, तो ये जो किशोरी जी की लीला स्थली है, यहाँ पे कन्हैया के आगमन की तैयारी आप कैसे करे हैं?
4: हमारे बरसाना में जैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव शुरू होता है तो तैयारियां शुरू कर ली जाती हैं। तो उसमें हमारे यहाँ मोरकुटी है, गहवर कुंड है और मानसरोवर है।
1: नरेंद्र जी, आप मूलतः जो मैं जहां तक आपके संबंध में मैं अपने श्रोताओं को बताऊं कि आप बरसाना के निकट चिकसोली गांव जो कि चित्रा सखी को गांव है, और ये जो अष्ट सखीन के गामन में कृष्ण जन्माष्टमी मनावे को जो एक परंपरागत स्वरूप है, बाकी कछु अपनी भिन्न

0: है, विशेषताएं हैं।
1: हमारे यहाँ पे परंपरागत तरीके से रासलीलाएं करते हैं, गहवर कुंड में कृष्ण भगवान की लीलाएं होती हैं, मोरकुटी पे लीलाएं करते हैं और उसका बड़ा महत्व रहता है। लोग बाहर से बहुत दर्शन करने आते हैं और उनकी लीलाएं रचाते हैं और सारी सखियां, अष्ट सखियां, बरसाना, नंदगांव, गाजीपुर, मानपुर, चिकसौली, चित्रा, सारी सखियां मिलके महाउत्सव का आनंद लेती हैं।
0: जी हाँ नरेंद्र जी, ये जो अष्ट सखिन के गांव हैं और इन अष्ट सखिन के गांवन में कृष्ण जन्मोत्सव को जो अपना तौर तरीका है, याकी हुई बात अद्भुत है। डॉक्टर शिवम जी, कृष्ण आ रहे हैं, भाव की बात आपने कही, ये भाव के संग हम जब देखें ना कि कन्हैया को जन्मोत्सव हमें मनाना है, तो प्रातः काल ते हमारी अपनी परंपरागत क्रिया कहाँ रहे?
2: तो सबसे पहले तो वो जो ऊर्जा है कि नंद के आनंद भयो, वो सबेरते ही लग जाए सब कामन में।
0: हाँ।
2: तो भैया आज जो है कृष्ण जन्मोत्सव है, कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी करनी है, तो अलग अलग बाकी चूल्हा चौका की अलग विधाएं हैं, वे अलग हुए, फिर घर की तैयारी बालकन ने करनी है, मंदिर कैसे सजानो है, पालकी कैसे बनेगी, झांकी कैसे सजेगी, ये सब की तैयारी अलग अलग आदमी सबन के जिम्मे काम है। और सब नंद के आनंद केत केत आबा आनंद में ऐसे सराबोर रह जाए कि सब अपने अपने कामन ने सब जो भटको है वही में लग जाए।
0: यानी कि अगर कहो बंधनवार बनाने तो वो बंधनवार ही बना के ला रहे है, कहूं तो आम के पत्ता ला रहे हैं, कहूं तो जामुन के पत्ता ला रहे हैं, अशोक के पत्ता ला रहे हैं और बंधनवार बनाए जा रहे हैं। फिर बाकी पश्चात भीतर मंदिर में जो हमारी जिम्मेदारी बालकन के तहत, यही एक जाए कि फूल तोड़ला,
2: बिल्कुल
0: है,
2: बिल्कुल,
0: और गए बगीचा में तो फूल तोड़ला है। कृष्ण गोपाल जी, हमारी यहाँ सब बालकन व्रत की आदत कृष्ण जन्माष्टमी ते है जाए, तो ये जो एक परंपरागत तरीका में भाव के संग ये व्रत या वाकई अवसर पे जो भोज पदार्थ हैं, या को का स्वरूप है जी?
3: ब्रिज में सभी जगह धनिये की पंजीरी बनाई जाए है, दही, मीठी दही जमाई जाए है, रात को ही हल्को सो मिश्री मिलाए के दूध में बाते दही जमा में मिट्टी के बर्तन में, और एक बिल्कुल शुद्ध भाव ऐसो रहे है कि कन्हैया ही मेरे आ पाएंगे। जैसे कि रामचरित मानस में आवे है, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, याई भाव को अनुसरण करते भय सभी ब्रजवासी ऐसो भाव रखे हैं कि कन्हैया मेरे ही घर आएंगे या मारे या ताई। मिश्री में इतनी ज्यादा पवित्रता रखी जाए है, दूध दही में इतनी पवित्रता रखी जाए है, हफ्तों पहले ते माखन इकट्ठो करो जाए है कि मैं मेरे कन्हैयाए माखन मिश्री खवाऊंगी, छाछ इकट्ठी करी जाए है, जो भाव ब्रज के पदन में गायो है कि छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, कन्हैया तो बाद में नाचे है, पहले तो ब्रजवासी ही गली गली में नाचते घूमे हैं, वे वह उत्सव के आनंद में इतने मगन है जाए हैं कि कोई खवानो कहा चाहे कन्हैयाए और खवा कछ दे। कई कई गोपी तो जा भाव में पहुंच जाए हैं के वो दूध दही ले लियो ऐसो ना कहे है, वो कहे गोविंद ले लियो, गोपाल ले लियो, कन्हैया ले लियो, नंदलाल ले लियो, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय को कीर्तन करे हैं।
0: नरेंद्र जी, या अवसर पे पूरे भारत ते विदेशन ते इतने श्रद्धालु, इतने भक्त यहाँ ब्रिज में पधारे हैं, स्थानीय स्तर पे इन श्रद्धालुओं के ताई भारतीय आए भय जो भक्त गण हैं, इनके ताई स्थानीय जो लोग हैं, वे लोग कहा तैयारी करें कि काउ को असुविधा ना हो?
1: कि हमारे यहाँ बरसाना में तैयारी करते हैं, जैसे राधा रानी पे, मोरकुटी पे, उन व्यवस्थाओं को पूरी तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं मीडिया के माध्यम से, और रास्तों पे बोर्ड लगा दिए जाते हैं और कृष्ण भगवान के मंदिर को जाने के लिए पूरे रास्तों को डाइवर्ट कर दिया जाता है प्रशासन की तरफ से, और वहाँ पे लीलाएं होती हैं और कृष्ण भगवान को लेके गांव में घूमते हैं, उसको देखने के लिए लोग बाहर से बहुत लोग आते हैं और वो पूरी तरह से कृष्ण भगवान लीन हो जाते हैं, और वहाँ पे सारे बोर्ड साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से मंदिर पे जाने का, बाहर आने का, और टीवी के माध्यम से भी प्रसारण चल रहा है आजकल।
0: डॉक्टर शिवम जी, जो नरेंद्र जी ने बात और संकेत करे है बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था और लोक व्यवस्था, इन दोनों की महत्ता बहुत ज्यादा है, तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं इनको कहाँ स्वरूप है और कैसे लोगों के दाई के जो बाहर से आए हैं कोई असुविधा ना हो कहाँ का करें?
2: जी, तो यहाँ में शासन एकदम पूरे मन ते व्यवस्था भक्तन के काजे करें, क्योंकि इतनो भक्त जो है ब्रज में जन्माष्टमी के काजे आए, वो चाहो तो है कि सब हम जो है वही उपस्थिति अपनी दर्ज करावे, वही चले जावे, कैसे हूँ कृष्ण के ठोरे। अब यहाँ में प्रशासन की अलग जिम्मेदारी बढ़ जाए, कि भाई कैसे हम भक्तन ने निकास कहते होगो आंगे कहते हर मंदिर की

0: अपनी अपनी एक अलग वो है, तो यातायात की सुविधा देखनी है, बिन्ने आयवे जायवे को भीड़ भड़का नहीं हो, कहूं भगदड़ नहीं है जाए, अनेक जिम्मेदारी है। या में एम्बुलेंस और मेडिकल की व्यवस्था देखनी है कि काऊ अगर तीर्थयात्री है, काऊ भक्त है, अगर कोई समस्या है गई तो कहाँ जावेगो, कैसे क्या होगो, तो या की पूरी व्यवस्था प्रशासन करके चले, और एटीएम की जगह जगह सुविधा और ऐसी सुविधा के भाई काऊ भक्त है, कोई समस्या काऊ तरीके की नहीं आवे, तो प्रशासन या मामले में अपनी व्यवस्था पूरी करके चले, क्योंकि इतनो भक्त आवे जन्माष्टमी वाले दिना, बातें आगे पीछे एक दो चार दिना मान लो के पूरी व्यवस्था बाई हिसाब से बनाए के चलनी पड़े।
1: जी हाँ डॉक्टर शिवम, ये जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बाहर से आवे वाले इनके ताई इन सब चीजन को बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि दो दिन पहले आए गए, दो दिन बाद में उनके रुकवे की व्यवस्था है, और एक जो विशेष जो चीज है कि कहीं अस्वच्छता ना रहे, स्वच्छता के वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका है, वायु को बहुत ध्यान रखे जाए है। कृष्ण गोपाल जी, अभी डॉक्टर शिवम शर्मा जी ने जो बात कही है कि ये जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा में है। ये जो आज सोशल मीडिया का दौर है, या सोशल मीडिया के दौर में पूरे महोत्सव को कहा स्वरूप विकसित है रहे हो है, तनिक या के ऊपर हमारे श्रोताओं को बता में।
2: जी डॉक्टर नृत्य गोपाल जी, डॉक्टर शिवम जी ने जैसा कि बताया वाई तरीका थे सोशल मीडिया के माध्यम से जो जो तैयारी होती जाए हैं उनको अपडेट 10 दिन 15 दिन पहले थे सोशल मीडिया पे होने लगे है। यूट्यूब के नए नए जो नवाचार हैं बाके माध्यम से ये बात वीडियो में दिखाई जानी शुरू है जाए है कि जा मंदिर में दर्शन के ताई यहाँ ते आनो यहाँ ते जानो, यहाँ खाने की व्यवस्था अच्छी, यहाँ ते कैश की व्यवस्था अच्छी, और सोशल मीडिया के माध्यम से कहाँ कब कैसे आना है जाना है, जो बाहर से पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु और भक्त आमे हैं उनके लिए कहाँ क्या व्यवस्था रहेगी, कब दर्शन होंगे और कैसे कैसे होंगे, कहाँ से टेलीविजन से दर्शन कर सके हैं, कहाँ बड़ी स्क्रीन पर देख सके हैं उन्हें, और कितने बजे अगर हम चले जाएं तो हमें अंदर भी दर्शन करने को मिल जाएंगे।
1: जी यानी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी की पूरी सूचना वहां दे दी जाए। जी हाँ कृष्ण गोपाल जी, ये जो सोशल मीडिया से जानकारी जो प्रसारित करी जाए, तो ये जो प्रचार प्रसार के जो माध्यम विकसित है गए हैं, और यहाँ में बहुत बड़ी भूमिका है जाए या चीज की कि कौन सी जगह पे लोक कलाकारन को कौन सा आयोजन है रहे हो है? कौन कौन से हमारे लोग स्वांग हैं, नौटंकी हैं, भगत हैं, कौन से मंदिर में भजन संध्या है रही है, तो ये जो पूरी ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर है वाको प्रदर्शन कैसे है रहे हो है, या की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी जल्दी पहुंच जाए। नरेंद्र जी, ये इतने भक्त आए रहे हैं, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, ब्रज ते ऐसी कौन सी चीज लेके जाएं कि उन्हें उन्हें रह के बाद में एक तो भाव लेके जा रहे हैं पर कछु अपने संग कोई ऐसी चीज जाते कि स्मृति रहे, या अपने घर जाए के बतामे कि हम ब्रज ते आए हैं, ऐसी क्या चीजें हैं आपको अगर ऐसो कछु लगे तो?
3: दर्शन के साथ साथ भावना भी लेके आ रहे हैं, वो वहाँ पे प्रेम लेके आ रहे हैं, तो उनके जैसे लड्डू गोपाल जी हैं और पोशाके हैं, बंसी है, गेंद है, उसको अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, उसके माध्यम से रोजगार भी है, पेड़े ले जाते हैं, मथुरा का पेड़ा इतना प्रसिद्ध है कि जो उसको लोग प्रसाद के रूप में ले जाते हैं, मिश्री ले जाते हैं, सबसे बड़ा तो आशीर्वाद चंदन वो लेके जाते हैं, ब्रज रज लेके जाते हैं, और तुलसी की मालाएं लेके जाते हैं।
1: जी हाँ नरेंद्र जी, इतनी सारी चीज है जो जो लेके जाए श्रद्धालु अपने संग और जाते स्मृति रहे कि हम वृंदावन गए, मथुरा गए, जन्मोत्सव पे गए, और ये सब चीज लेके आए और अपने घर में बड़े सार संभार के संग रखे। डॉक्टर शिवम मुस्कुराए रहे हैं, याद आ रही है कि उनके काजे जब छोटे होते तो जरूर बंसी आई होगी और गेंद आई होंगी। डॉक्टर शिवम, कोई ऐसी चीज के लोक और प्रशासन दोनों मिलके इन श्रद्धालुओं के ताई जो अपना दायित्व तो है वाको निर्वाह करें, ऐसी कोई बात हो? और अब घड़ी कह रही है कि समय है रहे हो तो तनिक यह बात को हमें बता दें।
0: जी भाई साहब, जैसे आप बंसी की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में भी चल लो वाल के हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की, खिलौना लेके जा रहे हैं लाला को। तो या मैं आप अभी आपने लोक और प्रशासन की बात करी, तो प्रशासन तो देखो आप ही व्यवस्था करे ही करे
1: जी,
0: लेकिन जो लोक को आतिथ्य सत्कार है ब्रज में वो अलग है। ये इतेक जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं ये केवल प्रशासन की व्यवस्था से ना आ रहे, जिनने कृष्ण खींच रहे हैं, जिनने ब्रजवासी खींच रहे हैं, ये देखो ये पूरी व्यवस्था हमारी हते है, तो जगह जगह भंडारे है रहे हैं कि जो जैसो कच्चो खावे बाकी का कच्चे की व्यवस्था है, जो पको खावे बाकी का पक्के की व्यवस्था है, जगह जगह खटिया बिछ रही नहीं है कि आओ बैठो
1: जी।
0: तो ये जो आतिथ्य सत्कार ब्रज को होता है, ब्रजवासी को होता है, जिस सबने खींच लिए अपनी ओर, और जो मिल बांट के खाइवे को संदेश ब्रज में

0: ये जगह जगह जा रहा है, बाहर तेव जो आ रहा है, बहु है बढ़िया भोजन पवानो, ये हमारे भाव में है, हमारे संस्कार में है। जगह जगह खटिया बिछे हैं, बिनमें लोक गायन चल रहा है, अलग अलग मंचन, जैसे नाटक के भाई साहब अभी बता ही रहे कि नाटक के मंचन है रहे हैं, झांकी निकल रही है काउंटे, तो ये पूरा जो ब्रज है ये जन्मोत्सव में कैसे लीन है जाए, कैसे एक एक आदमी एक एक ब्रजवासी यहाँ में सम्मिलित है कि अपना भाव न्योछावर कर रहा है कि क्या मैं दे दूं, कहा
1: हाँ
0: श्रमते दे दूं, कहा मैं भोजन पवा दूं, कहा बना दूं लाला को, क्या तैयारी में कर दूं, यह को भाव ये देख ये अलग ही है
1: ये जो यशोदा मैया को भाव है, ब्रजवासिन को भाव है, ये विशेषता है ब्रज
0: जी।
1: की। यानी जो आ रहे हो वो ब्रजवास और अपने आप को ब्रजवासी माने, या भाव को विकास यदि कहूँ हो तो लोक में हो, एक गिलास छाछ पी ली, एक कुल्हड़ छाछ पी ली, लस्सी पी ली, तो वो ब्रज को जो भाव है, छचिया भर छाछ पे नाच नचा में, तो ये जो ब्रज को भाव और कन्हैया के उत्सव की बात आज हम अपने श्रोतान के ताई जो आपके आपके माध्यम से सुन रहे थे, आदरणीय डॉक्टर शिवम शर्मा जी, कृष्ण गोपाल शरण जी और नरेंद्र शर्मा जी, आप तीनों यहाँ पधारे स्टूडियो में और अपने कन्हैया के जो जो भाव हमारे भीतर है और जो लोक के भाव हैं आपने सब श्रोतान को बताए, आप तीनों पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जय श्री राधे
0: राधे राधे,
3: राधे राधे,
2: जय श्री राधे राधे।
4: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे हते, जाको विषय हो श्री कृष्ण जन्माष्टमी परंपरागत और आधुनिक स्वरूप। यह परिचर्चा में भाग लेवे वाले प्रतिभागी है डॉक्टर शिवम शर्मा, कृष्ण गोपाल शरण और नरेंद्र शर्मा जी। संचालन कर रहे हते नृत्य गोपाल जी। तो नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
4: देखो आपको बहुत बहुत आभार के आपने इन तीनों विशेषज्ञ प्रतिभागी ने बड़ी सुंदर चर्चा, जो पौराणिक स्वरूप है, जो परंपरागत स्वरूप है और जो वर्तमान में आधुनिक बदलाव आए हैं, उनके बारे में ना विशद चर्चा इन विशेषज्ञ ने करी। तो देखो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी श्रोता भैया बहना या कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो बड़े लाभान्वित हुए होंगे कि जो आधुनिक स्वरूप के तहत हमारे जो प्रतिभागी ने जानकारी दई है कि ऐसे सुविधा है, ये यातायात की व्यवस्था है, ये आवास की व्यवस्था है, ये स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो हर कोई चाहे भक्त है, श्रद्धालु है, वो भारत भूमि के काऊ कोने में बैठा हुए अब यही सोचेगा कि चलो भैया लोक को जीवन भी प्रशासन की तरह ही समृद्ध है, हम चलें और इन पर्वन को जो उल्लास है वहां में भी अपनी सहभागिता दर्ज कराएं।
1: जी हाँ चंपा जी, हमारे विशेषज्ञ ने हमारे श्रोतान के ताई है जो लोक की परंपरा है या की चर्चा दी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: नृत्य गोपाल जी,
1: जी
4: देखो आप
1: जी।
4: परंपरा की बात कर रहे हो ना, तो आज है ना ब्रज में एक बहुत बड़ी परंपरा को निर्वाह भी ना वृंदावन की धरा में हो रहे हो।
1: तनिक बाहू को बता दो ना।
4: देखो नृत्य गोपाल जी, जो हमारे उत्तर भारत को प्रमुख मंदिर है ना श्री रंगनाथ जी को, जाकू सोने के खम्मा वारो मंदिर के में है,
1: लट्ठा वारो मंदिर,
4: हाँ, तो वा मंदिर में भी ना आज जो ऐतिहासिक लट्ठा को मेलो है वा को आयोजन हो रहे हो, शोभा यात्रा निकली है। और या जब हमारे श्रोता ब्रज माधुरी कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो वहाँ पे ना परंपरागत जो लट्ठा को मेलो है चल रहे हो है। और या मेले की बड़ी विशेषता ये है कि जो भगवान रंगनाथ है ना वो स्वयं दर्शन करवे के काजे या मेले के भारा में, या मेले में जो लट्ठा पे चढ़वे की परंपरा है, तो वहां में जो प्रतिभागिता करें ब्रजवासी जन, तो बिना भगवान रंगनाथ ते अनुमति ले रहे हैं, ये भाव आत्मसात हो रहा है कि हमने अब भगवान रंगनाथ ते अनुमति ले ली है, लट्ठा पे ऊपर चढ़ रहे हैं, कई मीटर बाकी ऊंचाई है।
1: या में रंगनाथ जी के आशीर्वाद की जो परंपरा है ये भारतीय ज्ञान परंपरा को अंग है।
4: हाँ,
1: और आपको याद हो तो आज तो 5 सितंबर है, आज तो एक और विशेष दिवस है चंपा जी।
4: अरे नृत्य गोपाल जी, आज शिक्षक दिवस जो है
1: जी
4: तो आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, हमारे सब श्रोता भैया बहनान को बधाई।
1: शिक्षा के महत्व को हमें जानना है, समझना है और शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सके या भाव को धारण करते हुए हमारे विद्यार्थी हमारे शोधार्थी आगे बढ़े।
4: नृत्य गोपाल जी, देखो आप आगे बढ़ावे की बात कह रहे हो, तो एक विद्यार्थी के जीवन को आगे बढ़ावे में बाकू मार्गदर्शन प्रदान करवे में तो बाकी गुरु की बड़ी महती भूमिका होवे है, और वही गुरु को वही शिक्षक को ना सम्मान देते भाई प्रतिवर्ष ये जो 5 सितंबर को दिन है शिक्षक दिवस के रूप में मनायो जावे है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जन्म ना 5 सितंबर 1888 को भयो हो तो उनके जयंती दिवस पे ही ना उनको नमन वंदन करते हुए या दिवस को पूरे भारत वर्ष में हर्षोल्लास के

0: प्यारे भैया बहनाओं, इन्हीं प्यार भरी वातन के संग हमारो आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है। मोय अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जाएवे की अनुमति प्रदान करें। नमस्कार।
2: अभी आप ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम जो कि नाटक है जिसका शीर्षक है सच्चा ज्ञान।
0: आइए सुनते हैं नाटक सच्चा ज्ञान, लेखिका दीक्षा शर्मा, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
3: शांति
4: जी,
3: आर्यन ने पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन भविष्य में उसे क्या करना है ये निर्णय ही नहीं ले पा रहा। वो पूरी तरह से मोबाइल पे आश्रित है या दूसरों पर। क्या होगा इसका, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं।
4: आप चिंता ना करें जी, सब ठीक हो जाएगा।
3: अरे कैसे चिंता ना करूं, समय निकलता जा रहा है, एक एक दिन हाथ से फिसल रहा है। लेकिन आर्यन को तो भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। जब बात करने जाओ एक ही जवाब देता है, सब हो जाएगा, मैं सब ठीक कर लूंगा, पापा मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा विकल्प मिल ही जाएगा।
4: हाँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे खुद भी ऐसा लगने लगा है जैसे मोबाइल के आगे आर्यन के लिए कोई चीज महत्व नहीं रखती।
3: सच में
4: कभी हमारे पास बैठकर बात तक नहीं करता, उससे बात करना चाहे तो कहता है डिस्टर्ब मत करो।
3: हाँ।
4: कुछ सर्च कर रहा हूँ। इस मोबाइल में आर्यन सब कुछ भूलता जा रहा है। कभी मंदिर चलने के लिए कहती हूँ तो हंसता है, उसे ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है जी।
3: वही तो, अब तो हद होती जा रही है, हर वक्त मोबाइल में ही घुसा रहता है।
4: हाँ।
3: इसे कब समझ आएगी, कब ये कुछ सीखेगा, कैसे खुद से समझेगा।
4: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी।
3: शांति
4: जी,
3: मैं एक बात सोच रहा हूँ।
4: क्या?
3: क्यों ना इसे कुछ दिन गुरुकुल ले जाए, वहाँ गुरुजी से कुछ तो सीखेगा।
4: गुरुकुल? आपको लगता है ये वहाँ जाएगा?
3: मैं आज इससे बात करता हूँ। आर्यन आ जाऊं मैं अंदर?
5: हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी पापा, हाँ जी हाँ जी।
3: क्या कर रहे हो बेटा?
5: अरे पापा वो मैं कुछ सीख रहा था।
3: मोबाइल?
5: हाँ हाँ, मोबाइल से।
3: तुम्हें क्या लगता है आर्यन, तुम मोबाइल से सब कुछ सीख सकते हो?
5: अरे पापा, दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो हम मोबाइल से नहीं सीख सकते? आपको क्या लगता है, कुछ ऐसा है?
3: हाँ मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम मोबाइल से नहीं बल्कि अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन की कुछ बातों से ही सीख सकते हैं।
5: पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
3: ऐसा है आर्यन, लेकिन आजकल के बच्चों को तो लगता है कि हम सभी बातें, जीवन जीना मोबाइल से ही सीख लेंगे। हमारे जमाने में मोबाइल नहीं था, हमने जो कुछ भी सीखा खुद से सीखा। हमारे गुरु थे जो ज्ञान का भंडार थे, उनसे हमने जीवन की सच्चाई को जाना, जीवन जीने का सही तरीका सीखा। अच्छा तुम बताओ आज किस चीज की कमी है हमारे पास? गुरुजी के ज्ञान ने ही मुझ जैसे छोटे से गांव में रहने वाले लड़के को शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। बेटा एक बात याद रखना।
5: क्या पापा?
3: जब तक हम धरती से जुड़कर कोई काम नहीं करते हम कुछ नहीं सीख सकते, कुछ नहीं समझ सकते। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता।
5: अरे पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या पुराने जमाने की बात कर रहे हो आप?
3: अच्छा अच्छा आर्यन, मैंने क्या तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी होने दी है?
5: नहीं पापा।
3: कभी किसी चीज के लिए मना किया है?
5: नहीं पापा, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं?
3: देखो आर्यन, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी करी।
5: हुँ?
3: कितना समय हो गया?
5: हाँ हो गया। हाँ, वक्त हो गया।
3: तुम अपने भविष्य के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं कर पाए हो, जब भी कुछ पूछो तो बस टाल देते हो, पूरी तरह से मोबाइल और अपने दोस्तों पर निर्भर हो। हर बार तुम्हारा विचार बदल जाता है।

0: कभी दोस्त के कहने पर, कभी मोबाइल में देखकर, पूरी तरह से इंटरनेट पर डिपेंडेंट हो गए हो बेटा।
1: पापा आजकल सभी इसी पे डिपेंड रहते हैं, इसी से सीखते हैं, आप समझते क्यों नहीं है?
0: देखो देखो आर्यन, तुम मेरे एक अच्छे बेटे हो, तुमने हमेशा बड़ों की इज्जत की, पढ़ाई में तुम हमेशा अव्वल रहे, लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूँ मोबाइल के आगे तुम्हें कुछ नहीं भाता है। देखो मैं चाहता हूँ तुम यथार्थ में रहकर कुछ सीखो, सब कुछ मोबाइल से ही नहीं सीखा जा सकता बेटा।
1: अरे पापा तो आप चाहते क्या हैं?
0: मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ गुरुजी के आश्रम चलो।
1: क्या?
0: हाँ, गुरुकुल में कुछ दिन रहो, इस मोबाइल से ज्यादा शायद तुम्हें वहां ज्ञान मिल जाए।
1: अरे पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, उस गांव के गुरुकुल में जाकर मैं इस मोबाइल से ज्यादा सीखूंगा? सीरियसली? हाँ ऐसा आपको लगता है पापा? लेकिन मुझे नहीं।
0: देखो आर्यन मैं जानता हूं शायद तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई, मैं कौन सा तुम्हें वहां सारी उम्र रहने के लिए कह रहा हूं। हाँ
1: अब पापा प्लीज मुझे नहीं जाना।
0: देखो आर्यन तुमने मुझे खुद कहा था ना कि तुम थोड़े दिनों में अपने भविष्य के लिए खुद से कुछ निर्णय लेने वाले हो।
1: हाँ जी।
0: हाँ तो लेना, अपना निर्णय खुद लेना, लेकिन अभी कुछ समय तक तो तुम खाली हो ना, होना खाली।
1: हाँ।
0: तो वो समय मुझे दे दो, मेरे साथ चलो बेटा प्लीज। आर्यन मेरी बात मान लो बेटा, देखो बस कुछ ही दिन तुमसे मांग रहा हूं, फिर आकर तुम्हें जो करना है वो करना, ठीक है? बस
1: ओके ओके ठीक है पापा मैं चलूंगा, पर पापा अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, ठीक है?
0: हाँ हाँ प्रॉमिस। ठीक है प्रॉमिस प्रॉमिस। हाँ ठीक है, तो तुम तैयारी कर लो, हम कल सुबह ही निकलेंगे।
1: हाँ ठीक है पापा ओके। हाँ, मैं करता हूं।
0: मेरा अच्छा बेटा, मैं अभी तुम्हारी माँ को बताता हूँ। शांति शांति। देखा देखा बेटा कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे। आओ आओ गुरुजी के कमरे में चलते हैं।
1: यहाँ इस तरफ?
0: हाँ इधर इधर।
1: अच्छा
0: गुरुजी। प्रणाम
2: प्रणाम प्रणाम।
0: गुरुजी मेरा बेटा आर्यन। गुरुजी को प्रणाम करो।
1: जी प्रणाम गुरुजी।
2: प्रणाम बेटा प्रणाम।
0: गुरुजी मैं इसे यहाँ जबरदस्ती लेकर आया हूँ, ये तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। गुरुजी ये कॉलेज पास कर चुका है लेकिन भविष्य में क्या करना है अब भी नहीं समझ पा रहा है।
1: अब गुरुजी वो पापा ठीक ही कह रहे हैं, एक्चुअली मुझे ये जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं, कहते हैं कि आपके पास जीवन की सीख मिलेगी, लेकिन आप बुरा मत मानिए, मैं सच कहूं तो आजकल सारी जानकारी तो मोबाइल पर मिल ही जाती है।
0: आर्यन
2: जानकारी तो मिल जाती है बेटा, लेकिन क्या समझ भी मिल जाती है? कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो दो चार दिन गांव में रहकर देख लो, यहाँ की शुद्ध हवा खाओ।
1: ठीक है अब आ ही गए हैं तो रह लेते हैं दो चार दिन, गांव भी घूम लेंगे।
0: तो ठीक है गुरुजी अब आज्ञा दीजिए मैं चलता हूँ।
2: आयुष्मान भव।
0: आर्यन।
1: जी पापा।
0: जो जो गुरुजी कहें बस उनकी बात मानते रहना, समझे?
1: जी हाँ जी पापा।
0: मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ।
0: गुरु जी की सुनना। हाँ चलो मैं चलता
1: हूँ। आप ध्यान से जाना। प्रणाम गुरु जी।
2: प्रणाम प्रणाम। आओ आर्यन आओ, थोड़ी ठंडी हवा खाते हैं, गांव की सैर करते हैं।
1: जी
2: आओ
1: जी आइए चलिए।
3: मर गई।
1: अरे गुरुजी ये इतनी बूढ़ी हैं और इतनी भारी लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाकर चल रही हैं, एक इनकी इनकी वीडियो बना लेता हूँ।
2: वीडियो बाद में बनाना, देखो वो खड़ी हो गई हैं, शायद वो गट्ठर नीचे रखना चाहती हैं। जाओ पहले उनका बोझ कम करो।
1: ओके गुरुजी। अरे अम्मा मैं थोड़ी मदद करता हूँ आपकी, लाई मुझे मुझे दीजिए। अरे अरे बहुत भारी है ये तो।
4: अरे बेटा इतनी देर से देख रही थी, कोई मेरे सिर का बोझ

0: उतरवा दे, बहुत थक गई थी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें सुख दे बेटा, तुम्हें सुख दे।
1: चले आर्यन
2: जी। हाँ? जी गुरुजी।
1: अच्छा आर्यन, इससे तुमने कुछ सीखा?
2: गुरुजी, इससे मैं क्या सीखूंगा।
1: अब मोबाइल ने तुम्हें वीडियो बनाना सिखाया
2: जी,
1: लेकिन इंसान का दर्द समझना किसने समझाया?
2: अब
1: चलो
2: आओ जी।
1: आ गए
2: जी गुरुजी।
1: आर्यन
2: जी,
1: मुझे एक गिलास पानी दोगे?
2: जी जी, मैं अभी लाया। ये लीजिए गुरुजी पानी।
1: इसमें एक चम्मच नमक डालो।
2: नमक?
1: और इसे पी लो।
2: अब जी ठीक है।

0: बहुत खारा है।
1: अच्छा, अब एक चम्मच नमक वो उस बड़े मटके में डालो और उसका पानी पियो।
0: मटके में? ठीक है। ये तो बिल्कुल सामान्य है।
1: हाँ, मैं तुम्हें इसके जरिए ये बताना चाहता हूं कि समस्याएं भी नमक की तरह ही होती हैं। अगर मन छोटा हो तो हर दुख कड़वा लगता है, और मन बड़ा हो तो कोई दुख हमें तोड़ नहीं पाता। जाओ, अब तुम विश्राम करो।
0: जी गुरुजी।
1: जाओ।
0: शायद गुरुजी सही कह रहे हैं, जानकारी और बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं गुरुजी क्या बताते हैं। आज तो बहुत थक गया मैं।

0: प्रणाम गुरु जी, प्रणाम
1: प्रणाम प्रणाम। आर्यन
0: जी,
1: जैसे और शिष्य मेडिटेशन कर रहे हैं, तुम भी ध्यान लगाओ।
0: जी जी गुरु जी।
1: हाँ
0: सुबह से पता नहीं किस किस के मैसेज आए होंगे, जरा देख लेता हूँ। किसके मैसेज है ये? ये किसने भेजा? अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओके ओके ओके ओके। और ये
1: आर्यन
0: जी जी जी गुरु जी, जी, जी।
1: मन यहाँ बैठा है या मोबाइल में?
0: वो क्या है ना गुरु जी, कल आपने गांव में खूब घुमाया था ना, तो थक गया था और जल्दी सो गया, और सुबह सुबह आपने यहाँ बुला लिया, फोन बिल्कुल नहीं देख पाया। आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है गुरु जी, आपको नहीं पता, नहीं तो लोग भूल जाते हैं। जी
1: तुम्हें क्या लगता है आर्यन
0: जी,
1: जो लोग तुम्हें एक दिन ऑनलाइन ना दिखने पर भूल जाएं, क्या वो सच में तुम्हारे अपने हैं?
0: क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं गुरु जी।
1: अच्छा चलो जरा मेरे साथ बागीचे में चलो। आओ मेरे साथ चलो।
0: जी चलिए।
1: देखो आर्यन
0: जी, गुरु जी
1: यहाँ दो पौधे लगे हैं
0: जी जी,
1: एक देखो कितना हरा भरा है और ये दूसरा कितना मुरझाया हुआ है, बता सकते हो इनमें अंतर क्यों है?
0: ये तो ऑब्वियस है ना गुरु जी, कि पहले वाले को पानी मिला होगा और दूसरे वाले को नहीं।
1: बिल्कुल ठीक। जिस चीज को रोज समय और ध्यान मिलता है वही बढ़ती है। तुम अपने मोबाइल को रोज 8 घंटे देते हो, लेकिन अपने माता पिता अपने मन को कितना समय देते हो?
2: गुरुजी, मेरे पिताजी अस्पताल में हैं।

0: मुझे बहुत डर लग रहा है।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं। रो मत बेटा, भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे पिता को ठीक कर देंगे।
0: लेकिन मेरा डर और रोना बंद नहीं हो रहा, मैं क्या करूं?
2: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, अरे देखो देखो देखो देखो, रोते नहीं है। देखो देखो, हम दोनों मिलकर गुरुजी के साथ प्रार्थना करेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं, ठीक है। चलो रोना बंद करो, शाबाश शाबाश, चलो। गुरुजी, आज दरअसल पहली बार लगा कि दुख में किसी का हाथ पकड़ना उसकी फोटो लेने से ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा, चलो शाम को मिलते हैं।
2: जी गुरुजी, प्रणाम।
3: प्रणाम गुरु जी।
1: प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अच्छा बच्चों, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक एक करके बताना कि दुनिया में सबसे तेज क्या है?
0: गुरुजी, गुरुजी, हवा।
4: ना गुरुजी, गुरुजी, प्रकाश।
0: नहीं नहीं गुरुजी, खाना खाना।
5: विद्या गुरुजी, विद्या,
6: ज्ञान ज्ञान ज्ञान।
1: ठीक है ठीक है ठीक है, सबने अपनी अपनी बात कही, अब मेरी सुनो। दुनिया में सबसे तेज है जो भागता ही रहता है, और वो है मन। और आज के समय में तो मोबाइल उस मन को हर पल हर क्षण भटकाता है। हर दो दो मिनट बाद मोबाइल को देखने का मन होता है। यही भटकाव है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया जीत ली। मन को काबू करके तो देखो। चलिए आज का पाठ यहीं संपन्न होता है।
7: प्रणाम प्रणाम गुरुजी।
1: प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
2: ये छत पर ठंडी ठंडी हवा में सोने का मजा ही अलग है, पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और कितने खूबसूरत लग रहे हैं आसमान पर चारों ओर बिखरे ये तारे। लाखों स्क्रीन देखी लेकिन आज पहली बार अपने अंदर की रोशनी को महसूस कर पा रहा हूं।
1: लगता है अब शिक्षा शब्दों से नहीं, अनुभव से तुम्हारे हृदय में उतर रही है।
2: जी, जी, गुरु जी।
1: चलो इस दृश्य को खूब देखो, अच्छी तरह देखो, निहारो।
2: जी गुरु जी।
1: सुबह मिलते हैं।
2: जी गुरु जी, प्रणाम। वाह, सुबह की ठंडी ठंडी हवा, वाह, सचमुच आनंद आ गया। आज मैं जल्दी उठ गया, नहा धो भी लिया और कितनी जल्दी सब कुछ हो गया। और सुबह सुबह ये ताजी हवा में सांस लेने का मजा ही कुछ और है, क्या बात है। अरे ये इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां एक साथ, और पीछे मीडिया की गाड़ियां भी हैं, क्या हो क्या रहा है ये? अब नीचे चलकर देखूं तो कौन आया है? अरे ये तो देश के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, और ये गुरुजी के पास क्या कर रहे हैं?
3: गुरुजी आशीर्वाद दीजिए।
2: अरे ये गुरुजी के पैर छू रहे हैं?
1: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो।
3: गुरुजी, आपकी सीख से, आपकी शिक्षा से मैं आज इस मुकाम पर हूं। आपकी दी हुई सीख और शिक्षा से और सूझबूझ से मैंने कारोबार आगे बढ़ाया और आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं। मेरी ओर से ये धनराशि आपके लिए गुरुजी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बेटा, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता तो नहीं थी, फिर भी मैं आपसे ये स्वीकार करता हूँ।
1: धन्यवाद गुरुजी।
0: हर अभी आश्रम के गरीब बच्चों की पढ़ाई और गांव के अस्पताल को दान भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अरे, इन्होंने नोटों से भरा बैग गुरुजी की ओर बढ़ाया और गुरुजी ने एक ही पल में वो सारे नोट दान कर दिए।
1: अच्छा गुरुजी, अब आज्ञा दीजिए।
0: सदा सुखी रहो बेटा, सदा सुखी रहो।
1: प्रणाम गुरुजी।
0: प्रणाम
2: गुरुजी। प्रणाम।
0: प्रणाम
2: गुरुजी। इतने बड़े बिजनेसमैन को यहाँ आश्रम में देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई है।
0: हैरानी कैसी, वो मेरे शिष्य रह चुके हैं।
2: अच्छा।
0: हाँ।
2: अच्छा गुरुजी, मैं पूछना चाहता था कि उन्होंने आपको इतने सारे पैसे दिए और आपने आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ दान में दे दिया, ऐसा क्यों?
0: देखो आर्यन, हमेशा ये सीख याद रखो, जो अपने लिए जोड़ता है वो अमीर बन जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए बांटता है वो महान बन जाता है, सच्चा इंसान बन जाता है।
2: वाह गुरुजी, ये बात तो मोबाइल में भी आज तक कभी नहीं सुनी।
3: प्रणाम गुरुजी।
0: प्रणाम। प्रणाम
2: गुरुजी, आपने बुलाया।
0: हाँ। अच्छा आर्यन, ये देखो मेरे हाथ में क्या है।
2: ये हाँ, शायद धान के दो पौधे हैं आपके हाथ में।
0: शायद नहीं, ये धान के ही पौधे हैं, एक पका हुआ है और एक खाली है। ये देखो, जिसमें दाने भरे हैं, जो पका हुआ है वो झुका हुआ है और जो खाली है वो सीधा खड़ा है। इससे तुम्हें कुछ सीख मिलती है तो बताओ, कुछ समझ रहे हो?
2: गुरुजी माफ कीजिए, इससे सीख नहीं गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी।
0: देखो आर्यन, जिस तरह ये दो पौधे हैं, ज्ञान भी इसी तरह होता है। सच्चा ज्ञानी कभी घमंड नहीं करता, हमेशा जो जितना बड़ा होता है उतना ही विनम्र होता है।
2: गुरुजी, मैं अब तक खुद को बहुत ज्ञानी समझता था, लेकिन आज पता चला कि मैं सीखने की शुरुआत भी नहीं कर पाया हूं अभी तक।
0: जिस दिन मनुष्य ये मान ले कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, उसी दिन उसका असली ज्ञान शुरू होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना आर्यन।
2: जी जी गुरुजी।
0: देखो आर्यन, कल तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं।
2: जी गुरुजी।
0: अच्छा आर्यन, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी।
2: जी गुरुजी, बताइए।
0: मुझे आज रात कहीं बाहर जाना है।
2: जी।
0: सो तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं।
2: जी गुरुजी। जी दीजिए, आज्ञा दीजिए मुझे।
0: देखो आर्यन, मैं ये जलता हुआ दीपक तुम्हें दे रहा हूं, इसे तुम्हें लेकर सारी रात आश्रम के रास्ते में घूमना है, लेकिन ध्यान रहे इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। क्या ये कर सकोगे?
2: जी जी गुरुजी, बिल्कुल करूंगा। हाँ बिल्कुल करूंगा।
0: तो ये लो, ये जी दीपक है।
2: जी जी, जी
0: और
2: जी,
0: ये
2: जी,
0: अब तुम्हारी जिम्मेदारी है।
2: जी गुरुजी।
0: इसे बुझने नहीं देना।
2: बिल्कुल नहीं गुरुजी। अरे गुरुजी ने मुझ पे जिम्मेदारी दी है और ये हवा भी आज इतनी तेज चलनी थी। अरे अरे, यहाँ से चलता हूँ, यहाँ शायद हवा का झोंका कम आएगा। हाँ, अरे आश्रम की उस ओर तो बहुत ज्यादा हवा चल रही है। अरे मैं कैसे कैसे, हाँ ये लो, यहाँ से ढकता हूँ। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है।
0: अरे वाह आर्यन, सुबह हो गई और मैं देख रहा हूं तुमने दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया।
2: जी गुरुजी, मैंने पूरी कोशिश की थी, पूरा ध्यान

0: रखा था।
1: अच्छा ये बताओ
0: जी,
1: कल रात आश्रम के रास्ते में तुमने किस किस को देखा?
0: खुर्शी क्षमा कीजिए, लेकिन मैं किसी को नहीं देख पाया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान ही दीपक की लौ को बचाने में लगा हुआ था।
1: बस यही जीवन का रहस्य है आर्यन।
0: क्या मतलब गुरुजी?
1: अगर तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य, अपने चरित्र और अपने ईश्वर पर रहेगा, तो दुनिया की बेकार बातें अपने आप नजर आनी बंद हो जाएंगी।
0: जी गुरुजी, मैं समझ गया। मैं हर समय लोगों की राय, लाइक्स और तारीफों के पीछे भागता रहता था, और इसलिए शायद मैं अपने जीवन का उद्देश्य भूल गया था। गुरुजी,
1: ज्ञान तुम्हें विनम्र बनाए, अहंकारी नहीं।
0: जी गुरुजी, मैं समझ गया। आज से मैं तकनीक का उपयोग करूंगा, लेकिन अपना जीवन उसके हवाले नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं गुरुजी।
1: वादा मुझसे नहीं आर्यन, अपने आप से करो, अपने आप से प्रण लो। जिस दिन से मनुष्य अपने आप को जान लेता है, उस दिन से उसका जीवन सफल होने लगता है। ज्ञान भी ऐसा ही होता है, सच्चा ज्ञानी कभी घमंड नहीं करता।
0: जी गुरुजी, मैं अब तक खुद को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन अब पता चला कि मैं तो सीखने की शुरुआत भी नहीं कर पाया था गुरुजी।
1: बेटा आर्यन, जिस दिन मनुष्य ये मान ले कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, उस दिन उसका असली ज्ञान शुरू होता है। अब जाओ आर्यन, आराम करो
0: जी।
1: सुबह तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं।
0: जी गुरुजी। मैं समझ गया हूं कि असली ज्ञान चीजों को सीखकर उसे समझने में है।
2: शांति, देख रही हो हमारा बेटा कितना बदल गया है।
0: डिग्री हमें नौकरी दिलाती है, विनम्रता हमें इंसान बनाती है, और समझ में आने लगा है मम्मा कि किसी भी चीज को पूरी तरह हम तभी समझ सकते हैं जब तक उसे अपने जीवन में दोहराए ना।
3: अरे वाह, मेरे आर्यन ने तो चंद दिनों में ही सब कुछ सीख लिया। वाह बेटा वाह।
0: पापा मामा, ये गुरुजी का ज्ञान है।
4: हाँ। अभी आप सुन रहे थे नाटक सच्चा ज्ञान। लेखिका थी दीक्षा शर्मा, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे अनु शर्मा, गौरव देवगन, निखिल दीवान, उर्मिला और सुनील कुमार लोहिया।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 4:10 पर आप सुन सकते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में जानकारी। परिक्रमा द्विभाषी मैगजीन बेस्ड प्रोग्राम आप सुन सकते हैं आज शाम 4:30। लोकरंजनी कार्यक्रम के प्रसारण का समय है शाम 5:10। वहीं हमारे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी को आप सुन सकते हैं आज शाम 5:30।

ग्राम संसार इस कार्यक्रम का प्रसारण शाम 6:30 बजे किया जाएगा और 7:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

रात्रि 9:30 पर, और फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम का प्रसारण समय है रात्रि 11:10 पर। तो ये थी हमारे आज के शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

现在我们播送安努拉达·巴德瓦强的一首神歌。

公爷又即是王罗，又为谢汉田及樊孔等领友。听众朋友们，现在我们播送 Yashpal Singh 唱的一首歌曲。

0: 听众朋友们，今天我们的普通话节目播送到这里，谢谢。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।

एशिया यूएई मैच की भी करेंगे चर्चा। इसके बाद चाइना मास्टर्स बैडमिंटन, यूएस ओपन 2026, पीएसए लंदन क्लासिक्स और डायमंड लीग फाइनल्स की करेंगे बात। साथ ही हॉकी, सुब्रतो कप, एशियन गेम्स के सेपेक टेक्रो स्क्वाड और डब्ल्यूटीटी कंटेंडर अल्माटी की अहम अपडेट्स भी रहेंगे हमारे साथ। तो चलिए खेलों की इस दुनिया का सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विमेन्स टी20 एशिया कप की।

0: क्रिकेट में कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं खेले जाते, उनके साथ जुड़ी होती है उम्मीद, दबाव और जीत की एक अलग कहानी।
1: श्रोताओं, आज महिला एशिया कप 2026 में क्रिकेट का वही मुकाबला होने जा रहा है जिसका इंतजार सिर्फ दोनों टीमों के प्रशंसकों को ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को रहता है।
0: शनिवार यानी आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमें आमने सामने होंगी। एक तरफ हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम, जो लगातार दो शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है,
1: तो दूसरी ओर फातिमा सना की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम है, जिसके लिए यह मुकाबला टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम है।
0: भारत ने अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड को 94 रन से हराकर की और इसके बाद हांगकांग को 137 रन से मात दी। अब भारतीय टीम की कोशिश लीग चरण का अंत लगातार तीसरी जीत के साथ करने की होगी।
1: पाकिस्तान ने भी अपने पिछले मुकाबले में थाईलैंड को हराया है, लेकिन उसके लिए आगे की राह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। ग्रुप चरण में उसका एक मुकाबला हांगकांग चाइना के खिलाफ भी बाकी है।
0: भारत और पाकिस्तान के बीच महिला T20 एशिया कप में अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 5 जबकि पाकिस्तान ने 1 मैच जीता है। पाकिस्तान की यह एकमात्र जीत 2022 में आई थी। दोनों टीमों के बीच कुल 17 महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 14 मैचों में बाजी भारत ने मारी है।
1: एशिया कप 2024 में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था, जबकि 2022 में पाकिस्तान ने भारत को 13 रन से मात दी थी। 2018 में भारत ने 7 विकेट और 2016 में 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। 2012 में भारत ने ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था, जबकि उसी साल फाइनल में भारत ने 18 रन से जीत हासिल की थी।
0: भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो स्मृति मंधाना इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं। हांगकांग के खिलाफ उन्होंने यादगार शतक लगाया और अब तक कुल 143 रन बना चुकी हैं। शिफाली वर्मा के नाम 92 रन हैं, जबकि प्रीतिका रावल 32 रन के साथ टीम की अगली प्रमुख स्कोरर हैं। हालांकि भारतीय मध्यक्रम से अभी बड़ी पारियों की उम्मीद बाकी है। थाईलैंड के खिलाफ अच्छी शुरुआत के बाद भारत ने सिर्फ 46 रन के भीतर अपने 8 विकेट गवा दिए थे। वहीं हांगकांग के खिलाफ नंबर 3 से नंबर 7 तक के बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 34 रन ही बना सके। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मध्यक्रम का प्रदर्शन काफी अहम रहने वाला है।
1: पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी टीम के लिए चिंता का विषय रही है। थाईलैंड के खिलाफ पावर प्ले में ही पाकिस्तान ने 3 विकेट गवा दिए और 20 ओवर में 9 विकेट पर 119 रन ही बना सकी। हालांकि टीम ने स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी काफी हद तक मुनीबा अली और कप्तान फातिमा सना पर निर्भर करती है। हालांकि श्रीलंका के हालिया दौरे पर टीम ने धीमी पिचों पर 2 बार 170 से ज्यादा रन बनाकर ये जरूर दिखाया है कि मौका मिलने पर वे बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती हैं।
0: भारत की गेंदबाजी में स्पिन विभाग अब तक सबसे मजबूत नजर आया है। दीप्ति शर्मा 6 विकेट के साथ टीम की सबसे सफल गेंदबाज हैं। श्री चरणी ने 4 जबकि प्रेमा रावत ने 2 विकेट लिए हैं। प्रेमा रावत ने थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ मिले मौकों का अच्छा फायदा उठाया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करने के बाद उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले थे, लेकिन एशिया कप में उनके प्रदर्शन ने भारतीय टीम को एक और प्रभावी स्पिन विकल्प दिया है।
1: गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा की भूमिका एक बार फिर अहम रहने वाली है। टीम के अब तक के प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति और दुबई की परिस्थितियों को लेकर दीप्ति शर्मा ने क्या कहा, सुनिए उनकी बात।
2: देखिए, ऐसे तो पूरी टीम ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप बॉलिंग यूनिट देखो या बैटिंग यूनिट, आई थिंक दोनों चीजें बैलेंस्ड हैं, और जिसका अच्छा दिन चलता है उस टाइम वो कोशिश करता है कि और अच्छा करे और लंबा गेम को लेके जाए, और जो बाकी के उसके अराउंड होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि कैसे उनको पॉजिटिव चीजें बता सकते हैं जिससे कि वो और भी स्टेप इन करें अपने गेम में। देखिए, ऐसे एडवांटेज तो कुछ नहीं है, बस हाँ ये है कि जो हम अभी तक जीतते हुए आ रहे हैं उनके अगेंस्ट जितने भी चाहे एशिया कप खेले हों या जो भी मैचेस खेले हों, हम हमेशा एक स्टेप अहेड रहते हैं उनसे। और बस यही रहता है कि जितना ज़्यादा हम एज अ टीम अच्छा गेम, अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं

0: अगेंस्ट उतना ही चाहते हैं हम लोग। बिल्कुल, देखिए हमारी टीम भी अच्छी है और उनके बॉलर्स भी अच्छे हैं, हमें भी पता है, लेकिन हमारे पास जो जितने अच्छे स्ट्रेंथ हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहेंगे, हम उसी पर फोकस कर रहे हैं।
1: दूसरी ओर पाकिस्तान के स्पिन विभाग में सादिया इकबाल, तुबा हसन और नशरा संधू पर नजर रहेगी। थाईलैंड के खिलाफ इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान के 8 में से 6 विकेट हासिल किए थे। खास तौर पर नशरा संधू का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। भारत के खिलाफ 7 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वो 6 विकेट ले चुकी हैं और उनकी इकोनमी 5.47 की रही है। स्मृति मंधाना ने नशरा संधू के खिलाफ 32 गेंदों में 30 रन बनाए हैं और 2 बार अपना विकेट गवाया है। वही हरमनप्रीत कौर ने उनके खिलाफ 34 गेंदों में 26 रन बनाए हैं और 1 बार आउट भी हुई है। यानी भारत के शीर्ष बल्लेबाजों और पाकिस्तान की इस अनुभवी स्पिनर के बीच मुकाबला भी मैच की दिशा तय कर सकता है।
2: अब बात दुबई की परिस्थितियों की। यहाँ बल्लेबाजों को शुरुआत में पिच की गति और उछाल को समझने में थोड़ा समय लगता है। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में 6 मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीते हैं। सिर्फ श्रीलंका ने यूएई के खिलाफ 78 रन का बचाव करते हुए पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की जीत दर्ज की। यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें शुरुआत में तेजी से रन बनाती हैं, लेकिन पारी आगे बढ़ने के साथ रन बनाना मुश्किल होता जाता है। अब तक भारत ही एकमात्र टीम है जिसने 150 से ज्यादा रन का स्कोर बनाया है।
1: दुबई की परिस्थितियों में स्पिन गेंदबाजों को भी खास मदद मिल रही है। टूर्नामेंट में अब तक स्पिनरों ने 71 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनमी 5.1 रही है, जबकि तेज गेंदबाजों ने 31 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनमी 6.18 रही है। ऐसे में टॉस, पावर प्ले की बल्लेबाजी और बीच के ओवरों में स्पिन के खिलाफ रन बनाने की क्षमता इस मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकती है।
2: भारत के पास जीत की लय, बेहतर रिकॉर्ड और मजबूत स्पिन आक्रमण है। पाकिस्तान के लिए चुनौती बड़ी जरूर है, लेकिन ऐसे मुकाबलों में आंकड़े हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। मैदान पर उस दिन कौन दबाव को बेहतर तरीके से संभालता है, कौन मौकों का फायदा उठाता है और किसकी रणनीति बेहतर साबित होती है, यही तय करेगा कि दुबई में बाजी किसके हाथ आती है।
1: भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की बात तो हो गई, लेकिन एशिया कप में बाकी टीमों के बीच चल रहे सेमीफाइनल की जंग भी कम दिलचस्प नहीं है। इसी कड़ी में कल यूएई और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला खेला गया, जहां यूएई ने शानदार गेंदबाजी और सदी हुई बल्लेबाजी के दम पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मेजबान टीम ने सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। यूएई ने टॉस जीतकर इंडोनेशिया को पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा और शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बना ली। पारी की पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर इंडोनेशिया को मुश्किल में डाल दिया। इसके बाद कप्तान ईशा ओजा ने भी गेंद से असर दिखाया। इंडोनेशिया की कप्तान नीपुतु आयुनंदा ने 52 गेंदों में 39 रन की पारी खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की। उन्होंने 4 चौके और 1 छक्के लगाए, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा साथ नहीं मिल सका। सुरक्षा ने 3 विकेट जबकि ईशा ओजा और हीना हॉटचंदानी ने 2-2 विकेट हासिल किए। वैष्णवी महेश ने भी 2 विकेट लेकर इंडोनेशिया की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई। पूरी टीम 19.4 ओवर में 73 रन पर ऑल आउट हो गई। यूएई के सामने 74 रन का लक्ष्य था। रनचेज में तीर्था सतीश 11 रन बनाकर 5वें ओवर में आउट हुई, लेकिन इसके बाद कप्तान ईशा ओजा और नीथा राजित ने पारी को संभाल लिया। दोनों ने 45 रन की साझेदारी की। ईशा ने 29 गेंदों में 30 रन बनाए, जबकि रिनीथा ने 24 गेंदों पर 22 रन जोड़े। एक समय यूएई का स्कोर 62 रन पर 1 विकेट था, लेकिन 6 रन के भीतर 3 विकेट गिरने से इंडोनेशिया को वापसी की उम्मीद जरूर जगी। हालांकि लक्ष्य छोटा था और यूएई ने दबाव को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। टीम ने 11.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 74 रन बना लिए। इस दौरान उनके पास 41 गेंदें बाकी थीं। यूएई की इस जीत ने उसे 2 अंक दिलाए और सेमीफाइनल की दौड़ को और दिलचस्प बना दिया। वहीं इंडोनेशिया के लिए यह टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला रहा और टीम अपने 3 मैच हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। अब यूएई के लिए अगली चुनौती 8 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगी। सेमीफाइनल की उम्मीदों को हकीकत में बदलने के लिए उसे यह मुकाबला जीतना होगा और साथ ही दूसरे मैचों के नतीजे भी उसके पक्ष में आने की जरूरत होगी। ऐसे में इंडोनेशिया के खिलाफ मिली यह जीत यूएई के अभियान के लिए बेहद अहम साबित हुई।

0: और चिराग शेट्टी ने शुक्रवार को डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंड्रस कारूप रासमुसेन को कड़े मुकाबले में हराकर चाइना मास्टर्स सुपर 750 के सेमीफाइनल में जगह बनाई। चौथी वरीय भारतीय जोड़ी ने 70 मिनट में 21-13, 16-21, 21-18 से जीत दर्ज की। सात्विक और चिराग ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहले गेम में 5-1 की बढ़त बनाई और लगातार शानदार विनर्स लगाकर 16-9 की बढ़त हासिल कर ली और आसानी से पहला गेम जीता। दूसरे गेम में डेनमार्क की जोड़ी ने 15-15 की बराबरी के बाद लगातार अंक जुटा मुकाबला निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। तीसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ी टक्कर हुई और स्कोर 17-17 तक बराबर रहा। निर्णायक क्षणों में भारतीय खिलाड़ियों ने संयम दिखाते हुए लगातार 3 अंक हासिल किए और 20-17 की बढ़त बना ली। इसके बाद एक अंक गंवाने के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा और मैच जीत लिया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना दुनिया की 29वें नंबर की मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन और तानवी कियोंग से होगा। इस बीच पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत का अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। 33 वर्षीय श्रीकांत को हांगकांग के दुनिया के 25वें नंबर के खिलाड़ी ली चेक यू ने 39 मिनट चले गेम में 21-16 से हराया। बात करें कुछ बड़े मुकाबलों की तो महिला एकल सेमीफाइनल में दुनिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त दक्षिण कोरिया की अनसे यंग ने तीसरी वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची को सीधे गेमों में 21-13, 21-15 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जहां दुनिया की 9वीं वरीयता प्राप्त जापान की टोमोका मियाजाकी ने दूसरी वरीयता प्राप्त चीन की वांग झी को कड़े मुकाबले में 21-19, 23-21 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस तरह महिला एकल का खिताबी मुकाबला अनसे यंग और मियाजाकी के बीच खेला जाएगा। अनसे यंग के लिए यह लगातार तीसरा चाइना मास्टर्स खिताबी जीतने का मौका होगा, जबकि मियाजाकी पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। वहीं पुरुष एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जहां हांगकांग के खिलाड़ी ली चेक यू ने दुनिया के दूसरे वरीयता प्राप्त फ्रांस के क्रिस्टो पपोव को 21-15, 21-19 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है।
1: श्रोताओं, अब चलते हैं लंदन और बात करते हैं PSA स्क्वॉश टूर के लंदन स्क्वॉश क्लासिक की, जहां भारत की युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह का शानदार सफर क्वार्टर फाइनल में जाकर थम गया। 18 वर्षीय अनाहत सिंह, जो इस समय वर्ल्ड नंबर 20 हैं, उनका क्वार्टर फाइनल में सामना मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 5 शिवसांगरी सुब्रमण्यम से हुआ। तीसरी वरीयता प्राप्त शिवसांगरी ने मुकाबले की शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा और अनाहत को सीधे गेमों में 11-4, 11-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। यह मुकाबला महज 17 मिनट में समाप्त हो गया। अनाहत के लिए यहां तक पहुंचना भी एक मजबूत प्रदर्शन रहा। क्वार्टर फाइनल से पहले उन्होंने बेल्जियम की वर्ल्ड नंबर 11 नेले गिलेस को 3 गेम के रोमांचक मुकाबले में हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई थी, लेकिन शिवसांगरी के खिलाफ अनाहत अपनी पिछली लय को कायम नहीं रख सके। मलेशियन खिलाड़ी ने शुरुआत से ही खेल की गति पर नियंत्रण रखा और दोनों गेम 11-4 के समान स्कोर से अपने नाम कर लिए। वहीं शिवसांगरी सुब्रमण्यम के लिए यह जीत उन्हें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक ले गई है। अब उनका सामना दूसरी वरीयता प्राप्त और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अमीना ओरफी से होगा, यानी महिला वर्ग में एक और वर्ल्ड नंबर 1 हानिया एल हमामी और इंग्लैंड की नंबर 1 जॉर्जिया केनेडी आमने सामने होंगी, तो दूसरी सेमीफाइनल में शिवसांगरी और अमीना ओरफी की टक्कर होगी। क्वार्टर फाइनल्स में इंग्लैंड की जॉर्जिना केनेडी ने चौथी वरीयता प्राप्त सातोमी वातानाबे को 12-10, 11-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं वर्ल्ड नंबर 1 हानिया एल हमामी को अमेरिका की अमांडा सोबी ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन हानिया ने 13-11, 7-11, 11-6 से मुकाबला जीतकर अंतिम 4 में जगह बना ली। मेंस इवेंट की बात करें तो इंग्लैंड के नंबर 1 मारवान एल शोरबागी ने इजिप्ट के करीम एल टोर्की को एक रोमांचक मुकाबले में हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना दूसरी वरीयता प्राप्त विक्टर क्राउन से होगा। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन पॉल कॉल भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्हें अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोहम्मद एल शोरबागी के रिटायर होने का फायदा मिला। मोहम्मद ने दूसरे गेम के दौरान चोट के कारण मैच छोड़ दिया।

Spotlight. This is Akashvani. In the program,

0: हेलो ग्राम संसार,
1: हेलो शशि भैया, नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं गांव चौधरी बात कर रहा, जो अग्रवाल शिवपाल
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: खदाना बड़े अच्छे कलाकार है जी, उनको सुना।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार,
1: हाँ जी, हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
1: महिपाल अवाना बटोल से जी।
0: किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज के कलाकार है शिवपाल खदाना,
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: नाम है जी। और भी
0: हाँ बोल दीजिए।
1: डॉक्टर विनोद कुमार, अमित अंकुर, ग्राम बाटो, जिला सहारनपुर।
0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई राम राम।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: चंदर सोलंकी, गांव करकोरा, महाराजपुर, जिला बुलंदशहर से बोल रहे हैं जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज सुना चाहेंगे जी ऋषिपाल खटाना को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: नाम बोलूंगा जी, लकी संजना, अंशिका टिंकल, कन्नू पिराची, वीर सोलंकी, पिताजी श्री मेघराज सिंह सोलंकी, माताजी श्रीमती निर्मला देवी, गांव करकोरा से गजेंद्र प्रधान जी, श्याम चौहान, सतवीर सिंह बैद जी।
0: हेलो ग्राम संसार,
2: हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
2: राजेंद्र जाटव, राबीपुर मानकी पोस्ट, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज के कलाकार है ऋषिपाल खदाना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: कुछ नाम है जी, महेंद्र, शारदा, राम किशोर, शीला, सचिन, शिवम, अनुष्का, मानसी, और ये पूरे आबिद उलकाम की फरमाइश होगी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार, हिसार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ। शशि जी,
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ऋषि पाल खदाना को सुनना चाहूंगा।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ये ऋषिपाल खदाना जी को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
4: जयपाल सिंह अध्यक्ष, मास्टर ब्रह्म सिंह, जगदीश मोटा बादलपुर, मास्टर कुंदन सिंह, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर और आरव भाटी।
0: हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं जगदीश सिंह डालिया बोल रहा हूँ जी।

0: नरसान जिला भिवानी जी।
1: जगदीश भाई आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
0: ऋषिपाल खजाना सुना देना जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
0: बच्चों के भी नाम है जी, अजवीर सिंधालिया, सतीश सिंधालिया, ऋतिक सिंधालिया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये रागनी। किस्सा रहेगा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731 और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।
1: हाँ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्राम संसार, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉपआउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉपआउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
3: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में

0: यूनिवर्सिटी में रहा था, नहीं पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। यह व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉ. सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम CSS की CSS शील्ड पहल के शुभारंभ करते हुए कहा कि यह पहल कार्मिक मंत्रालय के इस व्यापक प्रयास के अनुरूप है, जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है, जबकि लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जोड़ी ने पहला गेम जीत लिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Lalima Aneja Dang. President Draupadi Murmu today said that a Vikasit Bharat will only be possible with quality education. Addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers' Day, the President said that a society that respects their teachers is a progressive society in right terms. She asserted that education is the most effective means of realizing the ideal of equality of opportunity enshrined in our constitution. She said that the achievement of negligible primary school dropout rate has been made possible through the efforts of teachers. The President underlined that many students come from economically disadvantaged families who are first-generation learners or who transition from ordinary village schools to large city schools. She said some are naturally shy, some possess immense talent but lack self-confidence, and some are children with special needs. She noted that it is the special responsibility of teachers to instill confidence in them and uplift all such students who, for any reason, feel a sense of inadequacy.
3: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
2: Finance Minister Nirmala Sitharaman has said India is increasingly confident in studying and reclaiming its own heritage from inscriptions.

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट।
1: नमस्कार, मैं हूँ निखिल कुमार। श्रोताओं, आज 5 सितंबर है यानी शिक्षक दिवस। आज इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के शिक्षकों को सम्मानित किया। इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कुल 82 शिक्षकों और शिक्षाविदों का चयन किया गया था। इनमें 48 स्कूली शिक्षक, 21 उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षक तथा 13 कौशल प्रशिक्षक शामिल हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक की भूमिका को व्यापक संदर्भ में रखने पर जोर दिया। राष्ट्रपति स्वयं भी शिक्षिका रह चुकी हैं और उन्होंने अपने शिक्षक जीवन की स्मृतियों को भी साझा किया। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति को।
2: देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है, वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है। मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है। उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ। साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं, जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था। मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है। उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां

0: मानती हूँ। मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है।
1: श्रोताओं, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास की यात्रा में कई ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने शिक्षा को समाज में बदलाव का माध्यम बनाया। इनमें सावित्री बाई फुले का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसे समय में लड़कियों और वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए काम किया जब महिलाओं की शिक्षा को लेकर समाज में अनेक बाधाएं थीं। इसी तरह रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा को केवल किताबों और कक्षा की सीमाओं तक नहीं देखा। शांति निकेतन के माध्यम से उन्होंने प्रकृति, कला, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को शिक्षा का हिस्सा बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संबोधन में शिक्षा के एक क्षेत्र में योगदान देने वाले ऐसे महान व्यक्तित्वों को याद किया। आइए सुनते हैं उनका ये महत्वपूर्ण संदेश।
0: सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन कांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की मूर्ति को मैं सादर नमन करती हूँ। 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उदात्त विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ।
1: श्रोताओं, भारत अब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ दुनिया की स्किल कैपिटल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा, कौशल और नवाचार को एक दूसरे से जोड़ना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को भविष्य का निर्माता बताते हुए भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने के लक्ष्य से शिक्षा को जोड़ने पर जोर दिया।
0: ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियाँ और उपलब्धियाँ उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियों पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
1: श्रोताओं, बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्ष उसके सीखने, व्यवहार और व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। राष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान और कौशल जीवन में कभी भी हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन बचपन में अच्छे आचरण तथा मूल्यों को विकसित करना अधिक प्रभावी होता है। प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोर से सीखने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्य निष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रमों भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं।
1: श्रोताओं, प्राथमिक शिक्षा मजबूत होने का अर्थ केवल ये नहीं कि ज्यादा बच्चे स्कूल पहुँचें, इसका मतलब ये भी है कि अलग अलग सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से आने वाले बच्चों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा को संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को लागू करने का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए शिक्षकों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।
0: संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींच कर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। काम सब देशवासी विकसित भारत के।

0: निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत की झलकियां सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। प्रधानमंत्री ने बातचीत में कहा कि शिक्षकों को केवल बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनके व्यवहार और रोजमर्रा के जीवन में होने वाले बदलावों को भी समझना चाहिए। बदलती पारिवारिक संरचना के बीच बच्चों के साथ शिक्षक का संवाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों में नशे की समस्या को लेकर भी शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। उनका कहना था कि बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे तो शिक्षक को उसके कारणों को समझने और बच्चों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। श्रोताओं, आज एक और चुनौती बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम की है। मोबाइल और डिजिटल उपकरण शिक्षा में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल बच्चों के शारीरिक और रचनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से अभिभावकों के साथ इस विषय पर बातचीत करने और बच्चों को खेल, शारीरिक गतिविधियों तथा रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षकों की बातचीत के कुछ अंश।
2: परमात्मा ने हरेक को कोई न कोई ताकत दी होती है, उसकी टैलेंट पहचानने के लिए कोई कोशिश करते हैं आप टीचर लोग?
3: बहुत सारी कोशिश करते हैं, इनफैक्ट वही हमारी कोशिश होती है। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे विद्यालय में या हमारे कक्षा में जितने बच्चे हैं उन सभी में अलग अलग खूबी है, अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग चैलेंज है। और एक शिक्षक के नाते मैं उन सारे टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करती हूँ और मैंने किया है।
4: आपने एकलव्य खोल करके एक स्कूल नहीं बनाया, बल्कि लगभग में मेरे हिसाब से उतने गुने परिवार को जोड़ा। जो परिवार फर्स्ट जनरेशन लर्नर है आज के दिन में, वो कभी स्कूल नहीं देखे, उनके बच्चे आज हमारे यहाँ से IIT का सपना देख रहे हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हैं।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता है। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों की रचना को आदत बनानी चाहिए। अब जैसे ड्रग्स का मामला, अभी कुछ बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, क्या माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई किसी बच्चे में बदलाव तो नहीं आ रहा है? मैं बात तो आप लोगों से कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकता है। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
1: श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की सूची पर नजर डालें तो अलग अलग हिस्सों से आने वाले शिक्षकों की कहानियों में एक समानता दिखाई देती है। उन्होंने अपनी कक्षा की जरूरत के हिसाब से पढ़ाने के नए नए तरीके तलाशे हैं। आइए पुरस्कार विजेताओं के योगदान को विस्तार से समझते हैं।
5: राजस्थान के सरकारी स्कूल के शिक्षक डॉक्टर दिव्येंदु सेन ने ग्रामीण विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ते हुए उनके क्षुद्र ग्रहों की पहचान और खोज से जुड़े कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया। उन्होंने कम लागत वाले तकनीकी समाधान भी विकसित किए, जिनमें AI आधारित जीव विज्ञान शिक्षण मॉडल, डिजिटल बायोलॉजी लैब और पेड़ों के बारे में QR कोड आधारित सीखने की व्यवस्था शामिल है। हरियाणा के अनिल कौशिक ने गणित को आसान और रोचक बनाने के लिए आधुनिक मैथ्स लैब तैयार की। इसमें 40 से अधिक शिक्षण मॉडल और डिजिटल गणित प्रयोगशाला भी शामिल है। उन्होंने वैदिक गणित पर पाठ्यपुस्तकों में योगदान दिया और दीक्षा पोर्टल के लिए भी शिक्षण मॉड्यूल तैयार किए। इनके योगदान के लिए इन्हें मैथ विजार्ड के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने गणित और विज्ञान को रोजमर्रा की चीजों से जोड़ने का प्रयास किया। वे मूंगफली के जरिए बीजगणित और पतंगों के माध्यम से ज्यामिति जैसे विषयों को समझाती हैं। उनका प्रश्नों से विज्ञान मॉडल रटने की जगह बच्चों को सवाल पूछने और खुद उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करता है। ओडिशा के पदाराज उमाकांत नायक ने विद्यार्थियों को केवल पढ़ाने के बजाय उन्हें चीजें बनाने के लिए प्रेरित किया।

0: उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने 50 से अधिक प्रोटोटाइप तैयार किए, जिनमें कम लागत वाली स्वचालित प्लेट धोने की मशीन भी शामिल है, जिसे भारत सरकार से पेटेंट मिला। शिक्षा का असर केवल बच्चों तक सीमित नहीं रहता, इसका उदाहरण असम के शिक्षक राजेश बरदोलोई का काम भी है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को घर जाकर अपनी उन माताओं को पढ़ाने का काम दिया जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। इसमें बुनियादी साक्षरता के साथ स्मार्टफोन और यूपीआई के इस्तेमाल जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को भी शामिल किया गया, यानी कक्षा की शिक्षा परिवार और समुदाय तक पहुंची। महाराष्ट्र की डॉक्टर कविता नरसिंह राव गिट्टे ने प्रवासी गन्ना मजदूरों के बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए लंबे समय तक काम किया। वहीं खेलों के क्षेत्र में भी उन्होंने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया। गोवा के महादेव हनुमंत शिंदे का काम विशेष जरूरतों वाले बच्चों और खेलों के बीच संबंध का उदाहरण है। उन्होंने विशेष ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया और भारतीय फ्लोर हॉकी टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की। लद्दाख के मोहम्मद मुस्तफा कुमाल ने भी सीमित साधनों के बीच शिक्षा को अनुभव आधारित बनाने का प्रयास किया। उनके काम में छोड़े गए सैन्य बंकरों को विज्ञान प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना और कक्षा को मॉक पार्लियामेंट में बदलकर विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना शामिल है।
1: समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
2: श्रोताओं, शिक्षक हमारे जीवन में उन लोगों में शामिल होते हैं जिनका प्रभाव अक्सर कक्षा खत्म होने के बाद भी बना रहता है। कोई शिक्षक किसी बच्चे में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करता है, कोई उसे अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ता है, तो कोई मुश्किल परिस्थितियों के बीच उसे आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देता है। शिक्षक दिवस हमें ऐसे ही योगदानों को याद करने और शिक्षा के बदलते स्वरूप को समझने का अवसर देता है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने और तकनीकी सहयोग दिया अक्षत ममगाई ने। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289-09-40044।
4: सुर्खियों में

0: श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में।
1: नमस्ते। जवाब दे देते हैं नमस्ते का। नमस्ते। भारत के गौरव और अभिमान के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, श्री अजय श्रीराम, श्री रजत शर्मा जी, प्रोफेसर सिमरत कौर, प्रोफेसर मलिका कुमार और एसआरसीसी को एसआरसीसी बनाने वाले जो यहाँ सारे बैठे हैं और जो यहाँ नहीं भी बैठे हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं अपने युवा विद्यार्थियों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने एसआरसीसी में एडमिशन लिया। आपको अपने इस निर्णय पर हमेशा गर्व रहेगा। ये एसआरसीसी की उपलब्धि है और एसआरसीसी की ताकत भी है, उसके लिए भी एसआरसीसी का बहुत बहुत आभार। आज शिक्षक दिवस है, उसके लिए भी मैं सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि शिक्षक केवल पोस्ट से नहीं होता, पोस्ट के बिना भी शिक्षक शिक्षक

0: करता है, आप सभी को उसके लिए भी बहुत बहुत आभार।
1: आज शताब्दी स्मृति दिवस का कार्यक्रम है, तो ये अचीवमेंट्स को याद करने का भी दिन है और अगले कुछ दशकों की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने का भी दिन है। सबसे बड़ी प्रेरणा की और क्या बात हो सकती है, सबसे बड़ी प्रेरणा की और क्या बात हो सकती है कि स्वतंत्र भारत में जन्मे, स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री का आना हुआ है जिन्होंने रात दिन केवल भारत को जिया है और भारत के लिए जिया है, भारत को जिया और भारत के लिए जिया है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प और उसके लिए किए जाने वाला परिश्रम, संकल्प एक बात है, उसके लिए किए जाने वाला परिश्रम राही मासूम रजा की कुछ पंक्तियां याद दिलाता है जो मैं कहना चाहूंगा कि इस सफर में नींद ऐसी खो गई, इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थककर सो गई, हम न सोए रात थककर सो गई। आज के इस चुनौतियों से भरे विश्व में जहां हर रोज एक नया संकट है, हर रोज एक नई चुनौती है, मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि क्या आपने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं, देश के भविष्य के लिए निडरता से निर्णय लेने वाले, देश के लिए जीने वाले, इतनी मेहनत करने वाले, विकसित और सुरक्षित भारत के लिए दिन रात एक करने वाले, भारत के दर्द को और मर्म को समझने वाले, क्या आपने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं? ये युवा भी हैं, ये युवा भी हैं और युवाओं की तरह सोचते भी हैं। मेरे जैसे न जाने कितने भारतवासी जब कभी परेशान होते हैं, तो हम सोचते हैं तो प्रधानमंत्री जी की लगन, संघर्ष और परिश्रम से हम प्रेरणा लेते हैं कि जब इतना ज्यादा काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं, हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है, तो एक शक्ति का संचार हम सब में, भारत के लोगों में होता है। ये एक भारत के लिए, हमारे लिए बहुत ही शक्ति का पुंज है। तो फिर मैं वही बात पूछता हूं कि क्या ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं? एक और बात, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो ध्येय वाक्य है, निष्ठा धृति सत्यम, समर्पण दृढ़ता और सत्य, एक दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के नाते इन्होंने जो अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट किया, साकार कर दिखाया है और उसको जीते हैं, इसके लिए भी दिल्ली विश्वविद्यालय गर्व करता है। ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिलते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एसआरसीसी के 100 वर्ष में एसआरसीसी ने वो कर दिखाया जो संसार का हर इंस्टीट्यूशन करना चाहता है, जो सपना लेता है वो एसआरसीसी ने करके दिखाया। अगले 50 वर्ष में एसआरसीसी को विश्व में बहुत बड़ा बनना है। यह दिन ऐसा संकल्प लेने का भी दिन है कि हमको कैसे आगे जाना है, भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान बढ़ाना है एसआरसीसी को। ये इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, बिजनेस का इंस्टीट्यूशन है, तो देश आपसे ज्यादा अपेक्षा करता है। इसे स्टार्टअप्स का कैपिटल बनाने का संकल्प लेने का भी दिन है। वो दिन भी आए कि कल को कोई इंस्टीट्यूशन कहे कि यदि स्टार्टअप कल्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है तो एसआरसीसी को विजिट करो, एसआरसीसी में देखो, यहां सक्सेस स्टोरीज भरी पड़ी हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देश के हित में हमेशा अपना हित देखना, देश के हित में हमेशा अपना हित देखना, देश की चिंता करने का मन बनाए रखना, अपने देश में इतना सामर्थ्य है कि वे आपके हित की चिंता कर लेगा, उसकी चिंता करना। मैं एक बार पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एसआरसीसी के सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: थैंक यू सर। वी आर ऑनर्ड टू हैव विद अस श्री प्रहलाद जोशी जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इंस्पायर द यंग माइंड्स।

Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Dignitaries on the dais and off the dais. Because dais pe bhi dignitary hai, samne bhi main dekh raha hu, bahut dignitaries baithe hue hain. I think this is the speciality of the SRCC. All my dear students and everyone present here. It is a great honor for all of us to welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji today at Sri Rama College of Commerce. I think, as I have understood, Ajay ji, when Prime Minister came in 13, he was Chief Minister at that time. Today, as the Prime Minister of India, he has first time visited Sri Rama College of Commerce. फ्रेंड्स, आज शिक्षक दिवस भी है. इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं. आज एसआरसीसी का 100 साल पूरा हो रहा है इस बरस. किसी भी इंस्टीट्यूट को 100 साल तक चलाना और उसी रेपुटेशन के साथ चलाना, ये बहुत बड़ी बात है. इसके लिए बहुत लोग जो अलुमिनाज बैठे हैं और बाकी सब लोग इसके लिए त्याग और तपस्या किया है, उन सभी लोगों को इस लेवल पर लाने के लिए मैं सभी को शिक्षा मंत्री के नाते बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और उनको नमन करता हूं. जैसे रजत जी उल्लेख कर रहे थे, जस्टिस नारिमन, जस्टिस सिकरी, अरुण जेटली और स्वयं रजत शर्मा जी के सहित बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं. फ्रेंड्स, इन 1926 एसआरसी एस्टैब्लिश हुआ. आफ्टर दैट मीन्स आफ्टर 1926, आफ्टर 21 ईयर्स वी गॉट फ्रीडम. टुडे Prime Minister has given us call that in coming 21 years, Bharat should become Viksit Bharat and Atmanirbhar Bharat. Usme aapke zimmedari bhi bahut hai. Usi ke saath, aap jo students baithe hai, you are the beneficiary of Viksit Bharat. Ye bhi main aapko nambrata se yaad dilana chahta hoon. Isi vision ke saath, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए. मुझे इसलिए भी आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं, एसआरसीसी ने इसका इंप्लीमेंटेशन ठीक ठाक किया है, इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं. मैं हायर एजुकेशन में जो हुआ है वो भी मैं एक ही सेंटेंस में आपको बताना चाहता हूं. हायर एजुकेशन में टोटल इस बार 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स एडमिशन हुआ है. इन लास्ट 10 इयर्स इट हैज इंक्रीज्ड बाय 1 करोड़. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द 10 ऑलमोस्ट 12 इयर्स ऑफ श्री मोदी गवर्नमेंट. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस इकोसिस्टम and Prime Minister's direction and inspirational leadership, aaj Bharat third largest startup ecosystem hai. And I would like to only tell you, before 2016, when Startup India was launched, that mission was launched, less than 400 startups were there. Today more than 2,30,000 startups are there in India. They are from Delhi to Bengaluru to Tier 2 cities. हमारे जो बच्चे हैं और उसमें स्टार्टअप में है और एसआरसीसी का भी बहुत ही स्टूडेंट ये स्टार्टअप में है. आने वाले समय में भारत को, दुनिया को रिलायबल मैन्युफैक्चर

0: मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स की जरूरत है और हाई क्वालिटी सर्विसेज का भी जरूरत है, उसके लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसका भी जरूरत है और उसका रिक्वायरमेंट भी तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में देयर इज ऑलरेडी ए सिग्निफिकेंट गैप एज फार एज स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज कंसर्न। इंडिया के पास इस समय, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। तो ये अपॉर्चुनिटी क्यों है? बिकॉज इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट यंग पॉपुलेशन इज इन इंडिया, और उसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये यंग इंडिया को स्किल बनाने में और स्किलिंग इकोसिस्टम में और एजुकेशन सिस्टम में नयापन लाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया और स्किल एक्सपांशन के लिए बहुत कार्यक्रम किया है। इंडिया के इकोनॉमी भी आप देख सकते हैं, लास्ट क्वार्टर मीन्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2026 7.8% हुआ है। एंड जब दुनिया में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, और भारत द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड टुडे, दैट इज द एडवांटेज ऑफ इंडिया, दैट इज द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आज भारत में जो उपयोग होते हैं, 99% मोबाइल आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसी के साथ एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इसीलिए एजुकेशन, स्किलिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ को साथ देखना जरूरी है। उसी विजन के साथ प्रधानमंत्री जी हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो ग्लोबल स्किलिंग हब भी हमको बनना है, और इस दिशा में हमको काम करना है। फॉर दैट वी नीड एनर्जी। मैं आपको और एक आंकड़ा बता के मेरा वाणी को विराम देता हूं। व्हेन प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी टुक ओवर इन 2014, द टोटल जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वॉज 249 गीगावाट। आज टुडे 552 गीगावाट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग देश में बढ़ रहा है उसका वो भी एक कारण है। उसमें विद इन दैट 552, 302 इज थ्रू नॉन फॉसिल सोर्सेज एंड 165 गीगावाट इज थ्रू सोलार। मैं इस सोलार के बारे में एक सेंटेंस बताता हूं सिर्फ, और बाद में मेरे वाणी को विराम करता हूं। 2014 के बाद हमारे सोलार प्रोडक्शन और विंड प्रोडक्शन जो हुआ है, इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम हुआ है और पर्यावरण के भी पॉजिटिव परिणाम हुआ है पर्यावरण के ऊपर। बट मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, 2014 से पहले भी सूरज था, सूरज में तेजी भी था, लेकिन उस एसयूएन सन में प्रधानमंत्री जी ने शक्ति को देखा। ही हैज रिकॉग्नाइज दी एनर्जी इन दिस सन, एसयूएन सन। एंड इससे पहले भी जो थे, एट दैट टाइम इट वॉज ओनली 2.6 गीगावाट सोलार एनर्जी एंड वी रीच टू 165 गीगावाट। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी एसयूएन सन का शक्ति का रिकॉग्नाइज किया और वो शक्ति को फॉलो किया और देश को, जनता को दिया। पहले वाले थे जो थे वो एसओएन सन के पीछे पड़ा और सन स्ट्रोक हो गया, इसीलिए देश आगे बढ़ रहा है। आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, प्रधानमंत्री जी आए हैं, हम सबको एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिलने वाला है। फिर एक बार मैं आपको और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेटिंग एंड एनर्जाइजिंग वर्ड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी अराइव एट द हिस्टोरिक मोमेंट एवरीवन हैज बीन वेटिंग फॉर। 13 इयर्स बैक आई वाज द एंकर, इट वाज माय प्रिविलेज, एंड टुडे अगेन एन ऑनर फॉर मी टू रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी।

0: leader par excellence, an inspiration for billion dreams, to please deliver the SRCC centenary address. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वचन के लिए हमारा विनम्र निवेदन.
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, डीयू के वीसी योगेश सिंह जी, एसआरसीसी के प्रिंसिपल सिमरित कौर जी, अजय जी, मल्लिका जी, रजत जी, एसआरसीसी के जुड़े हुए सभी साथी, फैकल्टी, स्टाफ, एसआरसीसी अलमनाई और मेरे युवा साथियों, मैं छठा खिलाड़ी हूं.

आज का ये अवसर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत ऐतिहासिक है। ये देश के शिक्षा जगत के लिए भी उतना ही अहम है। यहां एसआरसीसी का हिस्सा रही अनेक पीढ़ियां एक साथ जुटी हैं। मैं आप सभी को एसआरसीसी के इस शताब्दी समारोह के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसके संस्थापक सर श्री राम जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनके विजन को नमन करता हूं। साथियों, जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा, और जो निकले वो गढ़े हुए निकले। इस कॉलेज की यात्रा दरियागंज की वहां एक छोटे से स्थान से शुरू हुई थी, और आज वही छोटा सा कॉलेज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। एक ऐसा विशाल वृक्ष जिसने कई पीढ़ियों को छांव भी दी है और अपनी शीतलता से समृद्ध भी किया है। आज भी डीयू में जब कोई पूछता है कि कौन सा कॉलेज, तो एसआरसीसी कहना ही

साथियों, एसआरसीसी के एल्यूमनाई भी बहुत स्पेशल रहे। अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो यहां के एल्यूमनाई ओजी है।

जिन्होंने एसआरसीसी का नाम दुनिया भर में पहुंचाया, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई और रजत जी ने बड़ी लंबी सूची बताई थी और इनमें से कुछ के साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला है। हमारे अरुण जेटली जी यहीं पढ़े थे, और मैं कह सकता हूं कि शायद हमारी कोई मुलाकात ऐसी नहीं होती थी कोई एसआरसीसी की कोई घटना न सुनाते हो। और कभी कभी मैं तंग आ जाता था कि एक ही घटना बार बार सुनाते थे। अभी मेरी टीम में भाई संजीव सन्याल भी यहीं से पड़े हुए हैं, बाकी भी काफी साथी हैं यहां मेरे। और ऐसा नहीं है कि यहां से सिर्फ अर्थ जगत के ही लोग निकले, इतने ही आर्टिस्ट से लेकर नेता, वकील, जस्टिस सब यहां से निकले हैं। यानी एसआरसीसी के लोगों ने हर क्षेत्र में अपनी धूम मचाई है। धुरंधर ना हो लेकिन धूम तो मचाई है। साथियों, बीते कुछ दिनों से इस कार्यक्रम की बहुत चर्चा चल रही है, खासतौर पर लोग 2013 के मेरे संबोधन को याद कर रहे हैं। लोगों ने उसको फिर से सुना है, फिर से पढ़ा है। संभव है इस नई पीढ़ी के लोगों ने भी उसको रिविजिट किया होगा। उस स्पीच के जो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि वेव बन गई थी, एक लहर सी चल पड़ी थी, और आज भी 13-14 साल बाद भी उस सभा का और उस संबोधन का प्रभाव बरकरार है। साथियों, तब आपकी जगह आपके सीनियर बैठे थे और मैं तब सीएम तो था, लेकिन मैं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का एक सदस्य भी था, और संभवतः तब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं सबकी केंद्र सरकार पर लंबे चौड़े अटैक करूंगा, आरोपों की झड़ी लगा दूंगा। लेकिन साथियों, विपक्ष में होने के बाद भी तत्कालीन सरकार का आलोचक होने के बावजूद मैंने इस मंच का वो उपयोग नहीं किया था। मैंने एक विजन रखा।

सकारात्मक बातें कही। मैंने तब जो कुछ भी कहा वो मेरा कन्विक्शन था। मैं उन बातों को, उन सपनों को हमेशा से जीता आया, उस रास्ते पर ही चलता रहा। देश के लिए जी जान से जुटना, देश के लिए जीने का जज्बा जो मेरे भीतर का भाव विश्व है, वो उस दिन 2013 में इसी मंच से मेरा वो भाव विश्व शब्दों की माला में एक एक करके प्रकट होता चला गया था। और मैं देर तक बोला था, फिर मैंने स्टूडेंट से पूछा कि मैं कंटिन्यू करूं, तो उन्होंने जोर से कहा हाँ कंटिन्यू कीजिए। साथियों, मैंने उस दिन पानी के ग्लास का एक उदाहरण दिया था और देश में उसकी खूब चर्चा भी हुई थी। मैंने बताया था कि पानी से आधे भरे ग्लास को देखने के तीन नजरिए क्या होते हैं। एक, जिनको ग्लास पानी से आधा भरा दिखता है। दूसरा, जिनको ग्लास आधा खाली दिखता है। और तीसरा, जिनको ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। आधा पानी और आधा हवा से भरा। साथियों, ये वो समय था जब देश निराशा के दल दल में धंसा हुआ था। मैंने तब भी कहा था कि मैं ग्लास को आधा नहीं देखता, अधूरा नहीं देखता, मैं ग्लास को पूरा भरा हुआ देखता हूं। आधा पानी से, आधा हवा से। और उस समय आप सब तो स्कूल में रहे होंगे, लेकिन आज इंटरनेट पर जाकर के 2023 और 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी, अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था। जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या, अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट

ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिसिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था। साथियों, एक वो दिन था जब हर मोर्चे पर देश में स्ट्रगल ही स्ट्रगल था, और एक आज का दिन है। आज आतंकवाद फैलाने वाले पस्त पड़े हैं, पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो भारत की सेनाएं घर में घुसकर मारती है। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक शांति बड़ी है, माओवादी आतंक नक्सलवाद की कमर तोड़ दी गई है। जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है, और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं, उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे हैं।

लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है, यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। बावजूद इसके जिन लोगों के लिए साल 2013 में ग्लास आधा खाली था, उनकी सोच आज भी वैसी ही है। उनके लिए ग्लास हमेशा आधा खाली रहेगा। मैं ग्लास की बात करता हूं, और कुछ खाली रहने की बात नहीं कर रहा हूं। साथियों, 2013 में यहां एसआरसीसी में बात करते हुए मैंने P2G2 यानी प्रो पीपल गुड गवर्नेंस की भी चर्चा की थी, जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई हैं। उनका एक स्टाइल था, जब आग लगे तभी नींद से जागो, जब सूखा पड़े तब जाकर कुआं खोदो। मैंने इसी अप्रोच को बदलने की बात कही थी और 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ये करके दिखाया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं साथियों। हाल में ही जनधन योजना को 12 साल पूरे हुए हैं। आज आप फिनटेक के अलग ही दौर में जी रहे हैं, लेकिन 2013 के वो दिन भी थे जब गांव या छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी कई पापड़ बेलने पड़ते थे। उस समय हमारी आबादी 125 करोड़ के पार थी, लेकिन मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे, और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे, महिलाएं थी, माइग्रेंट लेबलर थे, स्टूडेंट्स थे। इसलिए हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है। साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे। दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहें। यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन

ये मोदी है माय बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है इसलिए मैं उस दिन कही बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। साथियों, 2013 के उसी कार्यक्रम में जब मैंने कहा कि हमें मेड इन इंडिया पर काम करना है, तो पुराने उस समय के इकोसिस्टम के लोगों को ये समझ नहीं आया था। उनको लगता था कि निराशा के उस दौर में मेड इन इंडिया संभव ही नहीं होगा। और उस सोच में पले बड़े लोग आज भी मेड इन इंडिया का मजाक करते हैं। लेकिन साथियों, आज आप मेक इन इंडिया की ब्रांड वैल्यू देख रहे हैं। आपसे मैं एक उदाहरण के साथ बात बताना चाहता हूं। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है। दुनिया के बड़े से बड़े फोन ब्रांड आज भारत को अपना बेस बना रहे हैं। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। 2014 में भारत अपने ज्यादातर मोबाइल फोन इंपोर्ट करता था। आज भारत 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल एक्सपोर्ट करता है। साथियों, मैं छोटे और आसान लक्ष्य लेकर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं देश के लिए बड़े लक्ष्य रखता हूं और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देता हूं। आप डिफेंस सेक्टर देखिए, पहले भारत की सेनाओं के लिए ज्यादातर चीजें बाहर से खरीदी जाती थी। मैंने आते ही डिफेंस वालों को कहा नेगेटिव लिस्ट बनाइए। पहले उन्होंने 500 नेगेटिव लिस्ट बनाई, बोले ये हम बाहर से नहीं लाएंगे। फिर 1000 बताई, फिर 3000 बनाई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कई बार छोटे से किसी इक्विपमेंट के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ता था। हमने देश की सेनाओं के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, चीजों की लिस्ट बनाई, फिर भारतीय कंपनियों को कहा कि ये सब बनाओ। और आज आप देखिए, देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और ये अचीवमेंट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज देश में एक वाइब्रेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन रहा है। साथियों, मुझे देश पर भरोसा है, देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, आप सब युवाओं पर मेरा भरोसा है। और इसी भरोसे के आधार पर मैं विकसित भारत की बात भी कहता हूं। मुझे विश्वास है।

हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा। मेरे नौजवान दोस्तों, भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा और वो दिन भी आप देख के गए। जब भारत एक दिन ऐसे ओलंपिक्स का आयोजन करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और ये केवल बातें नहीं है, ये हमारे संकल्प है। और इन संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए देश में लगातार काम हो रहा है। साथियों, अभी तो आपकी जिंदगी एसआरसीसी मोड में चल रही है। को-ऑप में चाय हो, या कोल्ड कॉफी पर होने वाली डिस्कशन हो, एग्जाम में लास्ट मिनट नोट्स और प्रिंट आउट के लिए भागदौड़ करना, या फिर क्रॉसरोड्स और बिजनेस फ्रंट के ऊपर भी कई मेहनत। आप सब ने यहां के हर मोमेंट को अपने जीवन की एक मेमोरी बनाया है। लेकिन इस कैंपस के बाहर एक नई दुनिया आपको मिलेगी। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं। दूसरी प्रजाति उन लोगों की है जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं। उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना। इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है। इसकी क्या जरूरत है, ये हर फूफा पर एक परमानेंट डायलॉग होता है। जब हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे थे तो फूफा जी ने कमर कस ली, कहा इसकी जरूरत ही क्या है। हमने हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू किया तो फूफा जी फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हम यूपीआई लेकर आए तो यही फूफा लोगों को कहते थे वाई यूपीआई, यूपीआई की जरूरत ही क्या है। हमने चिप बनाने की बात की तो फिर कहा गया जरूरत ही क्या है। हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई तो ये फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हमने देश के लिए मरने मिटने वाले सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले हमारे वीर सेना नायकों का मेमोरियल बनाया, फूफा भी मैदान में आ गए, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया। जो देश के लिए जरूरी है

वो भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आज भारत एक अलग मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। जो काम पहले दशकों में होता था, अब वो कुछ वर्षों में ही हो रहा है। मैं पूरे फैक्ट के साथ एक और उदाहरण दूंगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी, आपकी कॉलेज 1926 में शुरू हुई। इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी, 1925 में चली थी ये ट्रेन। इसके बाद 2014 तक, यानी 90 साल में सिर्फ 30% से भी कम काम हुआ। 30% से भी कम रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया था। हमने सिर्फ 12 साल में रेलवे लाइनों का करीब करीब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करके दिखा दिया। साथियों, भारत की नीति निर्णयों में आई ये गति दुनिया के बाकी देश भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए वो भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। बीते दशक में करीब 40 देशों के साथ व्यापार समझौते हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। इसे लेदर हो, टेक्सटाइल हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, हमारा प्रोसेस्ड फूड हो, श्रिम्प हो, ऐसी हर चीज के लिए नए नए बाजार खुल रहे हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब नए बाजार खुलते हैं, भारत के गुड्स और सर्विसेज के लिए टैरिफ कम होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। ये भारत के नौजवानों के लिए अवसरों का नया आसमान बन रहा है। साथियों, आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित है, लेकिन ये देखकर कुछ लोगों की छटपटाहट बढ़ रही है, बौखलाहट बढ़ रही है। अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा। ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था, होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं, होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है। ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल। ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है, और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे। और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है। साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई, कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या

है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था। मोदी ने क्या नया किया? लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? मैं आपको फिर एक बार पुराने दिनों में ले जाना चाहता हूं। याद कीजिए, आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे, 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी।

2008 में बैंकों का संकट आया था तो तब की सरकार ने 2000 तक उस संकट के पीछे छुपने की कोशिश की थी, हाथ तक लगाने की हिम्मत नहीं की। भारत का पूरा बैंकिंग सिस्टम तबाह होने की कगार पर पहुंचा दिया गया था। 2008 में ही मुंबई में भयंकर आतंकी हमला हुआ था तो तब की सरकार पर बाहर से दबाव पड़ा और उसने पाकिस्तान को सबक सिखाने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। साथियों, पिछले 12 वर्षों में तो देश में कई सारी आपदाएं आई, कितने बड़े बड़े साइक्लोन हमने झेले हैं, लेकिन देश ने बहुत मजबूती से उनका सामना किया। पिछले 6 वर्षों में तो बहुत बड़े संकट आए, पहले कोरोना जैसी महामारी आई जिसने पूरी दुनिया को ठप कर दिया, फिर रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, उसके बाद ट्रेड को, सप्लाई चेन को ही वेपनाइज करने का दौर शुरू हो गया, फिर वेस्ट एशिया का ये संकट आया। हर बार ये कहा गया कि अब तो भारत नहीं बचेगा, और जो मेरे ज्यादा ही प्रशंसक है वो ये सोचकर खुश थे कि अब तो मोदी फंसा, अब तो मोदी गिरा, अब तो उसे कुचल ही देंगे। लेकिन मेरे देश के लोगों के आशीर्वाद में इतना दम है, इतना दम है कि भारत का बुरा चाहने वालों की हर हसरत धरी की धरी रह जा रही है। दोस्तों, अब 21वीं सदी में नए अवसरों की दुनिया हमारे सामने है। मुझे खुशी है कि आप एम्बिशियस हैं, क्योंकि एम्बिशन किसी टेक्स्ट बुक से नहीं सिखाई जा सकती। एम्बिशंस उस माहौल से आती हैं जो आपके बड़े सपने देखने के लिए आपको प्रेरित करती है। आज हमारा नौजवान साथी कहता है कि अपना कुछ काम करूंगा तो स्टार्टअप करूंगा, कंपनी बनाऊंगा तो यूनिकॉर्न बनाऊंगा, स्पेस और ड्रोन जैसे सेक्टर से जुड़ूंगा कुछ बड़ा करूंगा, कटिंग एज एआई सॉल्यूशन बनाऊंगा, खेती में इनोवेशन करूंगा। 13 साल पहले आपके सीनियर्स ऐसे सपने नहीं देख पाते थे, लेकिन आज आप ये सपने भी देख रहे हैं, क्योंकि आज के भारत में उन सपनों को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम भी बन गया है। साथियों, अब समय बड़े लक्ष्य बनाने और उन्हें प्राप्त करने का है। अभी मैंने लाल किले से कुछ बातें कही थी, मैं आपके बीच भी उन्हें दोहराना चाहूंगा। आप संकल्प लीजिए, भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती, हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती। हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।

साथियों, ये सब संभव है। इसके लिए आपके पास नेटवर्क भी है और नॉलेज भी है। साथियों, हमारी आपकी प्रेरणा एसआरसीसी का ये कॉलेज क्रेस्ट भी है। इसमें दो सुंदर प्रतीक है, एक है उगता हुआ सूरज और दूसरा है समंदर में आगे बढ़ता हुआ जहाज। सूरज जो दिशा दिखाता है और जहाज जो दिशा में आगे बढ़ता है। हमें ऐसे नए रास्ते पर चलना है जिसमें सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे वो हौसला हमारा हो, उड़ान हमारी हो, आसमान हमारा हो, तेज हवाओं से टकराए वो जज्बा हमारा हो, सपना हमारा हो, संकल्प हमारा हो, आत्मनिर्भर भारत का परचम हमारा हो, विकसित भारत की राह में, विकसित भारत की राह में तेजी से उठता हर कदम हमारा हो। एक बार फिर इस विशेष अवसर पर एसआरसी से जुड़े सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम।

श्रोताओं, अभी आप दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुन रहे थे।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
2: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।

0: निकलने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
2: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
2: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
1: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as

0: The grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एसएल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
5: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
4: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
5: टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्सपर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए

0: डेमोज ऑन AIR.gov.in पर जाएं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength. Addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropowered project tunnels in Nepal hit by flash floods. Melghat and Pench Tiger reserves in Maharashtra emerge as most successful reintroduction sites for vultures. Heavy rainfall forecast in northern, northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till Monday. And in China Masters Badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter the men's doubles final. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy.
4: Duniya Bharat ko fragile five bata rahi thi. आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने ते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।

0: today. He said the decision was taken in the wake of the U.S. envoy's visit to Kiev for peace talks. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over northern and northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till Monday. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely over Jammu and Kashmir, Ladakh, Rajasthan, West Bengal, interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and the Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. Floods continue to affect normal life in several parts of Bihar. The administration has intensified relief and rescue operations on a war footing to assist the affected people. More in this report.
1: The Ganga, Gandak, Kosi, Buri Gandak, Punpun and Ghagra rivers are flowing above the danger mark at various locations. In Patna, the water level of the Ganga at Gandhi Ghat, Banka Ghat and Pandarak is flowing above the highest flood level. In Saran district, a 20-meter stretch of an embankment near Trilokchak along the Mahi River has been damaged. According to the Disaster Management Department, around 10 lakh people in 201 panchayats across 50 blocks in 11 districts have been affected by the floods. Meanwhile, 50 medical camps, 19 boat ambulances, 900 boats and 36 veterinary camps are being operated in the affected areas to ensure access to healthcare and safe transportation.
0: In badminton, India's Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty continued their impressive performance at the China Masters today as they reached the men's doubles final. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength, addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropower project tunnels in Nepal hit by flash floods. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात दोहराई है कि आलमी गैर यकीनी की कैफियत के तनाजुर में जीडीपी की 7.8% की शरह तरक्की से भारत की इक्तिसादी कुव्वत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में एसआरसीसी के तलबा से खिताब किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मुस्तकबिल के कारोबारी अफराद और साइंसदान तैयार करने के लिए आजाद तर्ज फिक्र अख्तियार करने वालों में असातज़ा के रोल को उजागर किया है। भारत और नेपाल अचानक सैलाब से मुतासर नेपाल में पनबिजली प्रोजेक्ट टनल्स के अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए मुश्तरक कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट और पेंच टाइगर रिजर्व गिद्धों के लिए सबसे कामयाब महफूज मकामात के तौर पर उभरे हैं। शिमाल मशरकी रियासतों बिहार और मशरकी राजस्थान में तेज बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात दोहराई है कि आलमी गैर यकीनी की कैफियत के तनाजुर में जीडीपी की 7.8% की शरह तरक्की से भारत की इक्तिसादी कुव्वत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी की सदसाला तकरीबा से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब मोदी ने कहा कि भारत तवील सफर तय करते हुए पॉलिसी ठप पड़ जाने के दौर से बाहर निकलकर मुतहर्रिक और वलवला अंगेज पॉलिसी के दौर में दाखिल हो चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया ये देख रही है कि भारत सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली बड़ी मईशत बन गया है।
3: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी

0: ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC ने नस्ल दर नस्ल तलबा को सीखने, संवरने और अपनी पहचान बनाने का मौका दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि इस कॉलेज ने तालीमी कारकर्दगी में शानदार मिसाल पेश करके अपनी एक मुमताज पहचान बनाई है। उन्होंने SRCC के साबिक तलबा को बहुत खास और द ओजीज करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि साबिक वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली भी SRCC के एक तालिब इल्म थे। जनाब मोदी ने कहा कि SRCC के साबिक तलबा ने आर्ट से लेकर सियासत तक हर शोबे में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
0: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
1: उधर तालीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने अपनी तकरीर में आला मेयार बरकरार रखने पर SRCC की सताइश की। उन्होंने कहा कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको निज़ाम बन गया है। वजीर आजम मोदी ने कॉलेज के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत के लिए SRCC जाते हुए दिल्ली मेट्रो में सफर किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि असातजा की पूरी इज्जत और एहतराम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि असातजा सीखने और सिखाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। आज यौम असातजा के मौके पर एक मजमून में सदर जमहूरिया ने कहा कि तलबा में आज़ाद अंदाज फिक्र की हौसला अफजाई और उनके तजस्सुस को कुव्वत बख्शने, सवाल पूछने के रुझान को बढ़ावा देने और बहस मुबाहसे और फैसला करने की उनकी सलाहियत को संवारना तदरीस के सबसे मुफीद और समरावर पहलुओं में शामिल है। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस तरह की बाईसे तरगीब तालीम के जरिए ही कारोबारी अफराद, साइंसदां और तख्लीकी फनकार तैयार हो सकते हैं। इससे कबल सदर जमहूरिया ने कहा कि म्यारी तालीम के जरिए ही विकसित भारत मुमकिन हो सकेगा। यौम असातजा के मौके पर नई दिल्ली में टीचर्स को अवार्ड दिए जाने की कौमी तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि जो मुआशरा अपने असातजा का एहतराम करता है वो सही मायने में एक तरक्की पसंद मुआशरा है। सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि बहुत से तलबा इक्तसादी एतबार से कमजोर कुनबों से आते हैं, जो नए सीखने वाले होते हैं या जो गांव के मामूली स्कूल से बड़े शहर के स्कूलों में आते हैं। उन्होंने कहा कि असातजा की यह खसूसी जिम्मेदारी है कि वह इन तलबा में एतमाद पैदा करें और इस तरह के सभी तलबा की हौसला अफजाई करें जो किसी भी वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला हैं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
1: भारत और नेपाल की बचाव टीमें चिली में सुरंग में बचाव मिशन जारी रखे हुए हैं और सुरंग के अंदर से भारी मलबा, पानी और कीचड़ निकाल रही हैं। नेपाल में भारतीय सफीर नवीन श्रीवास्तव ने आज कहा कि सियाफरूबेसी के नजदीक सुरंग तक रसाई के लिए एक सड़क बनाने का काम भी जारी है ताकि बचाव कार्रवाई में सहूलत पैदा हो सके। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि दुश्वार गुजार और तंगवादी का इलाका होने की वजह से बड़े हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। इस मुश्तरका कोशिश से भारतीय माहिरीन और नेपाली दिफाई अफवाज के दरमियान सरहद के आर पार कुदरती आफत की सूरत में मदद और तकनीकी इश्तराक उजागर होता है। इस दौरान नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1,344 हो गई है। 8 मुतासर अजला में बचाव कार्रवाइयां जारी हैं जबकि तकरीबन 5,000 अफराद अब भी लापता हैं। 13,000 से ज्यादा लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से बदस्तूर मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। दरियाए गंगा और दीगर अहम दरिया मुख्तलिफ मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। इंतजामिया मुतासिर अफराद की मदद के लिए जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का रवैया अंजाम दे रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: गंगा, गंधक, कोसी, बूढ़ी

0: गंधक, पुनपुन और घाघरा दरिया मुख्तलिफ मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। गांधी घाट, बांका घाट और पंडारक में दरियाए गंगा सैलाब की सबसे ऊंची सतह पर बह रहा है। सारण जिले में त्रिलोचक के नजदीक माही दरिया पर 20 मीटर के हिस्से को नुकसान पहुंचा है। इस मकाम पर SDRF की टीम तैनात कर दी गई है। कुदरती आफत के बंदोबस्त के महकमे के मुताबिक 11 अजला में 50 ब्लॉक की 201 पंचायतों में तकरीबन 10 लाख लोग सैलाब से मुतासर हैं। सैलाब से मुतासर अफराद को मदद फराहम करने के लिए कम्युनिटी किचन के जरिए अब तक 1,20,000 से ज्यादा अफराद को खाना फराहम किया गया है। इस दौरान मुतासर इलाकों में 50 मेडिकल कैंप, 19 बोट एम्बुलेंसेस, 900 किश्तियां और मवेशियों के लिए 36 कैंप सरगर्म हैं ताकि सेहत की देखभाल तक रसाई और महफूज नकल हमल को यकीनी बनाया जा सके। पटना से सविता पारीक की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने बामायने इख्तलाफ राय और बहस मुबाहिसे के कल्चर की अहमियत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम के हिस्से के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों और साझेदार मुल्कों के वफूद से खिताब किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंसाफ की बरवक्त और मुनासिब फराहमी जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह याद दिलाया कि नालंदा यूनिवर्सिटी किस तरह सबसे मुमताज तालीमी मरकज हुआ करता था, जहां दुनिया भर के तलबा और तहकीककारों को किसी तरह की तफरीक या बंदिशों के बगैर दाखिला मिल जाया करता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीती जागती नालंदा यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाना चाहिए। सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने आज कहा है कि जहनी सेहत मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती का एक लाजमी हिस्सा है और इसका जिंदगी में कारकर्दगी और क्वालिटी से करीबी ताल्लुक है। नई दिल्ली में एक न्यूज मैगजीन की जानिब से मुनक़िदा जहनी सेहत से मुतालिक नौजवान भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान और बालिग अफराद भारत की आबादी का एक चौथाई हिस्सा है और उनकी अच्छी सेहत मुस्तकबिल में मुल्क की तरक्की की समत तय करेगी। मोहतरमा पटेल ने इस बात को उजागर किया कि इस आबादी में तेजी से बढ़ती हुई जहनी बीमारी तश्वीशनाक बात है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस चैलेंज से निमटने के लिए जहनी सेहत से मुतालिक कौमी प्रोग्राम में तेजी पैदा की है। वजीर मौसूफ ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जहनी सेहत से मुतालिक बेदारी और स्क्रीनिंग के लिए इंतजाम किए गए हैं। साइंसी और सनअती तहकीक की कौंसिल मरकजी सड़क तहकीकी इदारे CSIR CRRI ने आज नई दिल्ली में अवामी कामकाज के महकमे से वाबस्ता इंजीनियरों के लिए एक खसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा है कि इस प्रोग्राम में हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन के मेयारी तरीक़ाकार पर तवज्जो मरकूज की गई ताकि कौमी राजधानी खित्ते में शहरी सड़कों को सरसब्ज बनाने की राह हमवार की जा सके। जगदलपुर में कौमी तहकीकाती एजेंसी की खसूसी अदालत ने मुख्तलिफ इल्जामात के तहत झीरम घाटी माओनवाज हमले के मामले में सभी 10 कसूरवारों को मुलजिम करार दिया है। इस मामले में कुल 11 अफराद पर मुकदमा चल रहा था, जिनमें से एक शख्स की इस दौरान मौत हो गई। अदालत ने 2 खवातीन समेत 29 में से सभी 10 मुलजिमों को कत्ल का कसूरवार करार दिया गया, जबकि दीगर 15 को इकदाम कत्ल का कसूरवार पाया गया। सजा की मुद्दत से मुतालिक फैसला 16 सितंबर तक महफूज रखा गया है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने माहौलियाती मुस्तकबिल को महफूज रखने की खातिर गिद्धों के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया है। आज गिद्धों के बारे में बेदारी पैदा करने से मुतालिक बैनुल अक्वामी दिन के मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि गिद्ध माहौल को साफ रखने के लिए फितरत का एक हिस्सा है और ये माहौलियाती निजाम को साफ सुथरा रखने, बीमारियों को फैलने से रोकने और माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने में अहम रोल अदा करते हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट और पेंच टाइगर रिजर्व गिद्धों को महफूज रखने के भारत के सबसे कामयाब मकामात के तौर पर उभरे हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मुताबिक दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दरमियान इन 2 मकामात पर 29 गिद्ध छोड़े गए थे और उनके जिंदा रहने की शरह 78% तक पहुंच गई। आज खबरों में कहा गया है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर 72 घंटे तक हमले रोके जाने का हुक्म दिया है। आज क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोफ ने कहा कि सदर पुतिन ने हुक्म दिया है कि आज आधी रात से आइंदा 3 दिनों तक कीव पर कोई हमला ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अमन बातचीत के लिए अमरीकी एलचियों के कीव के दौरे के पेश नजर यह फैसला किया गया है। افریقی یونین کمیشن کے چیئرپرسن محمود علی یوسف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اس قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے جس میں عالمی سطح

0: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
1: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
0: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश वल्लूरी कामेश्वर राव को पटना उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रविन्द्र वी घुग्गे कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रमुख होंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल होंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा होंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी बनाए गए हैं। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। वक्त हुआ है 1:10 और पूरे 15 सेकेंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे।

जी हाँ बिल्कुल मेहरबा, आप आ जाइए हमारे साथ और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे से गीत हैं इस वक्त आपके और हमारे साथ। और कहते हैं ना कि कभी कभी अपने आप को भी वक्त देना चाहिए, कभी कभी नहीं बल्कि रोज़ ऐसा एक वक्त का आपको कहूँ कि एक छोटा सा टुकड़ा कहीं निकालना चाहिए जिसमें हम पूरी तरह से अपने आप को वक्त दे रहे हों, किसी और को नहीं, है ना। तो चलिए फिलहाल ये वक्त भी वही वक्त है जब आप प्यारे प्यारे गीत सुन रहे हो और हाँ अपने आप में ही कहीं खो रहे हो। इस खूबसूरत से गीतों के सफर पर आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति शर्मा।

जिंदगी जो इम्तिहान लेती है ना, वो कभी कभी इतने मुश्किल होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम इनमें से निकल ही नहीं पाएंगे, हम इसे पार ही नहीं कर पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है हम हिम्मत खो देते हैं या हम ये सोचते हैं कि शायद अब इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आगे कुछ नहीं है ना, वहाँ भी एक रास्ता बना होता है और उस रास्ते को हमें खोजना होता है कि उस रास्ते को खोजते खोजते खोजते खोजते फिर हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमें पहुँचना होता है, जहाँ हमारी

मंजिल है। लेकिन हाँ, ये इतना आसान नहीं होता जितना कह देना आसान होता है, क्योंकि किसी भी बात के लिए मैं ये कहूँ ज्ञान बांटना या कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम उस मुश्किल राह पर चल रहे होते हैं ना, और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो हमें अपने आप को कैसे संभालना होता है ना, ये हमें पता है आपको वक्त भी सिखाता है। हम खुद से भी सीखते हैं और हमें वक्त भी सिखाता है, और वो जो ईश्वर है ना, वो हमारी डोर थामे हुए है, वो कहीं ना कहीं हमें अपने साथ लेकर चल रहा होता है, हमें बस उस पर विश्वास करना होता है और अपने आप को एक मौका ज़रूर देना चाहिए अगर आप कितनी भी मुश्किल में घिर चुके हो, है ना। फिलहाल प्यारे प्यारे गीत है, और ये खूबसूरत सा गीत आपका कर रहा है इंतज़ार।

हाथ हम बढ़ाएं, एक हाथ तुम बढ़ाओ, और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ भी हो सके वो करते चले जाओ। लेकिन हाँ, उस कुछ भी में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि हम किसी का दिल दुखाएं, है ना। दिल दुखा तो देते हैं कभी कभी हम गलती से, तो वो तो माफ़ किया जा सकता है। लेकिन जो ये हम जानबूझ के करते हैं किसी के साथ गलत, या हम ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि हमें ना वो ईश्वर देख रहा होता है, और वो सब नोट कर रहा होता है कि हमने कहाँ कहाँ गड़बड़ की है, कहाँ कहाँ गलती की है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी में ना अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हाँ, उस कोशिश में ये कहीं नहीं शामिल होना चाहिए कि हम किसी को चोट पहुंचाएं, किसी के दिल को दुखाएं, या कोई ऐसी बात करें जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे, है ना। क्योंकि ज़िंदगी ना खूबसूरत तो होगी तभी जब आपकी ना सोच खूबसूरत होगी। क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने आसपास देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं तरक्की कर रहे हैं। पर आप जानते हैं कहीं ना कहीं ये एक कुछ समय का ही फेर होता है, और ज़िंदगी में ना ऐसा कुछ होता है कि उनको उनकी किए की जो कहते हैं कि जो उनका किया हुआ होता है ना वो उनके सामने आता है ना। ऐसा आप मानते हैं नहीं मानते ये मानना ना मानना तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में अच्छा करते हैं ना, तो आप जो देखेंगे ना कि आपकी सोच है ना वो भी अच्छी होती चली जाती है। और अच्छी सोच के लिए ना अच्छा करना ज़रूरी है, ये तो आप जानते ही हैं। और मैं जानती हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं और जिनकी सोच बहुत अच्छी है, और जो कभी कभी इधर उधर भटक जाते हैं ना, मैं उनसे यही कहूँगी कि भटकिए नहीं, एक राह जो है आसान सी उसको पकड़िए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों की ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाइए। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी अनमोल है, एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है ये तो सब जानते हैं ना। तो खूबसूरत गीत जो है ना वो इस ज़िंदगी में जब हम सुनते हैं ना, तो और ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। और गीतों का ना हमारी ज़िंदगी से ऐसा नाता है कि मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने गीतों से प्यार ना किया हो, जिसे संगीत से प्यार ना हो, है ना। आपको है? तो चलिए फिलहाल ये गीत सुनते हैं।

धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, वैसे धीरे धीरे वक्त की रफ्तार के साथ ये जिंदगी की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। और कितने जो पल है ना हमने जिंदगी में बिता दिए, क्या कभी आपने नोट किया है? नहीं किया ना। दिन पल ये सब हिसाब तो हम नहीं लगा पाते हैं, लेकिन हाँ उम्र के हिसाब से हम ये हिसाब लगा पाते हैं कि हमने कितने जो है साल जी लिए हैं और कितने बाकी है ये तो किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ हम अपने हर पल को, हर आने वाले पल को कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने हिसाब से ये तो हम जानते हैं, तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। और फिलहाल मैं भी वही कर रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं और ये प्यारे गीत हमारे साथ हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

गीत सुनहरे कार्यक्रम सुन रहे हैं आप मेरी यानी ज्योति शर्मा के साथ। और वैसे एक बात मुझे लगता है कि आपसे शेयर करनी चाहिए, वो ये कि कभी कभी आपको लगता है ना कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, या किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, या फिर किसी के लिए गलत भावना रख रहे हैं, तो किसी को पता नहीं चलेगा। सबसे पहले तो आप अपने दिल से पूछिए, आपको तो पता है ना कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, है ना? और अगर गलत कर रहे हैं तो क्या ये गलत करना सही है? नहीं ना, तो फिर क्यों करना है गलत? मेरा ये सवाल रहता है कि क्यों क्यों करना है गलत किसी के साथ, क्योंकि आप सोचते हैं ना कि आपको कोई नहीं देख रहा, तो ईश्वर तो देख रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है, और वो ही देख रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो सब हिसाब रख रहा है कि हमने क्या गलत किया है, हमने क्या क्या गड़बड़ी की है। तो अगली बार अगर गलती से भी, वैसे तो मुझे ये यकीन है कि हम कोशिश करते हैं, हम सभी कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए अच्छा करें और साथ ही साथ अपने अपनों के लिए अच्छा करें, लेकिन कभी गलती से भी गलत भावना आती है, या हम ये सोचते हैं कि वो इंसान गलत है, उसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया, और उसके बारे में गलत सोचते हैं, या कभी उसके बारे में गलत करने के बारे में सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को रोकना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर कोई गलत कर रहा है ना, तो सबसे पहली बात तो वो अपनी नज़र में गलत है, और दूसरी बात अगर वो गलत कर रहा है ना, तो वो इंसान ही गलत हो गया। तो हमें गलत नहीं बनना है, हमें बनना है सही। और मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि हाँ ये सही बनने की दौड़ में हम अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाए, नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि हम गलती से भी किसी के दिल को ना दुखाएं, किसी को चोट ना पहुंचाएं, कि जो चोट ऐसी चोट हो जो दिल को लगती है और जिसमें ये लगता है कि हाँ इसने मेरे साथ ये गलत किया, तो ये वाली बात जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि रिश्ते इस तरह ही ख़राब हो जाते हैं कि कोई गलत भावना रखता है, और कई बार, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम अपने आप ही कुछ सोच लेते हैं कि अच्छा उसने हमसे बात नहीं की तो शायद उसकी ये वजह होगी, अच्छा उसने अब मुझे फ़ोन नहीं किया, अच्छा अब उसने मुझे यहाँ नहीं बुलाया, या ये बात नहीं की, या ये नहीं बताया, और ना जाने क्या क्या सोच।

जो सोच है ना, इसको हम कहीं ना कहीं अपने आप काबू में रख सकते हैं। तो वो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हम रख लेते हैं ना, तो बहुत सी मुश्किलें जो है ना वो आसान हो जाती है। फिलहाल जो संगीत है ना, वो भी हमारी मुश्किल आसान कर देता है, क्योंकि जब हम कश्मकश में डूबे होते हैं, हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा होता, तो एक थोड़ा सा विराम देना चाहिए अपने आप को और अच्छा सा संगीत सुनना चाहिए, जो आपकी पसंद का हो, जो आपको पसंद हो। और फिलहाल हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे गीत लाएं और आप उन्हें सुनें, और हाँ, आप भी गुम हो जाएं इस संगीत की दुनिया में।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली

धोखे भरी कहानी को किस तरह से इस फिल्म में पेश किया। वाकई बहुत ही अच्छी फिल्म थी ये उस समय की। और अब घड़ी की सुई जो है वो वक्त बता रही है 1:54 और पूरे 40 सेकंड, और कार्यक्रम जो है वो यही खत्म होने को है। लेकिन फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है आपके लिए।

0: जोड़कर।
1: वाकई दिल कहाँ भरता है, दिल करता है कि अच्छे अच्छे गीत सुनते रहें, अच्छी अच्छी बातें करते रहें, सुनते रहें, और जो पल अच्छे हैं ना वो कभी ना जाए, ऐसा दिल करता है ना। कभी अच्छी जगह घूम कर आते हैं तो वहाँ की अच्छी अच्छी यादें बन जाती हैं, और उन यादों को याद करते हैं तो ऐसे लगता है कि ऐसी और यादें हम बनाते जाएँ और ऐसी और यादों में हम डूबते जाएँ। तो खैर, ज़िंदगी में आप अच्छी अच्छी यादें बनाइए, अच्छे अच्छे ये कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में पल आए, और आप हंसते रहें, मुस्कुराते

रहें और हाँ हमारे साथ भी बने रहें और अपने लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालें, रुक जाएं इस भागदौड़ वाली जिंदगी में, एक थोड़ा सा विराम अपने लिए दिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। फिलहाल ये प्यारा सा गीत सुनिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 2:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत

0: सक्रियता लंबा सफ़र तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ. तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चड्डी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce,

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की

0: रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों से ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री डॉ. तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियांग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
0: Duniya Bharat ko fragile 5 bata rahi thi. Aaj duniya Bharat ko fastest growing major economy banne te hue dekh rahi. Abhi hafte bhar mein hi Bharat ki economy ko lekar कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
2: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said, Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said, the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector. President Draupadi Murmu yesterday appointed Dr. Dinesh Sharma as the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands. A press communique issued by the Rashtrapati Bhavan informed about it. Dr. Sharma will succeed Admiral Devendra Kumar Joshi, retired, who was serving as Lieutenant Governor of the islands since October 2017. Dr. Sharma is presently a Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh, has also served as Deputy Chief Minister of the state. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh reached Saudi Arabia yesterday on his maiden four-day official visit. During the visit, he will meet the Saudi Minister of Human Resources and Social Development, Minister of State for Foreign Affairs and Climate Affairs Envoy, Vice Minister for Environment, Water and Agriculture, as well as other dignitaries. The minister will also meet a large cross-section of the Indian community in Saudi Arabia and Indian business leaders, entrepreneurs and professionals during the visit. India and Nepal rescue teams are continuing a rescue mission at the Chilime tunnel, removing heavy debris, water and mud from inside the tunnel. Ambassador of India to Nepal, Naveen Srivastav, yesterday said work was also underway to construct an access road from nearby Siafrubesi to the tunnel portal to facilitate the rescue operation. In a social media post, Mr. Srivastav elaborated that given the difficult terrain and narrow valley, heavy helicopter usage is not possible. Meanwhile, the death toll from the devastating flash floods in Nepal has risen to 1,344. Rescue operations are underway in 8 affected districts, while around 5,000 people remain missing. More than 13,000 people have been rescued so far. Russian President Vladimir Putin met with US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner at the Kremlin yesterday for talks to try to revive a stalled push to end the Russia-Ukraine war. The envoy's visit came as both sides escalated aerial attacks. Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky both agreed to 72-hour pause in strikes on each other's capitals while the talks took place. Both US envoys will also visit Ukraine's capital, Kyiv, for the first time in the peace process today, Ukrainian officials said. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3:10 हुए हैं। पेश है गीत गजल कार्यक्रम, आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ, जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। 4 बज चुके हैं। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत के अंतर्गत गुट्टू वाद्ययम उषा विजय कुमार की प्रस्तुति रागम चारु केशी में।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 15वीं तिथि। तदनुसार 6 सितंबर सन 2026। श्रोताओं, सुबह के 4:56 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आप कब सुन सकते हैं। 5 बजे होंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 5:10 का समय आओ यों करें कार्यक्रम का है, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पवन मुक्तासन और सेतुबंध आसन के बारे में।

5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत कार्यक्रम और 5:30 का समय स्वर रंजनी कार्यक्रम का है। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी हिंदी समाचारों के साथ सुबह 6:00 और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का है और 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन कार्यक्रम। रामचरितमानस से पाठ अयोध्या भागकांड भाग 40 आप सुन सकते हैं 6:45 पर और 6:55 पर संस्कृत समाचार प्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5:00 को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज के संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन की एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉ शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉ शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न

0: आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुछ 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब की रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने जयपुर के ION डिजिटल जोन सीतापुरा परीक्षा केंद्र के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए कल नीट PG 2026 की परीक्षा आयोजित की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जयपुर में 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई और बिना किसी परेशानी के संपन्न हुई। इससे पहले पिछले महीने की 30 तारीख को राजस्थान के जयपुर में परीक्षा केंद्रों पर बिजली की आंतरिक समस्या के कारण 2,445 उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी नहीं हो पाई थी। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार वे चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said, Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said, the college has distinguished itself over the years, making a mark of academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने

वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं। घुटनों को नासिका से स्पर्श करते, यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

印度德里广播电台，从印度时间5:15到6:45和16:17:30相亚洲播。